आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आज है मंगलवार, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 9 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है अब इस मंगल धुन के साथ।

0: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचारों का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रूपए का स्मारक सिक्का और 5 रूपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और DMK पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य

0: और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र में। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, जब तक जीवन है तब तक सीखना है, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। ये था आज का चिंतन। वंदनवार में लीजिए सुनिए भक्ति रचनाएं।

0: इस समूह गान के साथ ही आज का वंदनवार यहीं संपन्न होता है।
1: अब आज का वंदनवार कार्यक्रम संपन्न होता है।

यह है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। झरोखा मिली जी सुनिए आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद 6:35 से आप सुनेंगे रामचरितमानस का भाग 214। 6:45 से संगीत सरिता में आप सुनेंगे श्रृंखला सीने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला का 9वां भाग आज आप सुनेंगे। कलाकार तबला वादक रविंद्र खासनीस, प्रस्तुति मनीषा जैन। सात बजे से भूले बिसरे गीत और 7:30 से हम है राही प्यार के। 8:15 और दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी लेकर आएंगे। सुबह व रात्रि 8:30 से, माफ कीजिए, सुबह 8:30 से और रात्रि 8:15 से चित्रलोक। सुबह 9:30 से लेकर आएंगे आज के फनकार। आज ही प्रोग्राम केंद्रित होगा फिल्मकार राज खोसला पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। दस बजे से पिटारा में सुनिए मधुमेह कारण और बचाव, डॉक्टर कुणाल मेहता से बातचीत आप सुनेंगे। 11 बजे से रंग तरंग और 12:05 से यादों की महफिल। 1 बजे से कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। 2:30 से सदाबहार नगमे और 3 बजे लेकर आएंगे प्रोग्राम सखी सहेली।

लेकर आएंगे पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे में अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की बातचीत। पांच बजकर तीस मिनट से तराने नए पुराने, छह बजकर पैंतीस मिनट से भक्ति गीतों का कार्यक्रम संध्या रंजन सुनिएगा।

सात बजे से लेकर आएंगे फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला। सात बजकर 45 मिनट से इंद्रधनुष में पॉप एक्सप्रेस।

रात 8 बजे हवा महल में सुनिएगा झलकी, मैं मछली तो नहीं। लेखक केपी सक्सेना, निर्देशक पुरुषोत्तम द्वारवेकर। रात 9 बजे से आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 से आज के फनकार केंद्रित होगा गीतकार असद भोपाली पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात 10 बजे समय होगा छाया गीत का, ढलती जाए रात 10:30 से, और रंग तरंग का वक्त होगा रात 11 बजे से। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

चित्रकूट में माताओं से श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साक्षात्कार और चारों भाइयों के परस्पर मिलन का दृश्य जहां एक ओर स्नेह सिंचित था, वहां दूसरी ओर अयोध्या पति के निधन के समाचार ने एक बार फिर सभी को शोक के सागर में डुबो दिया। दूसरे दिन कुलगुरु के आदेशानुसार वैदिक रीति से श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्राद्ध संपन्न करके वैसे ही शुद्ध हुए जिस प्रकार तीर्थों के आवाहन से पतित पावनी गंगा शुद्ध होती हैं। अद्भुत दृश्य उपस्थित है चित्रकूट में, जहां दुखी अयोध्यावासी कंदमूल और फल का आहार करते हैं। भरत, शत्रुघ्न, मंत्रियों तथा माताओं को व्याकुल देख श्री राम को एक एक पल भारी हो रहा है, अतः उन्होंने वशिष्ठ जी से सबको लेकर अयोध्या लौट जाने का आग्रह किया।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी।
1: नमस्कार रविंद्र जी, ताल वाद्यों की फिल्म संगीत में जो उपयोगिता है और जिस तरह से उनका इस्तेमाल हो रहा है, अलग अलग तालों की चर्चा भी हम कर रहे हैं।
2: हाँ।
1: ताल कहरवा जितना एक और ताल है दादरा।
2: हाँ।
1: वो भी बहुत प्रचलित है।
2: बिल्कुल है।
1: और बहुत से ऐसे गाने हैं जिनमें ताल दादरा का उपयोग हुआ है। तो मूल रूप से ये दादरा ताल कैसे बजाया जाता है?
2: जैसे केरवा हमें कई सारे गीतों में सुनने को मिलता है
1: जी,
2: वैसे दादरा है, दादरा भी हमें कई सारे गीतों में सुनने को मिलता है
1: जी।
2: तो दादरा जो है वो तो मूलतः दादरा तो केवल धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना, ये तो दादरा ताल है
1: जी।
2: लेकिन ये जो ताल है

0: ये ताल कई सारे गीतों में आया है, तो इसको जब गीतों में ढाला जाता है इस ताल को, तो उसमें जो है वो एक नजाकत लाने की दृष्टि से उसमें वो परिवर्तन किया जाता है
1: जी।
0: तो वो दादरे में जो परिवर्तन है वो इस तरह है।

0: मतलब धाधीना धातीना जो है उसका ये परिवर्तित रूप है
1: जी।
0: लेकिन परिवर्तित रूप जो गीतों में बहुत सटीक होता है, सटीक बैठता है, और वहां से फिर गीत का जो प्रभाव है वो भी बढ़ता है
1: जी।
0: तो दादरे में तो वैसे कई सारे गीत बने हुए हैं
1: जी।
0: तो दादरा जैसे हमने कहा था कि अलग अलग पैटर्न होते हैं, तो वैसे दादरा के भी कई सारे पैटर्न इस्तेमाल किए गए हैं, और वो पैटर्न ही एक वजह है कि जिसकी वजह से हर गाना हमको सुनने में अलग लगता है। एक गाने की दूसरे गाने में समानता नहीं लगती, हर गाना अपना अपना एक खुद का अस्तित्व लेके आता है
1: जी जी जी।
0: तो ये जो है ये चमत्कार उस पैटर्न का है, जो पैटर्न वो गीत को सजाता है,
1: और हर संगीतकार अपने ढंग से अपनी संगीत रचना में इस ताल का उपयोग करते हैं।
0: बिल्कुल करते हैं।
1: तो अब बात वही है कि फिर हमें किसी फिल्मी गीत का उदाहरण लेना होगा।
0: हाँ, मेरा बहुत पसंदीदा गीत है
1: जी,
0: जिसमें दादरा का बहुत प्रभावी उपयोग किया गया है।
1: हाँ।
0: वो है वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते।
1: बड़ा सुंदर गाना है, जहां आरा फिल्म का ये गीत है।
0: हाँ।
1: और संगीतकार है मदन मोहन साहब, आवाज लता मंगेशकर की।

0: रविंद्र जी, जिस प्रकार कहरवा ताल के प्रकार आपने बताए,
1: हाँ,
0: वैसे ही दादरा ताल के भी कुछ प्रकार हैं, वो कौन से हैं?
1: दादरा ताल के भी प्रकार हैं। अभी मैंने बताया।

0: अभी ये इसी रूप को और थोड़ा सा बदला है, उसको कहते हैं खिमटा।
1: अच्छा,
0: ये खिमटा जो है गरबा नृत्य के लिए, मतलब गरबा नृत्य के जो असंख्य गीत है
1: जी जी,
0: तो उसमें हम लोग हमेशा सुनते हैं और उस पे गरबा नृत्य गुजरात में होता है।
1: नवरात्रि के दौरान लगभग सभी भारतीय जानते हैं कि डांडिया खेला जाता है, रास गरबा होता है। तो

0: वाह क्या बात है।
1: इसमें मैंने दो प्रकार भी किए हैं
0: जी।
1: अभी खेमटा जो है वो खेमटा का आगे थोड़ा सा रूप बदला है, मतलब लय बढ़ती है या उसके बाद में जो उसका जिस तरह से उसको बजाया जाता है उसको कई जगह पर हिंच भी कहते हैं।
0: अच्छा
1: हाँ, तो वो जो हिंच है वो इसी मतलब खेमटा के साथ में ही वो जुड़ी हुई है। अक्सर ढोलक के साथ में जब तबला ये दादरा का ये प्रकार बजाया जाता है तो ढोलक के साथ में फिर वो उसकी नजाकत और भी अच्छी लगती है और खूबसूरत लगता है वो
0: जी।
1: और उसी के लिए वो उस तरह से उस अंदाज में बजाया जाता है।

0: तो अब फिल्म संगीत में हमें खेमटा ताल कहाँ सुनने को मिलता है, या ताल हिंज की आप बात कर रहे थे,
1: हाँ,
0: इसे अगर फिल्म संगीत में ढूंढने जाए तो कौन से गीत याद आ रहे हैं?
1: फिल्म सरस्वती चंद्र में मैं तो भूल चली बाबुल का,
0: जी जी जी, इसमें खेमटा ताल का बहुत सुंदर इस्तेमाल हुआ है,
1: बिल्कुल।
0: और हिंच हमें कहाँ सुनने को मिलती है?
1: दिल अपना और प्रीत पराई, ये जो गाना है
0: जी,
1: उसमें वो ढोलक के साथ में मैं
0: शीर्षक गीत की आप बात कर,
1: शीर्षक गीत,
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो आइए इन दोनों गीतों की झलक अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

बताऊं, लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में ताल खेमटा पर आधारित इस गीत की झलक आप सुन रहे थे, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। और अब सुनते हैं दिल

0: काल हिंच में निबद्ध ये गीत था दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म से लता मंगेशकर के स्वर में, संगीत शंकर जयकिशन का। इसी के साथ हमें अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

मस्त कलंदर इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और तलत महमूद की आवाजों में। असद भोपाली ने इसे लिखा था, हंसराज बहल का संगीत था। आज गीतकार असद भोपाली जी की पुण्यतिथि है। आज भूले बिसरे गीत में उन्हीं के लिखे गीत आपको सुनवा रहे हैं और आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार जो कि केंद्रित होगा गीतकार असद भोपाली पर।

सुमन हिमाड़ी की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मिस्टर क्यू से। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा था और मनोहर ने संगीत दिया था। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत विविध भारती से।

आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण 7:20 पर, 7:30 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। सुर संगम होगा 8:15 पर। प्रणाम अयोध्या का समय होगा 8:30 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा अत्यधिक धूप में बाहर जाने से बचें। साथ ही काव्य पाठ, योग भगाए रोग और पर्यावरण को सहजती पंक्तियां, कवि है आनंद शक्ति पाठक। 9:00 आपके संदेश, आपके गीत, हेलो अयोध्या आप सुनेंगे 9:30 पर। 10:00 से विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुनेंगे। 11:55 पर विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल पर आप सुनेंगे। 12:30 का समय होगा लोक रंग कार्यक्रम का। 1:00 कुछ तुमने कहा, 2:00 गीतांजलि, 2:15 पर दोपहर समाचार और 2:30 पर नारी जगत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चर्चा थपकी के साथ थप्पड़ भी जरूरी और अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति। साथ ही साथ भेंट वार्ता सुनिएगा, वसीयत एक जानकारी श्वेता राज एडवोकेट से आपसे बातचीत की है सुषमा गुप्ता ने। 3:00 से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 3:30 से आप सुनेंगे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। 5:00 का समय पुनः आप हमारे केंद्र से सुनेंगे हमारे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। इसमें आज चर्चा होगी समुचित नींद में सहायक योग। भारतीय इतिहास में जानेंगे बिरसा मुंडा का आंदोलन के बारे में, साथ ही चक्रव्यूह और हीट वेव के सामान्य सावधानियों के बारे में भी जानेंगे। 5:30 का समय होगा लोक संगीत का शाम सुहानी। 6:10 पर, 6:30 पर गूंजे स्वर गांव के, 6:45 पर किसानवाड़ी कार्यक्रम में चर्चा होगी गृह वाटिका लगाएं हरियाली बढ़ाएं। साथ ही साथ भेंट वार्ता भी सुनिएगा, गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसे

साहो, वार्ताकारी डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव सह प्राध्यापक मनोविकास एवं पारिवारिक अध्ययन आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या। 7:30 पर पुनः विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों से जुड़ेंगे। 8:15 का समय होगा गीत गुंजन का। 8:45 पर समाचार संध्या। 9:15 पर सुनेंगे महफिले गजल और 9:30 का समय होगा हेलो अयोध्या का। 10:00 राजस्तरीय प्रसारण खेल दर्पण। 10:30 से विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुनेंगे। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। सुबह के 7:18 हुए हैं। संदेशों के बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण।

0: संदेशों के बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण हमारे गोरखपुर केंद्र से।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को किया रेखांकित, कहा देश में हुए बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा है गरीब कल्याण और वंचित वर्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को बताया राज्य के लिए बेहद लाभकारी। प्रदेश के अग्निशमन और आपात सेवा विभाग में गठित किया जा रहा है विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG। मुख्यमंत्री ने विभागीय बैठक में SRG गठन की स्थिति की समीक्षा की। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। आज और कल भी दो पालियों में आयोजित हो रही हैं परीक्षाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने कल कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
4: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
3: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।

0: गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ होगा।
2: मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है, हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा।
1: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले सिर्फ 14 रडार थे, लेकिन अब इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है।
3: जितनी प्रगति गत 12 वर्षों में हुई है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इतनी उससे पहले के शायद 65 वर्षों में ना हो पाई। सन 2014 तक देश भर में केवल और केवल 17 वेदर रडार्स थे, और कई एक ऐसे प्रदेश थे जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, जहां एक भी रडार नहीं था। आज वो 17 रडार बढ़कर के 50 हो गए हैं, और मिशन मौसम के तहत 50 और जुड़ने वाले हैं, यानी अगले 2 साल में हम 100 रडार तक पहुंचेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अग्निशमन और आपात सेवा विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 10 जनपदों में इसकी स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 अस्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। 47 अन्य प्रस्तावित केंद्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने शेष तहसीलों में भी जल्द अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री योगी ने हाईराइज भवनों के लिए आवश्यक उपकरणों और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अस्पतालों, होटलों, स्कूलों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला भवनों में नियमित फायर ऑडिट व सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने फायर NOC प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर बल दिया। साथ ही अग्नि मित्र और अग्नि सचेतक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित करने के निर्देश भी दिए। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
1: एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग और खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल

0: बल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा कल सकुशल संपन्न हो गई। यह परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज और कल भी आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 परीक्षा दो पालियों में राज्य के 1183 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। केंद्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए स्थायी मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय किराए में 50% की छूट प्रदान की जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 10 जून तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: राज्य में तेज धूप, भीषण गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में कल से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी हिस्सों में कल भी तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को किया रेखांकित। कहा, देश में हुए बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा है गरीब कल्याण और वंचित वर्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को बताया राज्य के लिए बेहद लाभकारी। प्रदेश के अग्निशमन और आपात सेवा विभाग में गठित किया जा रहा है विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG। मुख्यमंत्री ने विभागीय बैठक में SRG गठन की स्थिति की समीक्षा की। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। आज और कल भी दो पालियों में आयोजित हो रही हैं परीक्षाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: समाचारों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र में। सुबह के 7:32 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास।

0: और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।

नमस्कार श्रोताओं, आस्था श्रद्धा और भक्ति के मधुर सुरों से सजी इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, भक्ति वह शक्ति है जो मन को शांति, हृदय को सुकून और जीवन को नई ऊर्जा प्रदान करती है। तो आइए ईश्वर के पावन स्मरण के साथ शुरुआत करते हैं अपने भक्ति संगीत के कार्यक्रम की। जहां भक्ति है वहां शक्ति है, और जहां श्रद्धा है वहां शांति है। रूप कुमार राठौर की आवाज में ये कार्यक्रम का पहला भजन।

श्रोताओं, भक्ति की इस पावन यात्रा में अब समय है महाबली संकट मोचन और राम भक्त हनुमान जी के स्मरण का, जिनका नाम मात्र लेने से मन में साहस, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम, राम भक्त हनुमान जी को नमन करते हुए सुनते हैं ये मधुर भजन। रतन मोहन

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
2: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
1: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
2: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
1: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
2: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
1: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
2: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।

हनुमान जी के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए भक्ति की यह सरिता निरंतर बह रही है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और आइए अब बजरंगबली की ही महिमा का वर्णन

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
4: नहीं अछूता हो जिस
3: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
5: इसी के साथ हमारा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचारों का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।
6: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
8: घर घर सूर्य घर।
9: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में MT मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
10: गृह मंत्रालय ने कहा है ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
9: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज

0: सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
2: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
4: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या था? मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे।
3: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
5: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाकर ठीक ठाक रहता हूं।
3: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद

0: बाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमेरिकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इजराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणी श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के डांबुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारती फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर

0: कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर, बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए, देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी समाचारों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र में। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर संगम।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
7: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
6: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
7: जी हाँ, और वो है योग।
6: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
7: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
6: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
7: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
6: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
7: योग करिए, निरोग रहिए।

सरों की महफिल सजी है, अल्फाजों का कारवां तैयार है, दिल की बातों को आवाज देने वाला ये खूबसूरत सफर अब शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, रात की चादर में छिपे होते हैं कई राज, चांदनी में खिलते हैं दिल के एहसास, कुछ मुलाकातें यूं ही मुकद्दर में लिखी होती हैं, जो जिंदगी को दे जाती हैं यादों का अनमोल साज। कहते ना कुदरत के करिश्मों में अगर रात न होती

दिल में यूं बस जाते हैं कि बिना बोले ही प्यार कम नहीं होता। इन्हीं नाजुक एहसासों और दिल की अनकही बातों को समेटे हुए पेश है कार्यक्रम की अगली गजल। तेरे खामोश होठों से ये आवाज आती है, पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

0: IT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: इसी के साथ है दीजिए इजाजत गीत गजलों के।

संगीत की ध्वनि लहरियां गूंज रही थी आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 8:30 हो चुके हैं, समय हो चुका है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या का।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
1: अब ECHS से इम्पैनल। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
2: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
1: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
3: आपकी संदेश,
4: संदेश से आते हैं
3: आपके गीत।
4: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
3: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।

में ही स्वास्थ्य का सुकून मिलता है। गर्मी चाहे कितनी भी हो, सजग इंसान संभल कर चलता है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपसे जुड़ी उन महत्वपूर्ण जानकारियों की जो आपके जीवन को सुरक्षित, स्वस्थ और जागरूक बनाने में सहायक हैं। दोस्तों, इन दिनों सूरज की तपिश लगातार बढ़ रही है। सूरज की सुबह की नरम धूप कब दोपहर की चिलचिलाती गर्मी में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आज अपने कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अत्यधिक धूप, हीट वेव यानी लू से बचाव और उन सावधानियों की जिन्हें अपनाकर हम स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, इस समय सूरज अपने पूरे तेज के साथ आसमान में चमक रहा है। बढ़ता तापमान और तेज धूप

न केवल हमारे दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी एक चुनौती बन गया है। ऐसे में जरूरी है कि हम स्वयं भी सतर्क रहें और अपने परिवार के सदस्यों को भी सतर्क रखें, उनका भी विशेष ध्यान रखें, खासकर दोपहर का समय। भाई दोपहर में 11 बजे से शाम 5 बजे तक धूप ऐसी रहती है कि निकलने पे ऐसा लगता है कि जल ही जाएंगे। तो धूप बहुत तेज है, इस दौरान अनावश्यक अगर आपको जरूरी ना हो तो प्लीज मत निकलिए घर से बाहर। यदि आवश्यक कार्य से आपको बाहर निकलना ही पड़े तो सिर को कपड़े से, टोपी या छाते से ढके पर्याप्त मात्रा में पानी भी साथ रखें। गर्मी के मौसम में शरीर के पसीने के रूप में पानी और आवश्यक लवण बाहर आ जाते हैं, इसलिए पानी, नींबू, छाछ, नारियल पानी और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करते रहना चाहिए। बच्चे, बुजुर्गों और खिलाड़ियों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। याद रखिए, थोड़ी सी सावधानी आपको लू, चक्कर, थकान, डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से बचा सकती है। अब बात अगर हम लू की कर रहे हैं, आजकल ज्यादातर लोगों के मुंह से सुनने में आता कि हीट वेव। ये हीट वेव है क्या? तो आज हम इसके बारे में भी आपको बता रहे हैं कि इन दिनों जो गर्मी अपने चरम पर है तो मौसम विभाग द्वारा कई क्षेत्रों में हीट वेव यानी लू को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। आखिर हीट वेव है क्या? जब किसी क्षेत्र का तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है और लगातार कई दिनों तक अत्यधिक गर्म हवाएं चलती हैं तो उसे हीट वेव या लू कहा जाता है। इसका प्रभाव बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और खुले में काम करने वाले लोगों पर ज्यादा पड़ता है। लू लगने के लक्षणों में तेज सिर दर्द, चक्कर आना, अत्यधिक प्यास लगना, कमजोरी महसूस होना, शरीर का तापमान बढ़ जाना और कभी कभी तो भाई बेहोशी तक शामिल है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए 11 बजे से शाम 5 बजे तक बिना कार्य के बाहर ना निकले और इस गर्मी में हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, पर्याप्त पानी पीते रहे और खान पान में तरल पदार्थों को शामिल करें। यदि किसी व्यक्ति को लू लगने की आशंका है तो उसे तुरंत छायादार या ठंडी जगह पर ले जाए, आवश्यक होने पर चिकित्सा सहायता प्रदान करें। गर्मी बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है।

तो हीट वेव की बात हुई और धूप की बात हुई, लेकिन धूप से एक और जो प्रॉब्लम हमारे सामने है, मतलब स्वास्थ्य का तो है ही, साथ में धूप में त्वचा जलने की आशंका भी रहती है, जिसे सनबर्न कहा जाता है। इसलिए गर्मी में धूप से बचाव करना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि यदि धूप सीधे मुंह पर लगती है तो लू लग सकती है। बाहर निकलने से पहले सिर और अपना मुंह पूरी तरह से ढक लीजिए, सिर्फ आंखें अपनी खुली रखिए, चश्मा वगैरह पहनिए ताकि आपकी आंखों पर भी धूप का बहुत असर ना हो। और गर्मी में जितनी गर्मी हमको लगती है उतना हमको पसीना निकलता है, और जब पसीना निकलता है तो पसीने के साथ जो पानी निकल जाता है इससे हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसलिए इस समय बाहर निकलते समय अपने साथ पानी की बोतल जरूर से जरूर रखिए, और बाहर निकलने से अधिक मात्रा में पानी पीकर निकलना चाहिए ताकि लू का खतरा भी कम हो सके। नमक और नींबू का रस भी मिला सकते हैं इसमें थोड़ा सा। और इस समय गर्मी में सूती कपड़े पहनने से घमौरियाँ नहीं होती, जब शरीर पे छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, खुजला खुजला कर हाल बुरा हो जाता है, तो अगर आप सूती कपड़े पहनते हैं तो ये पसीना जल्दी सोख लेता है और घमौरियों का भी डर नहीं रहता है। तो दोस्तों, गर्मी के मौसम में अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।

जब हम स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, तभी हमारा मन भी प्रसन्न होता है। अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो हम खुश भी नहीं रहेंगे, और ना ही हम अपनी वजह से, जैसे हम जहाँ रहते हैं, आसपास के लोग या जो भी हैं, वो भी खुश रह पाएंगे। क्योंकि भाई, जब हम अपना मुंह लटका के बैठे रहेंगे तो कौन ही हमसे बात करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहें, तभी खुश रहेंगे।

0: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा। 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
1: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
2: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कई सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर।
2: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
4: दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तभी हम खुश भी रह पाते हैं, अन्यथा हम खुद भी उदास रहते हैं और एक उदासी भरा माहौल भी तैयार कर देते हैं और इससे हमारे सारे काम बिगड़ते ही जाते हैं। भाई, आप नहीं सही हैं तो घर में भी कुछ सही नहीं है, या ऑफिस में भी कुछ सही नहीं है। कोई भी काम आप मन से नहीं कर पाएंगे, सब चीज गड़बड़ होगा। तो मन को भी स्थिर करना, शरीर को स्वस्थ करना, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना ख्याल रखें। और अपना ख्याल रखने के लिए सुबह की शुरुआत जो हमारी दिनचर्या होती है वो योग से करें। योग हमारे शरीर के रोगों को दूर करता है, हमें एक शांति प्रदान करता है, स्थिरता देता है। तो आज अपने इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं काव्य पाठ योग भगाए रोग, पर्यावरण को सहेजती पंक्तियां। कवि है आनंद शक्ति पाठक। तो आइए कार्यक्रम में सुनते हैं ये काव्य पाठ।
5: योगा पर कविता है कि प्रातः उठकर योग करें निज जीवन सफल बनाए जी, प्रातः उठकर योग करें निज जीवन सफल बनाए जी, स्वस्थ रहेगी काया पूरी योग सभी अपनाए जी, स्वस्थ रहेगी काया पूरी योग सभी अपनाए जी, तन के संग संग मन भी साधें योग बड़ा हितकारी है, तन के संग संग मन भी साधें योग बड़ा हितकारी है, योग रोग से मुक्ति देता इसकी महिमा भारी है, योग रोग से मुक्ति देता इसकी महिमा भारी है, जीवन सफल जीवन में सब फुर्ती लाएं आलस दूर भगाएं जी, जीवन में सब फुर्ती लाएं आलस दूर भगाएं जी, स्वस्थ रहेगी काया पूरी योग सभी अपनाएं जी, स्वस्थ रहेगी काया पूरी योग सभी अपनाएं जी। प्रतिदिन के अनुलोम विलोम से प्राण शक्ति बढ़ जाएगी,

आसन करके बदन सुडोल बनाएं जी, तरह तरह के आसन करके बदन सुडोल बनाएं जी, प्रातः उठकर योग करें निज जीवन सफल बनाएं जी, प्रातः उठकर योग करें निज जीवन सफल बनाएं जी।

और ध्यान लगाने से बुद्धि भी खूब प्रखर हो जाती है, ध्यान लगाने से बुद्धि भी खूब प्रखर हो जाती है, मिट जाते हैं सारे टेंशन मन में शांति समाती है, मिट जाते हैं सारे टेंशन मन में शांति समाती है, हंसी खुशी से जीवन बीते सब आनंद उठाएं जी, हंसी खुशी से जीवन बीते सब आनंद उठाएं जी, प्रातः उठकर योग करें निज जीवन

जी। और अगली कविता, पर्यावरण सुरक्षित रखो बात यही समझाना है, पर्यावरण सुरक्षित रखो बात यही समझाना है, दूषित वातावरण हो गया उसको स्वच्छ बनाना है, दूषित वातावरण हो गया उसको स्वच्छ बनाना है। ढका हुआ आकाश धुएं से वायु हो गई जहरीली, ढका हुआ आकाश धुएं से वायु हो

चिंतन मनन करे हम सब यव त्वरित जागरण लाना है। चिंतन मनन करे हम सब यव त्वरित जागरण लाना है। पर्यावरण सुरक्षित रखो बात यही समझाना है। पर्यावरण सुरक्षित रखो बात यही समझाना है। और शीतल छाया फूल और फल वृक्ष हमेशा देते हैं। शीतल छाया फूल और फल वृक्ष हमेशा देते हैं। बदले में हमसे कोई भी वस्तु नहीं ये लेते हैं। बदले में हमसे कोई भी वस्तु नहीं ये लेते हैं। इसकी रक्षा करने का हमको संकल्प उठाना है। इसकी रक्षा करने का हमको संकल्प उठाना है। पर्यावरण सुरक्षित रखो बात यही समझाना है। पर्यावरण सुरक्षित रखो बात यही समझाना है। खत्म हो रहे आज ठिकाने पशु पक्षी के रहने को। खत्म हो रहे आज ठिकाने पशु पक्षी के रहने को। हरिया

आनंद समर्पित होकर अपना फर्ज निभाना है। हे आनंद समर्पित होकर अपना फर्ज निभाना है। पर्यावरण सुरक्षित रखो बात यही समझाना है। पर्यावरण सुरक्षित रखो बात यही समझाना है। और एक मुक्तक पढ़ता हूँ कि हरे भरे पेड़ों पर यदि तुम आरा आज चलाओगे, हरे भरे पेड़ों पर यदि तुम आरा आज चलाओगे, तुम ही बताओ कहाँ से कैसे शुद्ध हवा फिर लाओगे, तुम ही बताओ कहाँ से कैसे शुद्ध हवा फिर पाओगे। और बात नहीं यदि मानोगे तो अंधकारमय होगा कल, बात नहीं यदि मानोगे तो अंधकारमय होगा कल, जागो सभी समय से वरना फिर पीछे पछताओगे, जागो सभी समय से वरना फिर पीछे पछताओगे। और आखिरी कविता स्वच्छता पर कि कूड़े दान में कूड़ा डालें गांव गली चमकाएं हम, कूड़े दान में कूड़ा डालें गांव गली चमकाएं हम।

काम करे सब अपना फर्ज निभाए हम, कहीं गंदगी रह ना जाए भारत स्वच्छ बनाए हम, कहीं गंदगी रह ना जाए भारत स्वच्छ बनाए।

रखो साफ सफाई भाई, यही हमारा कहना है। रखो साफ सफाई भाई, यही हमारा कहना है।

पर्यावरण का भी ख्याल रखें, क्योंकि इस समय जो हम झेल रहे हैं हीट वेव के स्ट्रोक्स को, वो कारण सिर्फ और सिर्फ हमारी लापरवाही, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़, इसी के कारण हम झेल रहे हैं इस गर्मी, कभी गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी में इतनी सर्दी कि हालत ख़राब कर दे जी। बिल्कुल, मौसम का तो पता ही नहीं चल रहा है और हम लोग उनकी मार को झेल रहे हैं, क्योंकि हमने भी पर्यावरण के साथ बड़े छेड़खानी की है। बहुत पौधे अब हमको लगाने होंगे, पेड़ पौधों को लगाकर हम अपना पर्यावरण सुरक्षित करेंगे, तभी हम भी सुरक्षित रह पाएंगे, अन्यथा इसी तरह से हम भी परेशान ही रहेंगे।

अब देखिए इस समय जो गर्मी का हाल है, इससे हर कोई परेशान है और इसमें हमें क्या करना चाहिए, एक बार फिर हम आपको बताएंगे कि प्रचार के माध्यमों से हीट वेव लू के संबंध में जारी की जा रही चेतावनियों पर ध्यान दें। हीट स्ट्रोक यानी लू लगना के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सरदर्द, उबकाई, घबराहट, धड़कन और सांसों में तेजी, मूर्छा आदि को पहचाने। यदि उपरोक्त किसी भी लक्षण एवं हीट रैश और हीट क्रैम्प यानी मांसपेशियों में ऐठन और घमौरियों का अनुभव करते हैं तो तुरंत चिकित्सीय सलाह अवश्य लें। और अब चलते चलते एक नजर समाचार पत्रों पर। अयोध्या धाम में हुआ क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, श्रद्धालुओं को एक ही छत के नीचे मिलेंगी सभी सुविधाएं, जल्द होगा संचालन। भर्ती 12 केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से हुई परीक्षा, परीक्षा खत्म होने पर स्टेशनों पर भीड़, पहले दिन 80% तक रही उपस्थिति। अवध विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में स्थापित होगा पुस्तकालय। अवध विश्वविद्यालय के धर्मेंद्र ने पावर लिफ्टिंग में जीता स्वर्ण पदक। डाबसिमर स्टेडियम में मंडल स्तरीय बॉक्सिंग ट्रायल संपन्न। अलीगंज आईटीआई में रोजगार मेला कल, मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
3: इसी के साथ हमारा कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या अब यहीं समाप्त होता है।

0: प्रणाम अयोध्या। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है और आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी कहीं भी सुन सकते हैं। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। हमें पता है कि आपको इंतजार है अपने कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत का, तो पेश है कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
1: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
2: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
1: हरियाई सेंटर जनाना हॉस्पिटल रोड रिकाबगंज फैजाबाद।
2: फोन नंबर 91-61-877-347।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: Hello.
6: Hello. Hello. Telephone number.
7: My number is
1: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर
1: आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थर जैसा न कोई।
0: ये है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9
1: आकाशवाणी अयोध्या,
0: जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com।
5: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

सूरत संवाद, आपके संदेश आपके गीत में स्वागत है आपका। लिए चलते हैं आपको संगीत की हसीन दुनिया के पार। इन्हीं मधुर एहसासों, आपकी फरमाइशों और आपके प्यार भरे संदेशों के साथ हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त प्रतिभा सिंह, आपके अपने कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत, जहां हर गीत जुड़ा है आपके दिल से, फरमाइश है आपकी और सुनवा रहे हैं हम आपके पसंद के गीत। तो पहला गीत किसने पसंद किया है और कहां से पसंद किया है, दोनों हम बताएंगे। जी बिल्कुल, पहला गीत है फिल्म मेरा साया से। पसंद करने वाले श्रोता हैं नलेश्वर नगर महाराष्ट्र से पीएस नावाकर, निर्मला नावाकर, विशाल नावाकर, सोपान तारडे, मलकापुर से नारायण इंगले और आशीष मुहिंकर। तो पेश है आप सबकी पसंद पे आशा भोसले की आवाज में ये गीत मेरा साया से।

दयावान से पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं मित्र नगर बीट शहर महाराष्ट्र से विकास बनलोडे, रेखा बनसोडे, अदिति बनसोडे, वैभव शिंदे, हिल स्टेशन खंडाला, आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे। तो पेश है आप सबकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पे। इंतजार हुआ खत्म और सुनिए अपनी पसंद के वो गीत जो आपने हमें भेजे हैं इतने प्यारे प्यारे संदेशों के साथ अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की आवाज में।

लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।

सफर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और इसमें आप भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आपको करना ही क्या है, हमें अपने संदेश भेजिए। देखिए व्हाट्सएप पे भी हमारे संदेश, हम आपके फरमाइशी गीत सुनाते हैं, फेसबुक पर भी हमारे प्रोग्राम है, और ऑनलाइन बात करने के लिए तो हेलो अयोध्या है ही है। अगर आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा, इसमें आपके संदेश आपके गीत में बनना चाहते हैं तो हमें मैसेज करें 8303219911 यानी 8303219911। इस पर आप हमें अपना नाम, पता, फिल्म के गीत, फिल्म का नाम बिल्कुल भेज दीजिए और हम आपके गीत को आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, ज़रूर सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत, क्योंकि भाई हमें भी इंतज़ार रहता है आपके प्यारे प्यारे संदेशों का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने का भी समय आ चुका है। देखिए कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म राजा और रंक से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता है पटियाला रोड गन डुंडवारा से मोहम्मद खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, आकिल कुरैशी, एजाद कुरैशी, बेबी अरीबा, हबीबा। तो पेश है आप सबकी पसंद पे ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़।

कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

अगला गीत फिल्म आशिकी से पसंद करने वाले श्रोता है भाई आप सभी। मिडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप बुगलानी, जगमोहन प्रजापति। तो भाई आप सबकी पसंद का गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे फिल्म आशिकी से, अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत, आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। सुबह के 9:30 हो गए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
2: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
2: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
4: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
5: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
4: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
5: और साथ में अपना नाम, पता
4: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
5: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
6: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
7: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
8: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
0: सुरों की महफिल सजी है, दिलों का कारवा साथ है, हेलो अयोध्या के संग हर श्रोता आज हमारे लिए खास है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रतिभा सिंह और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो अयोध्या, जहां संगीत की मधुर सरगम, आपकी फरमाइशें, आपकी बातें, आपके अपने संदेश बनाते हैं हमारे सफर को और भी ज्यादा खास। तो तैयार हो जाइए फिल्मी गीतों के रंग में रंगने के लिए, क्योंकि अगले कुछ पलों तक हम सुनेंगे आपके पसंदीदा गीत, करेंगे दिल की बातें, जानेंगे आपका हाल चाल।

0: लिए मुस्कुराहटों और सुरीले नगमों के इस खूबसूरत सफर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है जिनका कॉल लग चुका है। हेलो।
1: हेलो
0: जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर
1: जी मैडम, मैं अर्जुन कुमार फोनकर, मोहल्ला छोटा रमना, देवकाली रोड, अयोध्या। मैडम
0: देवकाली रोड अयोध्या से?
1: छोटा रमना।
0: छोटा रमना
1: जी मैडम।
0: आर्यन जी? अर्जुन जी।
1: जी अर्जुन कुमार फोनकर।
0: अर्जुन जी, आप हमारे कार्यक्रमों को कब से सुन रहे हैं? कितने पुराने हमारे श्रोता हैं आप?
1: कार्यक्रम तो आपका मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ। पहले आपका रेडियो स्टेशन हेलो फैजाबाद हुआ करता था।
0: जी जी जी
1: जी। आज मुझको बहुत दिन हो गया, कम से कम ये मान के चलिए 30-35 साल हो गए।
0: 35 साल से आप सुन रहे हैं इस समय तो आकाशवाणी अपने 90।
1: बहुत अच्छा है, पहले बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम, अभी भी आते हैं प्रोग्राम, बहुत अच्छे आते हैं
0: हमारे इतने पुराने।
1: 6 बजे से रात 11 बजे तक जो भी प्रोग्राम आते हैं सब सुनते हैं।
0: सर आप हमारे इतने पुराने श्रोता हैं और आपसे हमारी बातचीत हुई तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। आपको हमारे कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? आकाशवाणी अपना 90वां साल मना रहा है।
1: आपका प्रोग्राम सबसे बढ़िया ये आता है हेलो अयोध्या
0: जी,
1: उसके बाद 12:30 बजे आता है अवधि लोकगीत जो आता है वो भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम,
0: लोक रंग
1: युवाड़ी आता है वो भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम। आपके सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं मैडम। सुबह से ही रेडियो दुकान पे चल रहा है और रात 8 बजे तक आपका रेडियो चलता है,
0: मतलब आपका
1: घर पे 8 बजे बाद सुनता हूँ।
0: आपका काम भी होता रहता है और आप सीधा हमारे कार्यक्रमों से
1: होता रहता है, मेरा समय भी बहुत आराम से पार हो जाता है
0: जी
1: रेडियो के जरिए।
0: जी बिल्कुल, यही तो है रेडियो की खास बात कि आपके किसी भी काम को डिस्टर्ब नहीं करेगी और आपका मनोरंजन भी भरपूर,
1: हमारा समय बहुत अच्छा पार होता है मैडम।
0: जी जी,
1: ये बहुत बड़ा सहारा है हमारे लिए।
0: अच्छा, जैसे अभी आप कार्यक्रम बता रहे हैं कि आप 35 साल से सुन रहे हैं तो आप हमारे
1: मैडम अभी आपका तो वो भी आने वाला है, यूनिवर्सिटी आने वाला है आपका रेडियो प्रोग्राम का।
0: जी जी बिल्कुल, आपको ये भी याद है?
1: जी जी 17 जून।
0: जी 17 जून ही है। जी बिल्कुल, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे श्रोता भी हैं जो मतलब एक एक चीज जिनको याद है।
1: कुछ 35 साल आपका होगा।
0: जी बिल्कुल। सर अपने बारे में भी कुछ हमारे श्रोताओं को बता ही दीजिए और चलते चलते ये भी बता दीजिए कि
1: बताऊं मैडम, मैं एक दुकान करता हूँ, छोटी मोटी पान की दुकान है मेरी।
0: जी
1: और वही से करता हूँ, रेडियो बजता रहता हूँ, आपका प्रोग्राम सब सुनता रहता हूँ।
0: जी तब कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: पिक्चर है आप आए बहार आई।
0: हाँ कौन सा गाना?
1: मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, वही गाना है।
0: जी बिल्कुल, आपने हमें कॉल किया, हमें बहुत खुशी हुई आपका कॉल करने के लिए, धन्यवाद। और आप हमें फिर से कॉल जरूर करिएगा, इतने पुराने आप हमारे श्रोता हैं।
1: बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा मैडम, बिल्कुल करूंगा।
0: चलिए धन्यवाद। तो दोस्तों आइए सुनते हैं ये गीत अर्जुन जी की पसंद पर।

0: दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है हेलो अयोध्या और इसमें हमारी हो रही आपसे बातें, जान रहे हैं कुछ हालचाल आपका और जानना चाहते हैं हमारे अपने कार्यक्रमों के बारे में और देखते हैं कि अब हमारे अगले कॉलर कौन हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो
1: प्यारी सी क्यूट सी मैम को मेरा प्यार भरा नमस्ते और प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपने बारे में कुछ बताए हमारे श्रोताओं को।
1: मैं आपकी वही जानी पहचानी दोस्त प्रीति बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शुगर दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
0: अरे वाह, आपने इंट्रोडक्शन इतना अच्छा दिया है।
1: जी मैम, आप ही लोगों से सीखा है मैम, मुझे आपकी आवाज और आपका कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: थैंक यू, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई जो प्रोग्राम अच्छे लगे, हम लोगों की कोशिश भी यही रहती है कि आप लोगों को कार्यक्रम अच्छे लगे।
1: और मैम पता, आप लोग जब कार्यक्रम करने आते हो ना तो हम लोग बेसब्री से इंतजार भी करते रहते हैं कि कब आपका कार्यक्रम शुरू होगा और कब आपसे मुलाकात होगी।
0: देखिए ये बातें कह के एकदम आप दिल खुश कर दे रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम जो है, हमारे जितने भी प्रोग्राम यहाँ से जाते हैं उनको आप इतने गौर से सुनती हैं, उनका इंतजार आपको रहता है, हमें भी आपका इंतजार रहता है।
1: जी, क्योंकि आप लोगों की आवाजें सुनना मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगता है। मैं रेडियो सुन रही हूँ मैम।
0: बचपन से सुनती हैं?
1: जी मैम।
0: अच्छा, कितना लाभप्रद।
1: बड़ी वाली दीदी सुनती थी तो हम लोग छोटे थे मैम, अब हम लोग बड़े हो गए तो अभी भी हम लोग रेडियो ही सुनते हैं, रेडियो पे ही आपका कार्यक्रम सुनते हैं।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अभी तक ये सुनती हैं। अच्छा, कितना लाभप्रद रहता है ये, मतलब रेडियो के कार्यक्रमों में काफी जानकारी अभी
1: मेरे घर में तो मेरे लिए मेरा सबसे अच्छा दोस्त ही रेडियो, क्योंकि मैम घर पे रहना, घर के काम करना और मैम कभी कभी तो मैम काम की वजह से बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं, तो अच्छे अच्छे गाने भी सुनने को मिलती है और प्यारी प्यारी आवाजें भी सुनने को मिलती हैं और तरह तरह के मतलब श्रोता भी जुड़ते हैं, तो मैम एक अलग ही अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हम दुनिया के चारों तरफ घूम रहे हों।
0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छी जानकारियां मिलती हैं।
0: मतलब एक जगह रहकर हम दुनिया के हर कोने से हमारे श्रोता भी जुड़े रहते हैं, उनसे बातें भी।
1: मैं दुनिया के हर कोने में घूम सकती हूँ और मतलब दुनिया के हर कोने के बारे में जान भी सकती हूँ रेडियो के माध्यम से।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज कौन सा गीत सुनेंगी आप?
1: जी मैम, मूवी का नाम है नागिन और गीत के बोल हैं।

0: आपकी आवाज पे मैंने ये म्यूजिक भी दे दी है,
1: आपको स्पेशली डेडिकेट कर रही हूँ मैम।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी आवाज के साथ मैंने म्यूजिक भी मिला दी ताकि आपका गीत हो, और आपने बहुत अच्छा गाना गाया।
1: आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मैम।
0: धन्यवाद।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।

0: के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
1: गीतों का सिलसिला जारी है और आपसे बातचीत का भी, तो देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जो हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो।
2: हेलो, हाँ जी, नमस्ते।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कहाँ से?
2: मेरा नाम विजय प्रताप, ग्राम औरंगाबाद, जिला बस्ती।
1: जी, पूरा एड्रेस आपने एक बार में दे दिया हमारे श्रोता सुन के। अब आपको इससे पहले आपकी कॉल लगी है क्या?

0: एक बार पहले लगी हुई है।
1: अच्छा अच्छा, तो
0: मेरी माता जी मतलब रेडियो बराबर सुनती है ना, तो वो रोज मतलब कहती थी भैया करो फोन करो करो करो, तो सबका तू सुन के मतलब टाइम मिला तो भी वो करवाती रहती है फोन।
1: अब देखिए आज माता जी की कॉल भी लग गई, माता जी को कहिए कि हम सभी ये बहुत खुश हैं कि उनकी कॉल भी लग गई, अगर आप माता जी से बात करा देते तो और भी अच्छा था।
0: फिल्म का नाम यही रहिएगा और फिर बात कर लीजिए।
1: हाँ हाँ, हेलो हेलो, नमस्कार माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बिल्कुल बहुत अच्छे, आप कैसी हैं? अच्छा अच्छा, इस समय तो बहुत गर्मी हो रही है तो
0: बहुत बचपन से
1: जी माता जी की आवाज से लग रहा है कि वो बहुत खुश है यार।
0: आपके सबका आवाज हम बहुत नीक लगा था, बहुत दुखी रही था लेकिन
1: चलिए आज आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अरे बहुत लोग हमारे है ना, बहुत लोग है बाजा जब पल जाए तो वो यहाँ बंद कर देता हूँ, कहीं से दुनिया को बात ना सुने बाजा वाला बात।
1: दुनिया भर की जानकारियाँ गीत सब मिल जाता है। अच्छा, आपको लोक गीतों के कार्यक्रम भी पसंद आते होंगे? अवधी लोक गीत जो सोहर और देवी गीत चलिए अपना आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही हमारे चलिए जी बिल्कुल ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे आकाशवाणी के साथ बनाए रखिए और हमेशा सुनते रहिएगा। कौन सा गीत आपने सर कहा था सुनने के लिए? गाना गाना कौन सा गाना कौन सा सुना? कौन सा जी? बिल्कुल आपकी पसंद पे ये गीत आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे अच्छे श्रोता हमको आज मिले हैं जो बहुत दिनों से शायद बचपन से सुन रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है कि हमारे इतने पुराने श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं।

0: ये जो हमसे जुड़ चुके हैं, देखिए समय समाप्त होने वाला है लेकिन फिर भी हम अपने कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, कहाँ से फोन किया है, क्या नाम है, अपने बारे में कुछ बताइए हमें।
1: मेरा नाम सुमन है, बीकापुर से मैम बोल रही हैं। और मैम आप कैसी हैं?
0: हम बहुत अच्छे हैं, आप लोग कैसे हैं?
1: मैम बहुत अच्छे हैं
0: भाई, गर्मी बहुत
1: पड़ रही है मैम।
0: हमारी कृपा कहाँ से हो, से ईश्वर की कृपा है सब पे। अब अभी देखिए
1: मैम, ईश्वर की भी मैम है और आप लोगों का भी आशीर्वाद है मैम।
0: चलिए बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताइए, आज आप गाना कौन सा सुनेंगी, किस मूवी का सुनेंगी, और इस समय गर्मी इतनी पड़ रही है तो क्या कुछ कर रही हैं, मतलब गर्मी से बचने के लिए?
1: मैम क्या कर रहे हैं,
0: बाहर जाती हैं? बाहर जाती हैं धूप में?
1: मैम जाते हैं पर 9 बजे के बाद में नहीं जाते हैं।
0: बस वही चाहिए कि इस समय जो है गर्मी में कम से कम जाए। अच्छा रेडियो का प्रोग्राम, रेडियो का प्रोग्राम आप कब से सुन रही हैं?
1: मैम तो सुबह से सुन रही है मैम।
0: नहीं आज की बात नहीं कर रहे, मतलब कितने दिनों से आप सुन रहे हैं?
1: मैम काफी दिन से मैम सुन रहे हैं।
0: अच्छा इन कार्यक्रमों से आपको कुछ फायदा होता है, जैसे इतनी सारी जानकारियां दी जाती है, ये तो मतलब हम लोग की बातचीत का विषय होता है, कई टॉपिक्स ऐसे लेते हैं जो मतलब जैसे गर्मी का ही ले लिया या जो योजनाएं होती हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो उनसे कुछ लाभ होता है आप लोगों को?
1: जी मैम ज्यादातर तो मैं सखी सहेली सुनती हूँ मैम, उसमें बहुत फायदा हमारा होता है।
0: देखिए घरेलू उपाय उसमें बताए जाते हैं
1: जी मैम, इतने ढेर सारी बातें, और आलो डॉक्टर भी सुनते हैं मैम। हाँ, उसमें भी हमको थोड़ा बहुत मतलब जानकारी मैम मिल जाता है।
0: जी जी, अब जैसे कोई भी दिक्कत हुई, मान लीजिए डॉक्टर के पास तक नहीं पहुंच पाए, तो ये जानकारियां ही हमारे काम आती हैं, इसीलिए कहा जाता है रेडियो सुनते रहिए।
1: जी मैम,
0: पहले
1: थोड़ा बहुत तो जानकारी मतलब होती है मैम।
0: जी बिल्कुल, पहले सूचना और संचार का यही माध्यम ही था और लोग इसको बड़ी खुशी से सुनते थे, आज भी लोग बहुत खुशी से सुनते हैं।
1: जी जी मैम,
0: तो चलिए आपने हमें फोन किया सुमन जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सुनवा रहे हैं बॉर्डर फिल्म का गीत।
1: जी मैम, नमस्ते मैम,
0: धन्यवाद।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: देखिए हमारा गीत भी कह रहा है कि चलूं चलूं, तो देखिए हमारा समय जो घड़ी की सुइयां है वो कह रहे हैं कि अब हम ले आपसे विदा अपने इस कार्यक्रम से, फिर इसी समय पे मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
3: FM बैंड 101.9 MHz पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को।
4: पिटारा में आज सेहतनामा।

0: नमस्कार दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। इनसे हम बातचीत करेंगे जिसका विषय रहेगा मधुमेह कारण और बचाव। डॉक्टर कुणाल मेहता जी, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं विविध भारती के इस माध्यम द्वारा आपसे बात करने का ये मुझे सुंदर मौका मिला है। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो विविध भारती सुन के ही बड़ी हुई है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, जो विविध भारती सुनते ही बड़ा हुआ हूं, और अभी मुंबई में पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परिचय दे दिया कि विविध भारती सुनते सुनते हमारी जनरेशन भी बड़ी हुई है। और देखिए, इसमें एक संयोग की बात यह है कि उसी चैनल पर जब आपको बातचीत का मौका मिलता है सुनने वालों से, तो अच्छा भी लगता है।
1: जी, बहुत खुशी हो रही है, और ये मेरे लिए एक मीडियम है जहां से मैं इंडिया की पूरी जनता से जुड़ सकता हूं और उनको मेरे विचार पहुंचा सकता हूं और थोड़ा मैं उनको गाइड कर सकता हूं आज के विषय के बारे में।
0: जी, आज का विषय हमने सुनने वालों को बता दिया है, मधुमेह कारण और बचाव। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत ऐसे करते हैं कि मधुमेह कई बार डरावना शब्द होता जा रहा है आज के दौर में, खासतौर से आपके पास भी जो मरीज आते होंगे उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। पहले होता था कि एक बड़े होने के बाद, आयु वर्ग निकलने के बाद मधुमेह एक रोग होता था, आजकल ये कॉमन सी बात हो गई है और भारत में तो इसका प्रभाव सबलता से बढ़ता जा रहा है। तो हम जानेंगे कि मधुमेह के प्रकार किस तरह से हैं और आप विस्तार से क्या कहना चाहेंगे।
1: जी, मधुमेह जो बीमारी है सबको पता है, डायबिटीज मेलिटस जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। और कहने में दुख होता है कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है और यहाँ बन गया है। मधुमेह के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस जो कि एडल्ट्स में होता है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। तो टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसमें ये इंसुलिन की टोटल कमी होती है, पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते, इसके लिए ये जो मरीज होते हैं ये पूरी तरह डायबिटीज इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं, और इनमें जो है टैबलेट्स हम नहीं दे सकते, इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है, जो कॉमनली पहले एडल्ट्स में होता था लेकिन आजकल काफी यंग लोगों में पाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंसुलिन की कमी तो है ही, लेकिन साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है।

0: फैक्टर्स के कारण इंसुलिन जो है शरीर में उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है, जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। और एक प्रकार डायबिटीज होता है जो कि हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है। महिलाएं प्रेगनेंसी के पहले उनका शुगर नॉर्मल रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें डायबिटीज शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज पाया जाता है, जो कि डिलीवरी के बाद 50-60% महिलाओं में उनका शुगर बिना ट्रीटमेंट के नॉर्मल हो जाता है। कुछ महिलाओं में ये शुगर आगे कंटिन्यू रहता है, तो उनको डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।
1: देखिए, ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करके आपने समझा तो दिया कि टाइप 1, टाइप 2 और अदर प्रकार के जो मधुमेह रोग होते हैं वे किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम सा पैदा हो गया, हम जी कभी देखते हैं कि बहुत ही मोटा व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है तो हम एक एंटीसिपेशन कल्पना कर लेते हैं इसको डायबिटीज होगा या होने वाला है, ऐसा क्यों होता है?
0: डायबिटीज मोटापे से बहुत रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं, जिसमें है ओबेसिटी, डिसलिपिडेमिया और हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ही मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है। ये सब के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उस पे असर होता है, और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, मतलब जो इंसुलिन का एक्शन है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण की शुगर कंट्रोल में तकलीफ होती है और शुगर बढ़ जाता है।
1: अगर डॉक्टर साहब ये पूछा जाए कि जो आपके यहाँ मरीज आते हैं और सबसे पहली नजरिए वाली बात होती है, तो आप कैसे पहचान जाते हैं कि मधुमेह का टाइप 1 का रोगी बन चुका है?
0: टाइप 1 के जो रोगी होते हैं वो नॉर्मली छोटे बच्चे रहते हैं, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी पहले कहते थे। ये जैसे कि मैंने कहा, इसमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। मधुमेह के लक्षण वही है, वजन कम होना, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, रात में पेशाब जाना पड़ता है काफी बार, 4-5 बार, इन्फेक्शन होना या घाव नहीं भरना, ये सारे लक्षण हैं। और जब सीवियर हो जाते हैं, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो शरीर में केमिकल उथल पुथल होती है, जिसके कारण की मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और जब हम शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है शुगर 500 एंड अबव है। इतना ज्यादा शुगर होता है।
1: वैसे नॉर्मल जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है शुगर की?
0: नॉर्मल शुगर हम बोलते हैं फास्टिंग जो है वो 100-110 के अंदर होती है, और जो पोस्ट लंच मतलब दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की शुगर होती है वो 130 के अंदर होनी चाहिए।
1: अच्छा।
0: जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है, जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है, वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद का जो शुगर होता है वो 126 या उससे ज्यादा हो तो उसे हम डायबिटीज लेबल कर देंगे।
1: अच्छा, यहाँ पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है वो, कि ये जो बात होती है कि भाई अचानक कोई आदमी महसूस करता है कि मुझे शुगर जैसा लग रहा है या बहुत भूख लगती है फिर भी वजन कम होता जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि उसे शुगर नहीं है लेकिन जांच के पहले या कुछ घंटों के पहले उसने मीठा कुछ ज्यादा खा लिया है, तो क्या जांच प्रभावित हो जाती है?
0: नॉर्मली अगर जांच के पहले कुछ मीठा खा गया है तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है या जो प्री डायबिटिक्स नहीं है उनमें इसका असर नहीं होगा। बॉडी की क्षमता ऐसी है कि वो उसको हजम कर लेगी।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट याद रखिए, जब भी हम शुगर टेस्टिंग बोलते हैं फास्टिंग में, तो आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ, वही देखिए, चर्चा हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चल रही है, थोड़ा सा विराम हमें देना होगा और एक संगीतमय वातावरण को गुंजायमान करना होगा। हम चाहेंगे अपनी पसंद का कोई एक गाना बताइए आप
0: श्रोताओं को। मैं, ये मेरे दिल का बहुत ही करीबी गाना है, ये मैं डेडिकेट करना चाहूंगा मेरी प्रिय वाइफ डॉक्टर प्रीति मेहता, जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, इमरजेंसीज के कारण, बट शी इज ऑलवेज देयर। सो गाने का नाम है तू मिले दिल खिले, फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल।
1: हम सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का बहुत ही रोमांटिक गाना है।

0: तू मिले दिल खिले, देखिए बहुत ही उम्दा गाना सुनवाया आपने। और अब जब मरीज आपसे मिलते हैं, टाइप वन के भी मिलते हैं, टाइप टू के भी मिलते हैं, तो ये डिफरेंट या ये भिन्नता या विविधता या ये अंतर कैसे आप परीक्षण से करते हैं, टाइप टू मरीज है ये?
1: जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइप वन कॉमनली बच्चों में होता है, तो जल्दी जुवेनाइल डायबिटीज होता है, यंग बच्चों में होता है, और इसके सिम्टम्स जो डायबिटीज के हैं वही है, लेकिन ये बहुत बार इनको इमरजेंसी में लाया जाता है और हम चेक करते हैं तो शुगर ज़्यादा होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, या इनकी जो मदर है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज रहा हो, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को डायबिटीज हो सकता है, या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत खा रहा है फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, रात में बार बार पेशाब उठ रहा है या पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है यंग बच्चों को, तो डायबिटीज हम सस्पेक्ट करते हैं।
0: तो ये परीक्षण तो कुछ ब्लड से ही होता है?
1: ये ब्लड से ही होता है, जिसमें कि हम फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर करते हैं। एक और डायबिटीज के लिए टेस्ट होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये टेस्ट 3 months एवरेज होता है डायबिटीज का, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6 या 6.5 से कम होती है इसकी मात्रा। अगर इससे ज्यादा हो तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का इंडिकेटर है, और अगर ये ज्यादा है इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज है।
0: अच्छा, सपोज पहली जो परीक्षण वाली बात होती है, टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट जाहिर कर रही है कि ये डायबिटीज का मरीज है, तो अल्टरनेट इमीडिएट ट्रायल ले लेते हैं आपकी, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं।
1: अगर पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट के जो सिम्टम्स है और ब्लड रिपोर्ट्स, हम पूरा पिक्चर देखते हैं ना कि सिर्फ रिपोर्ट, तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते हैं।
0: तो कभी कोई ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट ट्रायल ली हो और बाद में पता चला हो कि डायबिटीज नहीं था?
1: जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो

0: पिक्चर देखते हैं ना कि सिर्फ रिपोर्ट. तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते हैं.
1: तो कभी कोई ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट राय ली हो और बाद में पता चला हो कि डायबिटीज नहीं था?
0: जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो, या हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पेशेंट के सिम्टम से मैच नहीं कर रही, तो जैसे कि मैंने कहा HbA1c टेस्ट होता है जो पिछले तीन महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है. तो अगर ये 3 महीने का शुगर है वो खाने पीने से अल्टर नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट 3 महीने के शुगर लेवल का रिकॉर्ड है. तो अगर ये HbA1c ज्यादा है तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का संकेत है. इसके अलावा 2-3 और टेस्ट होते हैं, जो कि एक सीरम इंसुलिन लेवल होता है, जो इंसुलिन की मात्रा होती है ब्लड में, उसे हम टेस्ट करते हैं. अगर वो लेवल लो है तो भी हमें डायबिटीज का इंडिकेटर मिलता है. और एक सी पेप्टाइड लेवल होता है जो भी हम टेस्ट करते हैं ऐसे स्पेशल कंडीशंस पे, जब हमें डाउट होता है कि पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं.
1: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परीक्षण की बात बता दी और कंफर्म कर दिया कि डायबिटीज का मरीज ये रोगी है और उसका इलाज आवश्यक है. तो वो इलाज के लिए मान लीजिए इमीडिएट आपकी रिपोर्ट बताती है कि हाईएस्ट शुगर है, तो आप उसको एडमिट करने की सलाह देते हैं या घर पर ही इलाज चलता है?
0: एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव है. अगर शुगर ज्यादा है तो इसको इमीडिएट एडमिट करने की जरूरत नहीं है. बट अगर डायबिटीज के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि सांस फूलता है, बॉडी में केमिकल उथल पुथल होके एसिड का लेवल बढ़ जाता है, देयर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कंडीशन में एडमिशन मैंडेटरी है. बट अगर सिर्फ शुगर ज्यादा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट का बीपी बाकी वाइटल स्टेबल है, तो हम इसको ओपीडी बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं.
1: क्या एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है, मधुमेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक किसी कारण से कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से अगर शुगर लेवल क्षणिक रूप से, आंशिक रूप से, त्वरित रूप से उसका बढ़ गया है और उसने टेस्ट करवा लिया है, तो वो तो माना नहीं जाएगा कि वो डायबिटीज का रोगी है क्योंकि लक्षण उसमें नहीं है, ये आप देखते हैं, पूरा हिस्ट्री मालूम पड़ता है. कई मरीज ऐसे भी आते होंगे कि वो शक पैदा कर लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है.
0: जो मरीज मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं उनमें, जैसे कि मैंने कहा, पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं हम पहले, कि पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या, पेशेंट्स को तकलीफें क्या है, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं हम, लाइफस्टाइल डाइट का हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही अल्कोहल स्मोकिंग कुछ आद्य उनको एडिक्शंस है इसकी हिस्ट्री लेते हैं. उसके बाद हम रिपोर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट पे आते हैं. तो जब हम पूरा पेशेंट एज अ होल देखते हैं और मुझे यदि डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या पेशेंट ने कुछ खाने पीने में परहेज नहीं किया है और तुरंत शुगर चेक किया है, इसके लिए शुगर ज्यादा है, तो हम पेशेंट से वापस एक बार रिपोर्ट चेक करने बोलते हैं और जो HbA1c है वो टेस्ट करने को बोलते हैं. उससे हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं.
1: ये बहुत ही अच्छा परीक्षण आप करते हैं ताकि भ्रम भी दूर हो जाता है और खामखा एक जो टेंशन हो जाता है,
0: राइट, पेशेंट्स को दूर बहुत टेंशन होती है.
1: अब देखिए यहाँ पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी जो बातचीत है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको हल्का फुल्का करना होगा और एक गाने का सिलसिला शुरू करना होगा.
0: ये गाना जो है दिल चाहता है मूवी से है, इसका टाइटल सॉन्ग है. ये मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूंगा जो मेरे MD के बैचमेट्स है. मेमोरेबल टाइम हमने बिताया है, आज भी हम मिलते हैं, ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूंगा.
1: सुनते हैं.

0: जांच करके बता सकते हैं कि मरीज को डायबिटीज है कि नहीं और उसकी सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज में हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स है, दवाइयां है, अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें सुई का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे हम टैबलेट या गोली से इसको ठीक कर सके।
1: हाँ।
0: तो इसमें जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं दिन में 2 बार या 3 बार डिपेंडिंग कि पेशेंट की इंसुलिन वैल्यू क्या है, साथ ही खाने के परहेज करना पड़ता है और सेहत का ध्यान रखते हुए क्योंकि बच्चा है, बढ़ती उम्र है, तो उसका सेहत भी हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ हैम्पर होगी, मेमोरी हैम्पर होगी।
1: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मेमोरी पे भी फर्क पड़ सकता है और आपने 3 साल की जो बच्चों का उदाहरण दिया है, एक पढ़ाई की हल्की सी शुरुआत हो जाती है वहां पर आज के दौर में, पहले तो देर से पढ़ते थे बच्चे, तो क्या उसकी ग्रोथ रेट में कुछ ऐसा फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है तो डायबिटीज की वजह से उसमें कहीं कुछ कमी आती है?
0: देखो, डायबिटीज की वजह से शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, ग्रोथ हैम्पर होती है। जनरली ये बच्चे थिन बिल्ड होते हैं, इनका वजन बराबर नहीं बढ़ता है क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, इनको रेगुलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं और इन्फेक्शंस ये बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं अगर इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो। डायबिटीज इटसेल्फ कैन कॉज लो इम्यूनिटी और अगर पोषण और सही न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि डायबिटीज में खाने में काफी सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है, मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स में भी रेस्ट्रिक्शंस है, मिठाई नहीं खानी है, तो इनकी जो ग्रोथ पे है अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दें तो उसके कारण यस डेफिनेटली ग्रोथ हैम्पर हो सकती है जिसके कारण मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है।
1: ये बात तो आपने बड़ी गंभीरता से इसको महसूस आया है, कई आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे और आपने इलाज किया होगा जाहिर है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 3 से लेके जब शुरुआत होती है तो क्या इसकी जो नींव है या फाउंडेशन गर्भावस्था में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे में डायबिटीज आ जाता है?
0: जरूरी नहीं है कि बच्चे को एट बर्थ डायबिटीज हो, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स है, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बट यदि उनके पेरेंट्स या फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है तो काफी चांस है कि बच्चे में डायबिटीज आ सकता है, बट जरूरी नहीं है 100% बच्चे को डायबिटीज होगा। तो जब भी बच्चे को लक्षण आए तभी चेक किया जाए, या ऑब्वियसली अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चे का टेस्टिंग करना चाहिए।
1: अच्छा, परीक्षण के बाद यदि पता चलता है कि बच्चे को टाइप 1 नहीं है और कुछ ऐसे डायबिटीज के लक्षण हैं जो सामान्य होते हैं शुरुआत, तो क्या गोलियों से काम नहीं चल सकता?
0: टाइप 1 डायबिटीज में हम गोलियां नहीं दे सकते, अगर उसके लिए मैंने जैसे बोला हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इंसुलिन लेवल्स देखेंगे, सी पेप्टाइड लेवल्स देखेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे बच्चे को डायबिटीज है कि नहीं। पर अगर बच्चा है उसको टाइप 1 डायबिटीज है तो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शंस है, हम कोई दवा टैबलेट बच्चों में नहीं दे सकते। एडल्ट्स में जो कि टाइप 2 डायबिटीज होता है उसमें इंसुलिन इज द लास्ट ऑप्शन, बहुत बेहतरीन दवाइयां मार्केट में है, एलोपैथी ऑब्वियसली, बट जिससे हम डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है और इंसुलिन एक आवश्यक स्रोत बन जाता है कि ये लेना ही है उसको, तो ये तो फिर जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा?
0: जी सही बात है, इसी बात का हमें दुख होता है कि इंसुलिन जो है लाइफ लॉन्ग बच्चों को लेना पड़ेगा, बड़े होते हैं तभी भी उनको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा बिकॉज उनके शरीर में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, दैट्स व्हाई इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं।
1: लेकिन युवा अवस्था तक अगर वो बच्चा आता है, शादी ब्याह की बात होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें कुछ डिसफंक्शन की बात रहती है, कुछ कमी सी लगती है, दुर्बलता आती है?
0: डायबिटीज में सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, पर अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल में रखे, सही न्यूट्रिशन रखे, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
1: अच्छा, ऐसे कोई मरीज आपके पास आते हैं जिसकी आयु 15 से 20 साल हो, युवावस्था कही जा सकती, किशोरावस्था, टीनेजर, उनको डायबिटीज हुआ हो अपनी लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण, तो क्या वो, और मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, तो वो क्यूरेबल है?
0: डायबिटीज जो है इसका

0: दिल चाहता है, दिल तो बहुत चाहता है कि गाना लगातार चलता रहे, सुनते रहे, लेकिन गाने की भी एक अवधि है, हमारे कार्यक्रम की भी एक पाबंदी है। अब अगला सवाल जो आज का, दोस्तों हम बता दें कि आज की चर्चा का विषय ये है मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर साहब, मधुमेह की जो प्रकार वाली बात आपने बताई, परीक्षण वाली बात बताई, अब हम जानेंगे कि बच्चों में जो मधुमेह हो जाता है तो वो कितने उम्र के छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और कहाँ तक इसकी सीमा होती है, और ये विस्तार से हम जानना चाहेंगे।
1: देखो, बच्चों में जो डायबिटीज होता है, कॉमनली हमने जैसे बोला कि ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस होता है। इसकी कोई उम्र नहीं है, 3 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसके लक्षण हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इनमें से कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए, फिर वो आगे

0: कोई क्योर नहीं है अनफॉर्चुनेटली. हाँ, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है जिसको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं, मतलब उनका शुगर जस्ट नॉर्मल रेंज के बाहर है. या ये वो पेशेंट्स है जिसको हम अगर सही लाइफस्टाइल दे, उनका डाइट कंट्रोल करें, उनको फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करें वो पेशेंट्स, तो उनका शुगर कंट्रोल में रह सकता है, उनको कोई दवा की आवश्यकता नहीं है. आजकल जो हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन, ये बहुत ही भयानक बीमारी है बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चे काउच पोटैटोज बन रहे हैं, सोफा पे बैठ के टीवी देखना, घंटों मोबाइल में घुसे रहते हैं. हमारे जब हम छोटे थे तब हम बाहर खेलने जाते थे, मैदानों में आउटडोर गेम्स खेलते थे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो हो, ये सब खेलते हुए हम बड़े हुए. लेकिन आज के अगर हम यंग जनरेशन देखें तो वो कंटिन्यूसली मोबाइल में घुसे रहते हैं, या फिर प्ले स्टेशन है, टीवी है, इंटरनेट है, तो इसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है. आउटडोर जो गेम्स रहते हैं आजकल बहुत कम खेलते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी इज ऑन द राइज. बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिनको जो ओबेसिटी के शिकार है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, वजन मोटापा जिसे हम बोलते हैं वो बहुत बढ़ रहा है, और ये सब का असर डायबिटीज की तरफ उनको ले जा रहा है. उनको युवा अवस्था में 20, 25, 30 साल में डायबिटीज हो रहा है, इसके कारण डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी आगे बढ़ के उनको होने वाली है.
1: ये बहुत एक चेतावनी भरी बात आपने कही है, कॉम्प्लिकेशंस. इस बिंदु को लेकर हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे यहाँ पर.
0: ये जो गाना है ये दिल के बहुत करीब है, और ये मैं डेडिकेट करना चाहूंगा मेरे पेरेंट्स को. तो तारे जमी पर का ये बहुत ही उम्दा सॉन्ग है माँ, ये मैं मेरी माँ को डेडिकेट करना चाहूंगा.
1: बहुत ही इसमें डिफाइन करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एहसास मात्र है. आइए सुनते हैं तारे जमीन पर फिल्म का ये गाना.

0: गाना तो आपने बहुत ही इमोशनल सुनवा दिया. ये देखिए, ममत्व से बढ़कर कोई एहसास नहीं और कोई इमोशन नहीं है. लेकिन यहाँ पर जब किसी को मधुमेह हो जाता है, वो आपके पास आता है, तो एक तारतम्य आपका जुड़ जाता है, एक सिंपैथी सी हो जाती है कि इतनी कम उम्र में बच्चों को हो गया. लेकिन जब बड़ों को डायबिटीज हो जाता है या वो उसके शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के बारे में क्या कारण आप समझते हैं कि हो जाता है?
1: इसके कारण मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण है. एक है जेनेटिक, जो फैमिली से आता है. आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आप डायबिटीज के लिए प्रोन है. जरूरी नहीं कि फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको डायबिटीज होगा, बट यस, आप नॉर्मल आदमी जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं है या जिसके जीन्स में डायबिटीज नहीं है, उससे आप रिस्क पे है, उससे ज्यादा रिस्क आपको है डायबिटीज होने की. आजकल जो उससे ज्यादा बीमारी जो है आजकल, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी. डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज ओबेस पेशेंट्स में काफी मात्रा में पाया जाता है. जो पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो काउच पोटैटोज है, जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, और जो अल्कोहल या स्मोकिंग के आदि है, ये पेशेंट्स में डायबिटीज का रिस्क बहुत ज्यादा होता है. बिकॉज डायबिटीज जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज होता है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. तो इसके कारण अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, या आप स्ट्रेस ले रहे हैं. मुंबई की लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, बट आजकल गांव में भी हम देख रहे हैं, जो युवा है, आज की जनरेशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन आ जाता है उन्हें. तो ये सब डायबिटीज को बढ़ावा दे सकते हैं, आगे जाके ये पेशेंट्स, ये मरीज को डायबिटीज हो सकता है.
0: डॉक्टर साहब, फैमिली हिस्ट्री की बात आपने की, अनुवांशिकता की बात की, जो हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, तो ये आपके पास इस तरह के भी मरीज देखने को मिलते होंगे आपको, कि पिता को था लेकिन 3 भाई या बहन हैं, उसमें से केवल एक को ही हुआ है, 2 को नहीं हुआ है.
1: डायबिटीज में फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली होती है, बट जरूरी नहीं है कि फादर या मदर को या दोनों को डायबिटीज है तो सभी बच्चों को डायबिटीज होगा. ये उस इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है. अगर पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट रखे और स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहे, तो चांस है कि उसको डायबिटीज नहीं हो.
0: ये बात तो आपने बड़ी सुधार की कही है कि कभी. अच्छा, इसमें एक सेंटेंस आपने कहा था, स्ट्रेस या तनाव या अवसाद, इसको अलग अलग रूप में लेते हैं लोग, वो हर किसी को है, आपको है और मुझे भी है, कहीं ना कहीं हम इससे बचे नहीं है. लेकिन उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना गहराई से उसको महसूस करते हैं, तभी इसके शिकार बनते हैं. कितना सहमत है आप?
1: ये एक बिल्कुल सही बात बोली. देखो, जैसे कि मैंने कहा, अर्बनाइजेशन जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, भागदौड़ वाली मुंबई में जो हम भागदौड़ करते हैं, यहाँ से वहां ऑफिस जाओ, यहाँ आओ, इधर जाना है, उधर जाना है, तो लाइफस्टाइल जो हमारी है पूरी तनावपूर्ण है. ऑफिस में वर्क है, घर पे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है. कि जो युवा है गाँव में भी, जो रूरल एरियाज है वहां पे भी स्टडीज है जो बताती है कि गाँव में भी जो स्ट्रेस है वो लेवल काफी बढ़ गया है युवाओं में. स्ट्रेस से बचना नामुमकिन है. ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना स्ट्रेस ले, कितना नहीं ले. मैं तो मेरे पेशेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ, भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं, 1 कान से सुनो, दूसरे से बाहर लो. बीच में जो दिमाग है उसको बेचारे को टेंशन मत दो, उसको छोड़ दो
0: जी.
1: क्योंकि टेंशन से ना सिर्फ डायबिटीज के और हम बढ़ावा दे सकते हैं, इससे और भी सारी, काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है.

0: इतना गंभीर स्रोत बताया कि मुझे एक प्रश्न यहाँ करना पड़ेगा सुनने वालों की ओर से कि आप इतना इलाज करते हैं और एक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसका अगर मधुमेह नियंत्रण में न आया तो न आने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में विस्तार से बताइए
1: जी। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखे तो काफी सारे शरीर के जो पुर्जे हैं उन पे नुकसान हो सकता है। डायबिटीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट किलर
0: जी।
1: ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है और जब 10 साल 15 साल आदमी को डायबिटीज होता है कंट्रोल में नहीं रहता है तब इसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरुआत होती है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस सेट इन हो जाते हैं तो काफी देर हो चुकी होती है, काफी इसके कारण मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी होती है। डायबिटीज जो कॉम्प्लिकेशंस है ये माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर बोलते हैं। सरल भाषा में कहा जाऊं तो शरीर के सभी अवयवों पे इसका असर होता है, बुरा असर। आंखों में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं जिसमें जो आंख का पर्दा है जहां पे इमेज बनती है उसे डैमेज होता है, पेशेंट्स को आगे जाके दिखना बंद हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरैक्ट्स बहुत जल्दी होते हैं जिसको हम मोती बिंदु कहते हैं, तो ये पेशेंट्स को कम उम्र में कैटरैक्ट होता है, ऑपरेशन से ये सही हो सकता है। पर अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ गया तो इसके कारण उनको दिखना बंद हो सकता है। फिर डायबिटीज से किडनी पे प्रभाव पड़ सकता है जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिससे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है और आगे जाके ये पेशेंट्स डायलिसिस पे भी लैंड अप हो सकते हैं। इतना गंभीर रूप से डायबिटीज का असर होता है। तीसरा असर डायबिटीज का होता है हार्ट पे, जिसमें हार्ट अटैक जो है ये हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में। स्पेशली हार्ट अटैक उन पेशेंट्स में होता है जिनको ओबेसिटी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनका कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मात्रा ज्यादा है। तो हम जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है, साथ में ब्लड प्रेशर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, ये पेशेंट्स बहुत ज्यादा रिस्क में होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज का ब्रेन पे भी असर हो सकता है, बिकॉज डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल हैंड इन हैंड चलते हैं, तो ये पेशेंट्स को लकवा यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज में न्यूरोपैथी होती है जिसमें हम हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है और आगे जाके तलियों में और हाथ के जो पंजे है उसमें जलन होती है। ये जलन बहुत सीवियर हो सकती है और इसके कारण पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है।
0: हमने ये भी मरीजों में देखा है, पाया है कि आपने हाथों की जो जलन बताइए, पैरों की पत्तलियों में जो ऐसा होता है कि ऑपरेशन तक करना पड़ता है।
1: डायबिटीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट। जैसे कि मैंने बताया न्यूरोपैथी में क्या होता है कि इनकी जो नर्व्स है वो कमजोर हो जाती है, इनके सेंसेशन जो है वो चले जाते हैं, इसलिए ये पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशंस नहीं होता है। काफी बार ये होता है कि पैरों में जख्म हो गई लेकिन पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशन नहीं होने के कारण ये जख्म बढ़ता जाता है और डायबिटीज के जो मरीज है ये काफी बार अपने फुट चेक नहीं करते हैं। इसलिए हम हमेशा मेरे पेशेंट्स को मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि डेली बेसिस पे एक बार एटलीस्ट दिन में अपना फुट इंस्पेक्ट करना चाहिए और फुट वेयर जो है वो प्रॉपर फुट वेयर होनी चाहिए और फुट इंस्पेक्शंस होना चाहिए। तो ये जो डायबिटिक फुट है इसमें कॉम्प्लिकेशंस होके इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन स्प्रेड होके हमें काफी बार एम्पिटेशन भी करना पड़ता है, मतलब पैर को काटना पड़ता है। वो लेवल हम डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, बिलो नी होता है, बिलो एंकल, अबव एंकल होता है, तो डिपेंडिंग, या कभी कभी सिर्फ एक उंगली काटनी पड़ सकती है। तो इतना भयानक ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट।
0: लेकिन यहाँ आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसमें मटेरियलिस्टिक ढंग से देखें तो प्लास्टिक का चप्पलों का उपयोग कर सकते हैं या पूरा जूता और मोजा बंद करके पहनते तो मॉइस्चराइजेशन होता है, तो उस पैर की अवस्था को कैसे रखा जाना चाहिए?
1: नहीं, डायबिटिक फुट केयर में यही है कि आप अपने फुट क्लीन और ड्राई रखें। यू कैन वेयर सॉफ्ट चप्पल्स, आजकल मार्केट में भी स्पेशल डायबिटीज फुटवेयर आती है जो आप पहन सकते हैं। जो पेशेंट्स में डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन है या डायबिटिक फुट है या कभी कभी फ्लैट फुट होता है उनके लिए स्पेशल फुटवेयर भी आते हैं, न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए भी स्पेशल फुटवेयर है। लेकिन जो आम जनता है जिनको डायबिटीज नहीं है उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, ज्यादा टाइट शूज नहीं पहने और घर पे आते ही पैरों को खुला

0: है उनको हमेशा डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट करें।
1: इसका मतलब थोड़े समय के लिए जब बहुत सारी बंदिश हो जाती है तो उसको आपको थोड़ा हवा के रूप में रखना चाहिए, थोड़ा खुला रखना चाहिए, मोजे वगैरह ना पहने उस समय के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो संगीत वाली बात है वो कौन सी है?
0: ये गाना है, ये मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगा।

0: छह दिन जो है हफ्ते के, उस दिन आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। डाइट के बारे में बताना चाहूंगा कि हमें जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डाइट में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक होना चाहिए। फैट का इंटेक, चर्बी का इंटेक या चर्बी युक्त पदार्थों का इंटेक कम रखना चाहिए। खाने में सलाद, हरी सब्जियां, फ्रूट्स और टोंड मिल्क का सेवन करें। रेगुलर बेसिस पे आपको सलाड्स और फ्रूट्स लेना चाहिए। साथ ही नॉन वेजिटेरियन फूड है जो एंजॉय करते हैं वो बेशक खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट और एग योक, जो योक होता है, उसे कम लेना चाहिए। और तली हुई चीजें, फ्राइड स्टफ, इसका सेवन कम करना चाहिए। कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि मीठा खाने से डायबिटीज होता है। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है कि आप मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट यस, अगर आप हाई कैलोरी फूड जिसमें कि घी, तेल, चर्बी ज्यादा है, ऐसा फूड का सेवन रेगुलर करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो यस, आप डायबिटीज की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं, आपको फ्यूचर में जाके डायबिटीज होने की संभावना है।
1: ये आपने सही कहा कि मीठे के बारे में जो मिथ है, खा सकते हैं लेकिन उसको पचाइए भी।
0: यस।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चलन सा निकला है, कोई भी पदार्थ हो उसमें कहा जाता है आप ले सकते हैं शुगर फ्री, तो व्हाट इज शुगर फ्री?
0: जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे शुगर नहीं बढ़ता है या कम बढ़ता है, इसके लिए हम इनको शुगर फ्री बोलते हैं। जैसे कि सैकरिन हो गया या कुछ केमिकल्स है जो स्वीट टेस्ट देते हैं बट इनसे शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। स्टीविया है जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इस ये भी शुगर फ्री होता है। तो जो पदार्थ या मिठाइयां बनाई जाती है इनमें इन केमिकल्स, शक्कर या चीनी या गुड़ का इस्तेमाल न करते हुए ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस यूज होते हैं जिनसे कि उसका कैलोरी काउंट और शुगर काउंट लो हो या उससे शुगर नहीं पड़े। तो हम ये सलाह देते हैं पेशेंट्स को कि ये जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस है इनका सेवन आप कर सकते हैं, बिकॉज दिल तो करेगा, दिल तो अभी भी बच्चा है, मीठा खाने की जिद तो करेगा। तो आप कभी कभी इंडल्ज कर सकते हैं, बट ये जो शुगर फ्री मिठाइयां स्पेशली होती है उनमें मावा है, घी है, तो कोलेस्ट्रॉल इनसे बढ़ सकता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इनको रेगुलरली नहीं ले, कभी कभार खुद को खुश करने के लिए या शाबाशी देने के लिए कि अगर आपने डायबिटीज कंट्रोल रखी है, रेगुलर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके टू इंडल्ज।
1: तो ये तो तमाम सारी जो लाइफस्टाइल से संबंधित जानकारी है आपने दे दी है और हमें उम्मीद है कि लोग इसको स्वीकारेंगे, मानेंगे और उसका पालन करेंगे। अब चलते चलते एक गाना तो बनता है, वो आपकी पसंद का नगमा कौन सा है?
0: ये आखिरी गाना है जो मैं श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहूंगा, पूरे इंडिया के श्रोताओं को। ये AR रहमान साहब का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हर इंडियन के करीब होना चाहिए। माँ तुझे सलाम।
1: आइए सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब आपने देखिए देशभक्ति पूर्ण जज्बे से जो लबरेज था ये गाना सुनवाया और अब चलते चलते आखिर में एक कोई संदेश नुमा बात हमारे मधुमेह के रोगियों को कहना चाहेंगे तो वो क्या है?
1: मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा सब श्रोताओं को कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और अगर हम सही लाइफस्टाइल चुने तो हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं. ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल.
0: इतने गहन विषय पर आपने सरल शब्दों में आज का हमारा जो विषय था मधुमेह कारण और बचाव इस पर अपनी चर्चा की और लोगों को समझाया, हमारे सुनने वालों से मुखातिब हुए. इसके लिए विविध भारती में आने के लिए और इस तरह की चर्चा करने के लिए विविध भारती की ओर से तमाम सुनने वालों की ओर से आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं.
1: एक बार फिर से सब श्रोताओं का और विविध भारती का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए. धन्यवाद.
0: तो दोस्तों ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और जाने माने फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से. यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो मेल करके खत लिख के हमें अपनी राय से अवगत अवश्य कराइए. चलते चलते आपको बता दें आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर थी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा. अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत. नमस्कार.

0: सुन रहे हैं विविध विविध भारती
1: हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आ...

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में। आइए आरंभ करते हैं कार्यक्रम रंग तरंग इस भक्ति गीत के साथ, जिसे लिखा है तुलसीदास ने, केदार पंडित ने इसे संगीतबद्ध किया है और अपने सुरों से सजाया है साधना सरगम ने।

हम सुन रहे थे अनफॉरगेटेबल ट्रीट आशा भोसले के इस एल्बम से, आशा भोसले की आवाज में मीरा भजन और जयदेव की स्कृति को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला गीत, जो कि है शंकर शंभू कव्वाल और साथियों की इस एल्बम से, जिसे गाया है शंकर शंभू कव्वाल और साथियों ने। एल्बम का नाम है जिम्बो फाइंड ससन, अनजान के बोल हैं और सरदार सिंह का संगीत।

0: तो हाय देखते ही रह गए हम भी, उठाए जाम भला होश किसे बाकी है।
1: हाँ, किसे पीने की हसरत थी।

सितम एल्बम से यह नगमा हम सुन रहे थे चंदन दास की आवाज। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे द लेटेस्ट जगजीत सिंह चित्रा सिंह गजल्स एल्बम से, चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज में, जिसे लिखा सुदर्शन फाकिर ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुनीली धड़कन कार्यक्रम। सुन रहे हैं रंग तरंग। आइए सुनते हैं मीरा भजन्स बाय लता मंगेशकर इस एल्बम से, लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल मीराबाई के, हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे वडाली ब्रदर्स की आवाज में याद पिया की आए। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में जिगर मुरादाबादी के बोलों से सजे हुए इस नगमे को, जिसे महेश छेदर ने संगीतबद्ध किया है और इस एल्बम का नाम है जिगर से जिगर तक।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
3: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग।
1: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। 11:55 होने को है। प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल।

0: एमएसपी नहीं मिल रहा है। ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में एमएसपी से ऊपर मिला है, और अब मस्टर्ड का देख लीजिए, अभी मस्टर्ड का सीजन है, एमएसपी से ऊपर है। चना का देख लीजिए, चना ऊपर है। व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है एमएसपी पे, तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है। इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा मतलब 50-100 रूपये नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आज वहां पे भी ऊपर आ गया है प्राइस, मार्केट प्राइस। तो लगभग सारे जो रवि क्रॉप्स है वो एमएसपी से ऊपर है या एमएसपी के बराबर के पोजीशन में है,
1: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को।
0: बिल्कुल, बढ़ोतरी हुई है, काफी अच्छी बढ़ोतरी, क्योंकि 50% जब A2 प्लस FL के आधार पे दिए हैं वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा तो। और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू की है, इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया, पल्सेस मिशन लॉन्च किए, और बहुत सारे चीजें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की है। एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे जो तीन फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून, जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है, फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर जबरदस्ती थोप नहीं दिया। जो भी चीजें हैं फार्मर जो चीज यस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे
1: जी,
0: कोई भी स्कीम हो।
1: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमेटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें एमएसपी पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, तो आप हमें बता सकते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है, और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को एमएसपी के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
2: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल एमएसपी वैल्यू में, अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, वो 26.3, यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने एमएसपी के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उसको हम मीट कर पाए। इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है, जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163%, यानी 163% 1530 रुपए जो ज्वार की एमएसपी थी, अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में, जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% से ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि एमएसपी को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही, बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पर 179% बढ़ाया गया, जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है
1: जी।
2: क्रेडिट की व्यवस्था में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट है। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में, खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में, इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं, हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इससे दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी, और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए, खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद, और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। वो सारे पैक्सों को वेयरहाउस में कन्वर्ट करना और वेयरहाउस को नीली छत और पीली

0: दीवार वाले नहीं हो करके स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था, एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय 20 के सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है और आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में, बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
1: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरुआत होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीज से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
2: सुनील जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहा है और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के डीबीटी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, उसके खाते में पैसे हैं, अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं, तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको। और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं, जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका, तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
1: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई, आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है, ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
2: जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए हैं। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाड़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखी होंगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल नुकसान हुआ है, तो ऐसे में किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो

0: आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से हुए तो करीब करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने दिसंबर 25 तक इसमें फायदा उठाया है के सोनू जी।
1: जी बिल्कुल। एंड मिस्टर आनंद, कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड विच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी ऑल्सो, द फिशरीज, द एलाइड सेक्टर्स, दे हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड एंड इन fact, for the allied sectors, this government has created a special ministry and there's a ministry of cooperation. So you think that enhancing the income of farmers, these allied sectors are playing a very major role?
2: देखिए, जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नीयत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहां हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा। ये
1: तो पैक्स जो आप कह रहे हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी,
2: क्रेडिट सोसाइटीज, जी बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया। यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड और वो भी डिजिटाइज्ड है, यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए, वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए, यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं, बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर है, इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया, एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से ये सारी चीजें हो रही है। मेगा फार्म फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो उनकी जरूरत क्या है?
2: ऐसे चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे, जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहां पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में एक्स बटा 8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है।

सीक्रेट रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है ये सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में और जो डेयरी में, आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है, तो

0: गैस में।
1: जी
0: और एक कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टर्बाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं
1: जी।
0: और एक तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टर्बाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही है, तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए, ये फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है, पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए। हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती हैं, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए इनका क्या महत्व है?
2: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहां पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओ होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
2: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओ को, जो चाहे वो कर सकते हैं एज ए बिजनेस एंटिटी, उनको बिजनेस बढ़ाना है। और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है, किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
2: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं और अपने फार्मर को, कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं। तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
1: so that the collective power is there. And Mr. Mishra, we would also like your views, and if you could tell us that how government is really empowering the farmers by protecting them from increasing

0: अभी श्रोता सुन रहे थे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप हमें दुनिया में कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
3: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
4: RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: आपकी बात कार्यक्रम में
1: अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं।
0: और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से।
1: व्हाट्सएप मैसेज में सबसे पहले कैपिटल लेटर में AKB टाइप करें।
2: इसके बाद अपना नाम और पता लिखते हुए
1: कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया लिखकर
2: 830-321-9911 पर भेज दें।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: अगला लोकगीत हम भेज रहे हैं अनीता श्रीवास्तव और सखियों की आवाज में।

0: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
1: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
2: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
1: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
2: जी हाँ, और वो है योग।
1: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
2: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
1: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
2: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
1: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
2: योग करिए, निरोग रहिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: अभी श्रोता सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग, FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी अयोध्या के साथ। दोपहर के ठीक एक बज चुके हैं और इंतजार हुआ है खत्म। अब प्रस्तुत है फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। जी हाँ, जिसका रहता है आप सभी को बेसब्री से इंतजार। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग

कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम सुनवाएंगे आप सभी के पसंद के गीत जिसको आपने फेसबुक पर कमेंट किया है, फरमाइश की है, तो हम आपके नाम पढ़ेंगे और आपके पसंद किए हुए गीतों को सुनवाएंगे। तो 101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। कार्यक्रम में जो कमेंट आया है विष्णु टेलर्स और दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर से, संजय ढिंगिया बागपत उत्तर प्रदेश से, राधा नामदेव सहारनपुर से, राजेश कुमार वर्मा मऊ उत्तर प्रदेश से, शिव चौहान बाबा कुटीर रायगढ़ से, मसरूर हसन गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, उमा सिंह उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से, और जो अगली फरमाइश है वो है पंजा जी की नरवेल महाराष्ट्र से, जगमोहन सिंह प्रजापति गांव लोहडडा जिला बागपत से। अगला कमेंट आया है ओम प्रकाश राय का कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। इसके अलावा फरमाइश की है दिनेश वर्मा ने रिंगनी छत्तीसगढ़ से। तो श्रोताओं आप सभी ने पसंद किया है इस गीत को, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है आवाजें। तो आइए सुनते हैं आप सभी के पसंद पर ये गीत।

दोस्तों ये सब तो ठीक है, मुबारकबाद मिलते रहेंगे, लेकिन सबसे पहली बात जो है, आजकल गर्मी बहुत है, इस तपती दोपहरिया में, तपती धूप में खुद को बचाना बहुत जरूरी है। हीट वेव यानी लू और चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप खुद को हाइड्रेट रखें और सीधी धूप से बचें। दिन के समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से बचें। अगर बहुत जरूरी ना हो, बहुत जरूरी काम ना हो, तो आप बिल्कुल ना निकलें, शाम का इंतजार करें। हल्के और ढीले सूती कपड़े पहने, बच्चों को भी सूती कपड़े और हल्के कपड़े पहनाएं, ऐसा कि नहीं फैशन के चक्कर में बहुत डिजाइनर कपड़े पहना दें। और कपड़े का ध्यान न रखें कि ये सूती है या फिर नायलॉन है, कुछ भी, तो कपड़ों का चयन सोच समझ कर करें। और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, खुद भी पिएं, छोटे बच्चों को भी पिलाएं, क्योंकि छोटे बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है। नींबू पानी पिएं, ORS का घोल पीते रहें अगर आपको डिहाइड्रेट की प्रॉब्लम लगती है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। और गर्मियों में हीट वेव से सुरक्षित रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आप धूप से बचें और हाइड्रेट रखें शरीर को, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा धूप में ना निकलें, ये हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि धूप जो है बहुत खतरनाक है। आज की जो गर्मी है आजकल की, ये बहुत नुकसान दे सकती है। आपको हेडेक हो सकता है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, या आपको फीवर तक आ सकता है। अगर लू लग जाएगी तो आपको दस्त भी लग सकती है। खैर, ये सब बातें तो हम करते रहेंगे, और अब आइए सुनवाते हैं आप सभी की पसंद पर। तो अगली फरमाइश आई है रविंद्र सिंह छाबड़ा, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से आपने फरमाइश की है। और इसके अलावा फरमाइश की है गजानन येले ने सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से। सतीश अनेजा का कमेंट आया है चंडीगढ़ से। शुभ चंदेर बचाज आपने कमेंट किया है कालका से। दिग्दर्शन गौड मेरठ कैंट से। प्रमोद कुमार साहू बोड़सरा छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा जो कमेंट हमें दिखाई दे रहा है वो है नरेश मल्होत्रा का। और वेद प्रकाश आपने कमेंट किया है गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ से। शेख जियाउर रहमान आपने हमें फरमाइश कर भेजी है मानपुरा साबित जिला मुरादाबाद से। और रियासत हुसैन सिद्दीकी, इनकी फरमाइश आई है जसपुर उत्तराखंड से। सुरेश गगनेजा आपने हमें फरमाइश की है जलालाबाद वेस्ट से। और अगली फरमाइश हम देखते हैं दिलावर खान की, आपने हमें फरमाइश की है रघुवीर नगर से। इसके अलावा जो अगली फरमाइश दिख रही है वो है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा का, पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर सोनू निगम की आवाज में ये गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पाव भाई साहब, क्या हाल है?
3: यार हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया, इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
2: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
3: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है।
4: दोस्तों, और सबसे जरूरी बात है इस गर्मी से बचने के लिए कि प्यास ना लगने पर भी, यानी आपको ऐसा नहीं कि बहुत प्यास लगे तभी पानी पिए, अगर हल्की भी प्यास लग रही है या फिर नहीं भी लगी है तो हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी आप जरूर पिए सिप सिप करके। इसके अलावा नींबू पानी भी आप पी सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। नारियल पानी तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। छाछ, मट्ठा या आम पन्ना, जो कि बहुत गर्मियों में बहुत चलन में होता है आम पन्ना, और ये फायदेमंद भी होता है और लू से भी बचाता है। इसमें पुदीने की पत्ती वगैरह यूज करके आप जो है पी सकते हैं, और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर बनाए रखते हैं ये सब। तो ये सब चीज आप ध्यान दीजिए, समय समय पर इनको आप लेते रहिए, और सही कपड़ों का चुनाव करना तो बिल्कुल ना भूलिए। हल्के रंग के कपड़े, सफेद रंग के कपड़े जो पूरे शरीर को ढके, अगर आप बाय द वे बाहर जाते हैं या आपको बहुत जरूरत लगती ही है तो आप सर पे गमछा बांधकर या कैप पहनकर जरूर निकलिए, और ढीले कपड़े, सूती कपड़े पहनिए, हल्के रंग के कपड़े पहनिए जिसमें कि हवा जाती रहे, टाइट कपड़े बिल्कुल भी ना पहनिए, पसीना जिससे सूखता रहे। और बाहर निकलते समय हमेशा छतरी का इस्तेमाल करिए आप, धूप से आंखों को बचाने के लिए सनग्लासेस लगाइए। और इसके अलावा जो भी आपको ये लगता है कि ये चीज़ करने से हम हीट वेव या चिलचिलाती धूप से बच सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप करिए ताकि आप सुरक्षित रहिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो हमें सुनते रहेंगे और हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे। फिलहाल आइए देखते हैं कि अगला कॉमेंट किसका आया है। तो जो अगला कमेंट हमें दिख रहा है वो है योगेश सरवा का, उरेटा डोंडी लोहारा, जिला बालोद से। यसीन अंजान, गिरडीह झारखंड से। और आपने हमें फरमाइश की है प्रवीण श्रीमली, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से। लालगिरी गोस्वामी ने फरमाइश की है रघुनाथपुरा, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से। संजय कुमार साहू ने हमें कमेंट किया है पोटिया कला दुर्ग से। आफताब अंसारी, आपने हमें फरमाइश कर भेजी है गंज डुंडवारा, उत्तर प्रदेश से। विक्रम मालवीय, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से। विजय सुरालकर, मौताला, महाराष्ट्र से। और रज्जाक मोहम्मद, हनुमानगढ़, राजस्थान से। आप सभी की फरमाइश आई है। इसके अलावा अगली फरमाइश हम देख रहे हैं सुनील पाठक की। इन्होंने हमें फरमाइश की है अनारकली वजार, जगराओ से। धीरज गुप्ता ने फरमाइश की है कस्बा उगेठी से। तो आप सभी ने पसंद किया है हीर रांझा का ये गीत, आवाज है लता मंगेशकर की, और गीत को संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने।

0: कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
1: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें। आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
0: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
1: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
0: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, ये आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
2: श्रोताओं, गर्मी का मौसम जो है वो अपने चरम पर है और इसमें खुद को बचाना खुद की जिम्मेदारी है। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम अपना ख्याल कैसे रखें। तो हम आपको बता दें कि जैसे हम बाहर निकलते हैं, सो सनस्क्रीन इस्तेमाल ज़रूर करें। घर से निकलने से 20 मिनट पहले अच्छी क्वालिटी का, जो अच्छा ब्रांड हो, उसका SPF 30 या उससे अधिक की SPF की क्रीम आप ज़रूर लगाएं। और खान पान विशेष तौर पे ध्यान रखें, जैसे हल्का और ताज़ा भोजन खाएं, थोड़ा खाएं, जितनी आपको भूख हो उससे एक रोटी कम खाएं, ज़्यादा तला भुना या पूड़ी पराठों से बिल्कुल दूर रहें। तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, ये जैसे वाटरी फल जो होते हैं, जो भी पानी से भरपूर हैं, इनको आप अपने डाइट में शामिल ज़रूर करें। और एक बात, हाँ, गाड़ी में जैसे हमारी बंद गाड़ी जो होती है, उसको जब हम कहीं पार्क किए होते हैं तो उसमें गर्मी बहुत हो जाती है, तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। और गाड़ी के अंदर कभी भी बच्चों या पालतू जानवरों को अकेला ना छोड़ें। यदि आपको हीट स्ट्रोक यानी लू के लक्षण जैसे तेज बुखार, बहुत ज़्यादा पसीना आना, चक्कर आना या जी मिचलाना महसूस हो, तो तुरंत किसी ठंडी जगह पर बैठें, ठंडा पानी पिएं और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। इसको आप हल्के में लेकर बिल्कुल भी ना चलें, इसको आप गंभीरता से लेकर चलें और डॉक्टर से सलाह तुरंत लें। यदि आप गर्मियों से जुड़े अपने क्षेत्र के सटीक मौसम का हाल या किसी स्वास्थ्य समस्या के लिए डॉक्टर की सलाह जानते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। फिलहाल हम बातें करते रहेंगे और अब कार्यक्रम का सफर आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं अगला कमेंट। जी हाँ, धीरज गुप्ता कस्बा उगेठी से, रवि कुमार राहुल कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से, निसार सलमानी धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से, आप सबने हमें कमेंट किया है, आप सबकी फरमाइश आई है। और रियासत हुसैन सिद्दीकी के फरमाइश आई है जसपुर उत्तराखंड से। जाकिर मंसूरी, आपने हमें फरमाइश की है बाजार रोड मुंगेसापुर से। फागुराम यादव संबलपुर कांकेर से, नरसिंह राजपूत महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, और विनोद वांडेलकर रायपुर छत्तीसगढ़ से, दिलशाद हुसैन आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, आप सब ने फरमाइश की है। और सुनना चाहा है जानवर फिल्म के इस गीत को, आवाज दी है अलका याग्निक, सुनिधि चौहान ने गीत को लिखा है, समीर ने और संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत।

0: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का। लेकिन घबराएं नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
1: जब भी बाहर निकलें, कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
0: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
1: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
0: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
1: याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपको इस तपती गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।
0: खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।
2: अपने वाहन को भीड़भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें।

श्रोताओं 101.9 MHz FM बैंड पर और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र और कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुमने कहा, जिसमें हम शामिल कर रहे हैं आपके फरमाइश किए हुए गीतों को। आपने कमेंट्स कर रखा है जिस गीत की, उसको हम सुनवा रहे हैं आपको। तो साथ में हम बातें कर रहे हैं गर्मी और लू से कैसे बचें। तो बिना एसी के कमरे को ठंडा रखने के लिए क्रॉस वेंटिलेशन का उपयोग जरूर करें। खिड़कियों पर गीले पर्दे लटकाएं और पंखे के सामने बर्फ का कटोरा रखें।

देखें, सूरज की सीधी धूप रोकने के लिए दिन में खिड़कियां बंद और रात में ठंडी हवा के लिए खोल दें। कमरे को नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने के लिए कुछ सबसे असरदार और आसान तरीके हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कि पंखे और बर्फ का इस्तेमाल करें। एक चौड़े बर्तन में बर्फ के टुकड़े या ठंडा पानी भरें, इसे टेबल फैन या सीलिंग फैन के ठीक नीचे आगे इस तरह रखें कि पंखे की हवा उस बर्फ से टकरा कर कमरे में फैले और इससे कमरा ठंडा रहेगा तो आपको भी ठंडक का एहसास होगा। फिलहाल हम आपके ठंडक बढ़ाते हैं इस गीत के साथ और शामिल करते हैं आप सभी की फरमाइश। तो अगली फरमाइश आई है रज्जाक खान की ढानकी रोड महाराष्ट्र से, अरविंद कुमार बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से और राहुल मनवर शाहूनगर यवतमाल से, राधे श्याम शर्मा गांव होडी खेड़ा जिला सिरसा से। और अगली फरमाइश जो हम पढ़ रहे हैं वो है नारायण लाल साहू का राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से और बी आई धाकड़ जी आपने हमें फरमाइश किया है जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, अरुण कुमार मालवीय वाराणसी से, बालकृष्ण गांव बालकृष्ण आपने हमें फरमाइश कर भेजा है गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से, संतोष भाकरे ने हमें कमेंट किया है जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। तो आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म प्रेम पुजारी, ये है फिल्म का नाम और गीत को लिखा है नीरज ने, संगीतबद्ध किया है एसडी बर्मन ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, और हम शामिल कर रहे हैं आपके फरमाइश, आपके कमेंट को, और सुनवा रहे हैं आपके पसंद किए हुए गीतों को। तो कार्यक्रम का सिलसिला बढ़ाते हैं और अब हम शामिल करने जा रहे हैं आप सभी के नाम। जी हाँ, अगली फरमाइश है राजेश वर्मा की, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से। सुदर्शन साह नेपा नगर मध्य प्रदेश से, हुकुम कर्माकर बेरड़ी मध्य प्रदेश से, लाल बाबू दीवाना जेल रोड दिल्ली से, राघव बघेल लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, बोधराज खोरवाल उत्तम नगर दिल्ली से, संतोष नामदेव बघेरा दुर्ग से, फाहिम मंसूरी बांदा उत्तर प्रदेश से, पटवा जी ग्राम धरदे छत्तीसगढ़ से, धर्मेंद्र छिपा भोपालगढ़ राजस्थान से। आप सभी ने पसंद किया है नीति मोहन, विशाल मिश्रा और शहनाज अख्तर की मिली जुली है आवाजें। फिल्म का नाम है गदर 2। गीत को लिखा है सईद कादरी ने और संगीत संवारा है मिथुन ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी के पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, अगली पसंद आई है बनवारी जयपाल के गांव अरायन जिला श्री गंगानगर से। उत्तम सिंह जंघेल, आपने हमें फरमाइश की है आर्यनगर कोहका भिलाई से। और ओम बगेरिया, आपकी फरमाइश आई है गांव बांडेवाला से। राजकुमार पटेल ने हमें कमेंट किया है। सुरेश जायसवाल ने जमानिया जिला गाजीपुर से हमें फरमाइश की है। रिजवान खान जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से फरमाइश कर भेजी है। वलीउल्लाह अंसारी ने हमें कमेंट किया है पुराना तालाब डुमराव से। मोहम्मद फारूक गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से हमें फरमाइश की है। इसके अलावा जीवन विश्वकर्मा चाईबासा झारखंड से हमें फरमाइश की है। टीडी मल्होत्रा मोहाली चंडीगढ़ से। विनोद मूड़त जिला उज्जैन बोरखेड़ा से हमें फरमाइश की है, इनका कमेंट आया है। और तुलसी मस्कीन का कमेंट आया है शाहदरा दिल्ली से। तुलसीदास छुक का कमेंट आया है पंचकूला चंडीगढ़ से। नरेंद्र सुधार का हमें जो कमेंट दिखाई दे रहा है वो है नोहर राजस्थान से। तो आप सबने सुनना चाहा है इस गीत को, एक बार फिर से लता मंगेशकर की है आवाज।

0: इसी गीत की फरमाइश की थी सुभाष गोदारा ने गांव हीरा वाली फाजिल का पंजाब से, रामचंद्र मखेजा धमतरी छत्तीसगढ़ से और सीताराम कांगड़ा एकता कॉलोनी रोहतक से, नवी हसन अब्बासी मारहरा दरवाजा एटा से। और अगली फरमाइश जो आई थी इस गीत के लिए विजय सिंह महोबिया रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से, शाहजी बोडखे हिंगोली महाराष्ट्र से, नंदकिशोर घटे बीड शहर महाराष्ट्र से और राजेश खोबर खेड़े शिवाजी नगर वडाली देशमुख से। तो आप सबने फरमाइश की थी इस गीत की, तो इसी के साथ कि आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए, छोटे बच्चों का बुजुर्गों का ख्याल जरूर रखिए, गर्मी के मौसम में खुद को बचाइए और अपनों को बचाइए। जैसा कि मैंने बताया, पानी पीते रहिए, ORS घोल पीते रहिए, कड़ी धूप में निकलने से बचिए, बहुत ज़रूरी हो तो सर पे गमछा बांध कर निकलिए। तो इन सब चीज़ों का बहुत बहुत बहुत ध्यान रखिए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करिए।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: श्रोताओं, फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा अब यहीं पर समाप्त होता है। अपने दोस्त प्रियंका पांडे को दीजिए इजाजत और अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में, कार्यक्रम गीतांजलि। गैर फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम हम लेकर हाजिर हो चुके हैं और इसमें सुनवाएंगे कुछ गैर फिल्मी गीत जैसे भजन, गजल और गीत। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़िया, अयोध्या, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com

ये गजल आप सुन रहे थे रूना लैला की आवाज में, और इसी के साथ ही कार्यक्रम गीतांजलि अब समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी

0: के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती

महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1 लाख प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 रूपए का एक स्मारक सिक्का और 5 रूपए का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12 लाख हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। राज्य के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित

0: राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। दोपहर के 2:23 हुए हैं। प्रस्तुत है बहनों का कार्यक्रम नारी जगत।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-61-877-347।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
2: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
4: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 बजे के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com

नारी जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को सीमा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, हम सभी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, है ना, और उनकी हर मांग को, हर वो चीज जो वो चाहते हैं, हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी होता क्या है कि सखियों, हमें बच्चों को अनुशासित करने के लिए या उन्हें कुछ समझाने के लिए, कुछ ज्ञान देने के लिए भी थोड़ा सा दंड देना पड़ता है। कहते हैं ना कि डर भी एक मोटिवेशन का काम करता है, यानी कि एक अभिप्रेरणा का काम करता है। क्योंकि बच्चा इतना समझदार तो नहीं होता है कि उसे पता हो कि क्या गलत है क्या सही है, यानी कि ये रास्ता सही है ये रास्ता गलत है। हम बच्चों से प्यार तो करें, पर उनकी गलतियों पर हम उसे बार बार समझाएं कि बेटा ये गलत है, ये नहीं करना है आपको, इससे आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो हमें थोड़ा सा कठोरता भी अपनाना चाहिए, यानी कि दुलार के साथ साथ थोड़ी सी कठोरता भी। दरअसल होता क्या है कि जब हम बच्चों को समझाते हैं बार बार, वो नहीं मानता है, तो हम उसे कोशिश तो करें कि दंड ना दें, लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है तो हम बच्चों को शारीरिक या भावनात्मक रूप से थोड़ी बहुत सजा दे सकते हैं। वैसे हम कोशिश करें कि बच्चा अच्छा काम करे तो हम उसे प्रोत्साहित भी करें, यानी कि प्यार रूपी थपकी भी दें कि बेटा बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड। लेकिन अगर वो गलत कर रहा है तो हम थप्पड़ मारने भी संकोच ना करें, यानी कि अगर हमारी थोड़ी सी उसकी थोड़ा सा दंड, थोड़ी सी हल्की सी एक थप्पड़ से उसका जीवन सुधर सकता है तो उसमें भी हम संकोच ना करें कि पता नहीं मारें कि ना मारें, ऐसा ना सोचें। जैसे कुम्हार होता है ना, वो जब बर्तन बनाता है तो जो मिट्टी होती है पहले उसे छानता है, फिर नरम बनाने के लिए उसे बार बार पटकता है, गूंथता है, ताकि वो जो बनाना चाहता है वो आसानी से बन पाए। अगर मिट्टी ये सोचे कि नहीं ये तो मुझे परेशान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन कुम्हार को पता है कि मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा है। यानी कहने का मतलब क्या है सखियों, कि थपकी हमारी जो है उसको प्रोत्साहित तो करे, हम उसके हर अच्छे काम पे, हाँ बेटा ये ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसे ही लगे रहो, ये सब जरूरी है, लेकिन थप्पड़ भी उसके संतुलित जीवन के लिए जरूरी है। जहां पर वो गलत है हम उसे जरूर डांटें, थोड़ा सा दंड जरूर दें। सखियों, आज का जो समाज है ना, वो बढ़े, देश प्रगति करे, इसके लिए एक महत्वपूर्ण जो एक पथ है, जो एक रास्ता है, वो है शिक्षा। अत्यधिक शिक्षित और कुशल कार्यबल का निर्माण करके ही हम सीधे तौर पर समाज और राष्ट्र की प्रगति में महान योगदान दे सकते हैं। यानी किसी राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, खुद को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, तो हमें शिक्षा रूपी हथियार इस्तेमाल करना ही होगा। लेकिन होता क्या है कभी कभी कि कुछ जो हमारे छात्र होते हैं आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं या धन के अभाव से वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो इसी सब के लिए हम आपके पास एक योजना की जानकारी लाए हैं, अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति। ये ऐसी छात्रवृत्ति है जो ऐसे बच्चे जो मेधावी हैं और पैसे ना होने के कारण वो अपने लक्ष्य से वंचित रह जाते हैं या वंचित रह रहे हैं, तो उसके लिए सखियों क्या होता है कि भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों, जिसमें कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और भी ज़रूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अगर हम बात करते हैं योग्यता क्या होनी चाहिए, तो भाई उसकी योग्यता होनी चाहिए कि पिछली जो परीक्षा है कम से कम 50% अंक होना जरूरी है। पारिवारिक जो उसकी वार्षिक आय है कम से कम 1,00,000 से कम होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आवश्यक जो उसकी चीजें हैं उसमें पिछली उत्तीर्ण परीक्षा की मार्कशीट तो हो, आय प्रमाण पत्र हो, माता पिता का या अभिभावक का जो भी है दोनों में से, अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र हो, बैंक खाता हो जो कि छात्र के नाम से ही हो और वो आधार से लिंक भी होना चाहिए।

0: और इसके साथ ही आधार कार्ड और वर्तमान शैक्षिक वर्ष की फीस रसीद। तो भाई ये तो बात हुई सारे कि कौन कौन से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब हम आपको बता दें कहाँ पर आप आवेदन करेंगे। तो भारत सरकार के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी NSP पर आप पंजीकृत करवाएं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अगर आपने प्रदेश में करवाना चाहते तो आप अपना उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल के वेबसाइट पर भी आप आवेदन करवा सकते हैं इसके। तो हम इस तरह से सखियों, अगर हम इसकी छात्रवृत्ति प्रदान करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो हम इस तरह से इसको इसके लाभ हम उठा सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक छोटे से विज्ञापन के बाद।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम तिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास।
7: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
6: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कई सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर।
7: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मन पसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
8: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
0: एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम नारी जगत में और मैं हूँ सीमा। देखिए सखियों, होता क्या, हम सभी ने एक शब्द सुना होगा वसीयत, है ना, या जैसे इंग्लिश में हम विल भी कहते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये क्या है, ये कैसे होता है या कैसे मिलता है, ये मृत्यु से पहले मिलता है या मृत्यु के बाद मिलता है। तो ये सारी जो हमारे दिमाग में सब बातें आती हैं और हम परेशान हो जाते हैं, पूछते हैं, सोचते हैं हम किससे पूछें, कैसे पता करें। तो इन्हीं सब पर हम आपके लिए एक जानकारी लाए हैं, वसीयत एक जानकारी। और वार्ताकार हैं श्वेता राज, एडवोकेट हैं ये, और भेंट करता है सुषमा गुप्ता। चलिए सुनते हैं ये ज्ञानवर्धक वार्ता।
9: हम बहनों को ये पता नहीं होता है कि हमारे पास जो संपत्ति है, चाहे वो चल हो या अचल हो, उस पर हमारा अधिकार होता है और इसकी वसीयत हम लिख सकते हैं, ये हमारा अधिकार भी है। तो बहनों, वसीयत को लेकर कई बार लड़ाई झगड़े भी होते हैं या अन्य जो है अपराध भी हो जाते हैं। तो इसके बारे में कैसे वसीयत लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है श्वेता राज जी, जो एडवोकेट हैं और आप वरिष्ठ अधिवक्ता हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में हैं। आप एक समाज सेवी भी हैं और एडवोकेट मीडिएटर भी हैं। श्वेता जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, आप जेल विजिटर भी हैं और वन स्टाफ सेंटर की लीगल एडवाइजर हैं, रिसोर्स पर्सन राष्ट्रीय महिला आयोग भी हैं। तो श्वेता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज आप हमारे बीच हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वसीयत क्या है।
10: देखिए, वसीयत इसको हम साधारण भाषा में विल कहते हैं
9: जी।
10: विल अर्थात हमारी इच्छा कि अपनी इच्छा अनुरूप हम अपनी संपत्ति किसको देना चाहते हैं, इसको लेकर के हम लिखित रूप से
9: जी।
10: या हम वर्बल या ओरल विल कर सकते हैं,
9: मौखिक रूप से।
10: मौखिक रूप से।
9: श्वेता जी, ये तो वसीयत की बात हुई, लेकिन क्या इस वसीयत के बारे में हम लिखने से पहले क्या किसी से चर्चा कर सकते हैं?
10: देखिए, ऐसा है कि वसीयत बेसिकली बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है
9: जी।
10: आप किसको वसीयत लिख रहे हैं, क्या वसीयत कर रहे हैं, इसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करी जाती है। हाँ, विधिक जानकारी यदि आपको चाहिए तो विधिक सलाहकारों से आप जरूर चर्चा कर सकती हैं। और विल का ये तरीका होता है कि जब भी आपको अपनी इच्छा के विषय में आप किसको अपनी संपत्ति देना चाहती हैं, इस चीज को लेकर के आप रजिस्टर करा सकती हैं विल। दो विटनेसेस के साथ विल रजिस्ट्रेशन के लिए

0: बहुत जरूरी है कि आप 18 वर्ष से ऊपर के हों, आप साउंड दिमाग के हों, अर्थात आप मानसिक रूप से बिल्कुल सही हों, और आपके पास अपनी संपत्ति हो, क्योंकि आप अपनी ही संपत्ति का विल कर सकते हैं, आप किसी और की संपत्ति पे विल नहीं कर सकते।
1: तो उसके लिए ये एक आय होना जरूरी है क्या?
0: आय की जरूरत नहीं है, स्त्री धन होता है, स्त्री के पास तो अपना स्त्री धन होता है, संपत्ति होती है जो मायके से मिली हुई होती है। देखिए यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि स्व अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति होती है। स्व अर्जित संपत्ति में आपके जो भी उत्तराधिकारी हैं, जितने भी आपके विधिक उत्तराधिकारी हैं या आपके नैसर्गिक जो अधिकारी हैं, उत्तराधिकारी हैं, आप उनको अपनी विल कर सकती हैं। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा है कि अगर आपने अपने, मान लीजिए आपके 4 उत्तराधिकारी हैं, आपने केवल 2 लोगों को अगर विल किया है तो उस विल पे क्वेश्चन उठ सकता है। तो हमारा माननीय न्यायालय ये बड़े ही उच्च विचार रखते हुए एक यूं कह लीजिए गुड फेथ में कि किसी उत्तराधिकारी का अधिकार ना मारा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सभी को बराबर रूप से आपको अपनी संपत्ति बांटनी चाहिए।
1: जी श्वेता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कभी कभी ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी माता पिता के 4 बच्चे हैं और मान लीजिए कि वो किसी एक को नहीं देना चाहता या 3 को ही देना चाहता है या कोई उसकी विवशता हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
0: देखिए ऐसा है, विल वो जिसको चाहे उसको लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी विल चैलेंज की जा सकती है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि विल एक्टिवेट होती है मृत्यु के उपरांत, आपके जीते जी उस विल का कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो मृत्यु के उपरांत जब वो सामने आती है तो जितने भी विधिक उत्तराधिकारी होते हैं उनका अधिकार होता है कि वो कोर्ट में चैलेंज कर सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आपके 4 उत्तराधिकारी हैं और आपने 3 को दिया है तो इससे संशय उत्पन्न होता है। ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे ने दबाव डाल करके विल अपने नाम करा लिया हो। हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ जिसे हम कहते हैं वो उस विधिक उत्तराधिकारी पे आएगा जो विल को चैलेंज करेगा, मतलब उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वो विल गलत तरीके से लिखी गई है,
1: उसका सबूत होना चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: ये बताइए श्वेता जी कि वसीयत क्यों जरूरी है?
0: देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारी संपत्ति गलत लोगों के हाथ में चली जाती है, तो हमारे जो विधिक उत्तराधिकारी हैं उनको उनका अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए हमको वसीयत जरूर करनी चाहिए। आपने आजकल देखा होगा कि माता पिता यहाँ रह रहे हैं और बच्चे विदेश चले गए हैं पढ़ने के लिए, तो उस केस में ये होता है कि जो भी आपके रिश्तेदार होते हैं वो आपकी संपत्ति पे कब्जा कर लेते हैं, माता पिता नहीं रह गए तो संपत्ति पे कब्जा हो जाता है। तो उस संपत्ति को किसी भी प्रकार के अनाधिकृत कब्जे से बचाने के लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर एक रजिस्टर्ड विल जरूर करें।
1: बहुत अच्छी बात बताई श्वेता जी आपने। अच्छा, इसकी कानूनी मान्यता क्या है? जैसे हम लोग नहीं जानते हैं, कोर्ट की भाषा में क्या होता है?
0: देखिए ऐसा है, इसकी पूरी पूरी कानूनी मान्यता है। अब आप यूं समझ लीजिए कि हमारे संस्कारों में भी ये निहित है कि किसी ने अपनी आखिरी इच्छा यदि जाहिर करी हो उसकी इच्छा की पूर्ति अवश्य करी जाती है। उसी तरीके से कोर्ट ने भी इसको मान्यता दी हुई है। हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1925 में विल बहुत कायदे से डिफाइंड है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति किसी को दे सकता है। लेकिन अभी रीसेंट के जो भी रूलिंग्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, ये जो भी आपकी संपत्ति है वो संपत्ति आप अपने उत्तराधिकारियों के अलावा घर के बाहर किसी को नहीं दे सकते।
1: क्या इसे कैंसिल कर सकते हैं?
0: इसको कभी भी कैंसिल किया जा सकता है, इसको रिवोक किया जाता है, किया जा सकता है, अपने जीते जी जितनी बार चाहे उतनी बार विल को बदला जा सकता है।
1: अच्छा, इसमें कोई रोक टोक नहीं है?
0: नहीं, कोई रोक टोक नहीं है।
1: अच्छा श्वेता जी, क्या इसको बदल भी सकते हैं?
0: जितनी बार चाहें उतनी बार बदल सकते हैं, जीते जी ये अधिकार है मेरा कि मैं जितनी बार चाहूं उतनी बार विल को बदल सकती हूं।
1: तो इसमें कोर्ट में जाने पर कोई दिक्कत नहीं होती है?
0: देखिए ऐसा है, अभी मैंने आपको बताया कि यदि किसी उत्तराधिकारी को गलत तरीके से बाहर किया गया है, उसकी संपत्ति से उससे उसका अधिकार छीना गया, तो उसको तो अधिकार है ही है कोर्ट में जाने का। फिर ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट उसे क्या किस तरीके से ट्रीट करे। यदि कोर्ट को लगता है कि गलत

0: विल लिखी गई है या गलत दबाव में प्रभाव में विल लिखी गई है तो वो विल निरस्त भी हो सकती है कोर्ट के उससे।
1: इसके लिए मतलब हम बदल सकते हैं, हम जा सकते हैं, इसमें कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
0: नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जीते जी विल कर रहे हैं और कोई भी विल प्रभावी मृत्यु उपरांत ही होती है, तो जीते जी आप जितनी बार चाहें उतनी बार बदल सकते हैं विल।
1: स्वता जी एक चीज और जानना चाहते हैं कि वसीयत परिवार के बाहर की जा सकती है क्या?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं की जा सकती है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूर्व में कई बार ऐसा हुआ था कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत प्रयोग करके लोगों ने संपत्ति घर से बाहर, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में ये हुआ है कि सीए ने अपने नाम कर ली है प्रॉपर्टी, तो उनके उत्तराधिकारियों ने लड़ाई करी है, विधिक लड़ाई में वे जीते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसी के बाद ये रूलिंग दी कि अपने परिवार के बाहर आप विल नहीं कर सकते हैं,
1: परिवार के अंदर ही आप कर सकते हैं
0: जी।
1: अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि क्या वसीयत के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, कभी भी कोर्ट में जा सकते हैं वसीयत के खिलाफ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वसीयत ऑपरेशनल है, वसीयत किसी की मृत्यु उपरांत ही उसमें आती है
1: जी,
0: ठीक है जी। तो किसी भी विधिक उत्तराधिकारी को ये लग रहा है उसके साथ अन्याय हुआ है तो वो कोर्ट जा सकता है, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर होगा कि वो विल गलत दबाव या प्रभाव में उनके जो भी परिवार के बड़े रहे हैं, माता पिता जो भी रहे हैं जिन्होंने विल करी है, उन्होंने दबाव या प्रभाव में लिखी हुई है।
1: चलते चलते श्वेता जी ये जानना चाहेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इसकी कोई रूलिंग है क्या?
0: सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी रूलिंग्स दी है। अभी मैंने आपको बताया कि अब आप अपने परिवार अपने उत्तराधिकारियों के बाहर कहीं भी विल नहीं कर सकते हैं, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट देखिए एक बहुत ही वृहद मानसिकता के साथ कोई भी चीज ट्रीट करता है, और सुप्रीम कोर्ट ये कतई नहीं चाहता है कि किसी भी विधिक उत्तराधिकारी से उसका अधिकार छिने, इसलिए बहुत अलग अलग तरीके की रूलिंग्स दी हुई हैं। कई ऐसी जगह है जहां पे माता पिता ने बच्चों से उनका अधिकार छीन लिया केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने उनकी मर्जी के बिना शादी कर ली। मान लीजिए कि बच्चों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो माता पिता ने उनको निकाल दिया, अपनी वसीयत से बाहर कर दिया, बेदखल कर दिया। और देखिए एक बहुत जरूरी चीज है जो मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो भी हमारी पैतृक संपत्ति होती है तो पैतृक संपत्ति में उसमें जितने भी लोग होते हैं वो को पार्सनर्स होते हैं प्रॉपर्टी में।
1: अच्छा,
0: ठीक है। तो आपके हिस्से में यदि एक तिहाई संपत्ति है तो आप अपनी एक तिहाई संपत्ति ही लिख सकते हैं, आप पूरी संपत्ति नहीं लिख सकते हैं अपने विल में। और यही नहीं, मुस्लिम्स में थोड़ा सा लॉ अलग है। मुस्लिम मान लीजिए कि 100% शेयर है किसी का, वो 1/3 से ज्यादा की विल कर ही नहीं सकते।
1: अच्छा, ये नियम में है?
0: जी ये नियम में है।
1: स्वता जी आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारी बहनों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सखियों, अभी हमने सुना ये भेंट वार्ता वसीयत एक जानकारी। वार्ताकार थी श्वेता राज और भेंट करता थी सुषमा गुप्ता। मुझे उम्मीद है कि जो हमारी सखियां इस भेंट वार्ता को उन्होंने सुना उससे उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई होगी। और कहते हैं ना सखियों कि पैसा जो होता है ना हर बुरी और अच्छी दोनों ही मार्गों को खोलता है। अब चलना किस पर है ये हम पे निर्भर करता है। मैं कहाँ तक सही हूँ ये बात बताएगा ये गीत। चलिए सुनते हैं। फिल्म है लावारिश, आवाज़ दी है किशोर कुमार ने, गीतों से सजाया है अनजान ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

सखियों, आज है मंगलवार और हम आपके लेकर आए हैं सौंदर्य टिप्स में एक एंटी एजिंग के लिए एक घरेलू उपाय, जिसमें हम लाए हैं आपके लिए पपीता और टमाटर का फेस पैक। सखियों, सुंदर होना किसे अच्छा लगे, यानी कि सभी को अच्छा लगता है कि हम बहुत सुंदर दिखें, पर बाजार में इतने महंगे महंगे आजकल क्रीम हैं और फेस पैक हैं जो कि बहुत ज़्यादा खरीद पाना सबके लिए मुमकिन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम आपको फटाफट बताते हैं कैसे बनाना है इसे। आपको टमाटर लेना है छोटा सा पका हुआ हो, और पपीता भी पका हुआ हो, उसका पपीते का आप छिलका निकाल दीजिए और उसमें अंदर से जो बीज है वो भी निकाल दीजिए। दोनों को मिश्रण करके आपस में मिला लीजिए और उसके बाद आप उसमें थोड़ा

0: सा बेसन इतना मिलाना है कि वो थोड़ा सा लगाने पर लग जाए हमारे फेस पर, और उसके बाद हर मतलब फेस पर गर्दन पर अच्छे तरीके से हम लगा लें, और थोड़ी देर बाद यानी कि 10 या 20 मिनट जब हम देखें कि हाँ वो सूख गया है, तो हल्के हल्के हाथ से हमें रगड़ना है और धीरे धीरे छोड़ा देना है। उसके बाद ठंडे पानी से हम धो लें। यकीन मानिए कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये हमारे जो हमारे फेस पे टेनिंग हो जाती है ना उसको हटाता है, डेड हमारी जो स्किन हो जाती है उसमें भी हटाने में ये मददगार होता है, और प्राकृतिक जो चमक है हमारे चेहरे की ना वो वापस लौट आता है, यानी कि बहुत अच्छा है। और दूसरा है हम आपके लिए थोड़ा सा अलग है, जो जो फेस पैक लाए हैं आपके लिए उसमें भी हमें पहले ही पहले की तरह पका हुआ पपीता लेना है, ठीक है, लगभग 4 चम्मच के आसपास ले लीजिए, गूदे निकाल लेंगे आप बीज और जब छिलका आप छील लेंगे, और उसी में हम टमाटर का गूदा मिला लेंगे, और उसमें हमें मुल्तानी मिट्टी, पिसी हुई मुल्तानी मिट्टी डालना है, और थोड़ा सा हम बेसन डालें, अनुपात इतना रहे कि मतलब वो लगाने पर सूख जाए, मतलब हम चेहरे पर लगाएं तो वैसे गीला गीला सा ना रहे, और 15 से 20 मिनट तक लगाकर हम उसे छोड़ दें ताकि वो सूख जाए, और फिर हमें हल्के हल्के हाथों से रगड़ लेना है, और उसके बाद फिर हम ठंडे पानी से या सादे पानी से धो लें। यकीन मानिए सखियों, हमारे जो चेहरे पर काले धब्बे हैं ना, अगर वो निशान है तो उसमें हम थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, मतलब एक चुटकी मात्र, और उससे बहुत अच्छा हमें लाभ मिलेगा। भाई ये तो हुई बातें, अब हमारा कार्यक्रम हमारी अंतिम छोर पर है, और चलते चलते हम अपने सखियों से यही कहेंगे कि भाई आप अपना ध्यान और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और यूं ही सुनते रहिए आप नारी जगत कार्यक्रम, और सीमा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम नारी जगत एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है आप सबको विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने लिखते हैं
1: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी
1: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम
1: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं
1: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है

0: है
1: जी।
0: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
1: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गई। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
0: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
1: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
0: जी।
1: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानू यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
0: जी। हाँ श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
1: जी जी जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
1: जी जी जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
0: जैसे
1: कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
0: जी सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
1: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
0: तो क्या क्या नियम है इसके?
1: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह
0: यानी
1: हारमोनी या सामंजस्य।
0: और दूसरा शब्द क्या है?
1: दूसरा शब्द है केई
0: जी,
1: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
0: और श्रोताओं, तीसरा शब्द है से यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
1: श्रोताओं, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
0: जी हाँ, तो श्रोताओं, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है
1: जी। एक और खास बात ये है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा
0: जी। और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
1: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
0: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है
1: जी।
0: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
1: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
0: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है
1: जी। तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
0: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है
1: जी। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं
0: जी। तो चलिए अब रुख करते हैं

0: आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
1: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: लो आ गई बड़ी हवेली, निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी न मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ। हाँ।
3: बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी? अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
1: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ
2: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
1: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
2: लो।
1: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।

0: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
1: कहाँ बड़ी बहुरिया?
0: मेरी माँ के पास।
1: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
0: माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
1: बड़ी बहू,

0: हर गोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है अब, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी, आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया।

0: आप फिक्र मत करिए, ये नोट रखिए, हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
1: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
0: अच्छा, चलता हूँ।
1: अच्छा,
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचा है उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब।
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा। घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।

0: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा? बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। हा? बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका, जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए।

0: कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी।
0: हाँ सो तो है, चलो अच्छा है। बबुआ अब थोड़ा जलपान कर लो।
1: अच्छा अच्छा माँ जी।
0: अरे हर गोबिन, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
2: हर गोबिन ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हर गोबिन के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया? वो किस लिए आया था? वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हर गोबिन को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसक रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
3: माँ जी अब आज्ञा दीजिए।
0: अरे
3: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी अब पैर लागू।
0: जीते रहो बेटा,
3: अब चलता हूँ।
4: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
3: अरे भैया जी आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
4: अच्छा
3: अच्छा राम राम
4: राम राम
3: राम राम।

0: हरगोविंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक कही है, जलालगढ़ है 20 कोस दूर। हाँ? अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा।
1: और मैं हूं आरती श्रीवास्तव।
0: और हम बात कर रहे थे पानी की बचत के बारे में। तो बहुत अच्छे अच्छे संदेश हमें मिल रहे हैं श्रोताओं से। एक श्रोता ने लिखा है कि सभी इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ जल की उपलब्धता से बीमारियों को भी रोका जा सकता है। पानी की कम खपत से प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों, झीलों पर दबाव घटता है, जिससे जलीय जीवों और जैव विविधता का संरक्षण होता है। जनसंख्या और पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। समझदारी से पानी का इस्तेमाल करने से पीढ़ियों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम जब नहाते हैं तो ढेर सारा वो शॉवर चला के नहाने की आदत होती ना, तो बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। अब तो उससे बाल्टी से नहाइए, मग्गे से नहाइए, वो ज्यादा अच्छा है। बल्कि जो इस तरीके से पानी की जो वेस्टेज है, जो बर्बादी है, वो भी रुकेगी। और साथ ही छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, जो वर्षा का जो जल होता है उसको भी आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिस तरह से वो बना के बताया गया, जिसे हमारे श्रोताओं ने भी बताया। इस तरीके से आप पानी की बचत जरूर करिए।
0: और जैसे कहते हैं ना कि जो चीज हमें फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, कई बार उसकी कदर नहीं होती। जिस तरह से हवा हमें मिल रही है, जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमें जहां से मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। इसी तरह से जब वर्षा का जल हमें कोई बिना कीमत चुकाए वो वर्षा जल हमें मिलता है, हम उसका संचय करते नहीं और बाद में वही पानी हमें खरीद कर लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया भर में जहां जल संकट अति का बहुत ही ज्यादा है। वहां चाय की कीमत से ज्यादा पानी की कीमत होती है, ऐसा हमारे श्रोता भी लिखकर बता रहे हैं कि चाय या अन्य चीजें वहां सस्ती मिल सकती हैं, लेकिन पानी वहां पर बहुत ज्यादा कीमत देकर खरीद कर वो लोग लेते हैं।
1: और जब से मैं बताऊं कि मैंने तो ये चीज खबर सुनी तो सच में अजीब सा ही लगा। अब जब भी पानी का इस्तेमाल करते तो खुद ही एकदम से सचेत हो जाती है। बस सोच के कि सोचो उस समय उन लोगों को सिर्फ एक दो बूंद पानी मिल जाती तो उनकी जान बच जाती, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, पानी का क्या महत्व है। जब तक हमारे पास बहुत पानी आ रहा है, हम पानी पी रहे हैं, फेंक रहे हैं, और जब जिस समय कहते हैं ना कि अब पानी कटौती होने वाली है या पानी दो दिन नहीं आने वाला, तब लगता है और अब कैसे होगा, अब कैसे काम चलेगा। तो हमें सोचना चाहिए इसी तरह से समय से आप काम करना चाहिए कि अब पानी नहीं आए तो हम क्या करेंगे।
0: एक दिन की कटौती में अगर हम इतना परेशान हो जाते हैं, अगर ये कटौती पानी को बहुत जल्द से अगर घट गया तो बहुत ज्यादा अगर होने लगी तो कितना हम परेशान होंगे। उस परेशानी से बचने के लिए महत्व इसका हम बता रहे हैं। और अब सुन लेते हैं गीत।

0: पे क्या हुआ, जब एक किसान ने आम तो बेचे ही, आम बेचकर पैसे कमाए, लेकिन जो गुठलियां बच गई वो एक नर्सरी को बेच दी ताकि नए पेड़ आम के लगाए जा सके। तो यानी कि जो मूल चीज है उसे तो आपने मुनाफा कमाया ही, लेकिन जो बची हुई चीज है उसे भी आपको मुनाफा मिला, दोहरा फायदा, दोहरा लाभ, डबल मुनाफा। इसीलिए कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम।
1: गुठलियों के दाम भी उसने ले लिए और खाली उसी ने ले लिए, पेड़ लगाने से सबको फायदा हुआ, तो बहुत अच्छी चीज है ये।
0: तो ये तो समझ कहा, बहुत सारे इसी तरह से हम काम करते हैं कि दोहरा फायदा हमें मिलता है। तो हमारे श्रोताओं के साथ क्या अनुभव रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोता हैं जो कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम ये बहुत ही लोकप्रिय मुहावरा है, जिसका मतलब एक ही काम या किए गए प्रयास का दोहरा लाभ प्राप्त होना है। जैसे कि मैं ठहरा बुजुर्ग व्यक्ति, मेरे लिए सखी सहेली सुनना और कमेंट लिखना समय जो प्रसार करने के साथ साथ मनोरंजन और उपयोगी जानकारी प्राप्त करना होता है। मतलब आम के आम और सखी सहेली के नाम।
0: हमारे श्रोता लिखते कि आम दिन दिन हम रोज ही खा रहे हैं और गुठलियों को सहेज कर रख दिया जाता है ताकि जब बारिश आएगी तो इन्हें उगा देंगे। तो हो गया ना आम के आम और गुठलियों के दाम, एक पंथ दो काज की तरह ही होती है ये कहावत।
1: जी बिल्कुल सही कहा। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इसमें इसे अंग्रेजी में टू बर्ड्स विद वन स्टोन भी कहा जाता है, यानी कि एक तीर से दो निशाने। मतलब एक ही मुहावरा है, उस मुहावरे को बहुत कई तरीकों से कहा जाता है।
0: दो काज, आम के आम, गुठली के दाम और एक तीर से दो निशाने, लगभग एक जैसा ही अर्थ है इन बातों।
1: बिल्कुल, और व्यवहारिक जीवन में इसका इसको कहा जाता है कि यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पुरानी किताबें अच्छी कीमत पर बेच देता है तो उसे दोहरा लाभ होता है। और व्यापार की बात करें तो जब कोई किसान आम बेचने के साथ साथ उसकी गुठलियों या छिलकों का उपयोग करके अचार, तेल या अन्य उत्पाद बनाने के लिए करता है, तो आम के आम और गुठलियों के दाम तो सच में एकदम सही बैठा कि उन्होंने आम खाया और गुठलियों से उसके छिलकों से अचार भी बना लिया।
0: और आगे एक श्रोता का संदेश है कि ये मुहावरा हमें संसाधनों का सही उपयोग करने और अवसरों का पूरा लाभ उठाने की सीख देता है। दैनिक जीवन में जब किसी व्यक्ति को एक प्रयास से कई फायदे मिलते हैं तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि मुहावरा आज भी उतना ही प्रासंगिक है और लोकप्रिय भी है।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाषा की सुंदरता वृद्धि में मुहावरों और कहावतों का महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। आम के आम, गुठलियों के दाम का अर्थ ही है उपभोक्ता के पूरे पैसे वसूल। वार्तालाप या कहानी लेख में विषय संग वस्तु का कोई संबंध नहीं रहते हुए भी वस्तु अपनी उपयोगिता, गुण और महत्वपूर्णता की उपस्थिति दर्ज करा ही देती है।
0: और हमारे श्रोता तैयार हो जाएं भी अपने बहाने बनाने के लिए जिन्हें वो अक्सर काम में लेते हैं, लेकिन तब तक एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, अक्सर हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए बहाने का इस्तेमाल करते हैं. और कुछ बहाने मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सभी के द्वारा, कि बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ या 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, या अगर फोन नहीं उठाया तो क्या बोलते हैं, भाई मेरा तो फोन ही साइलेंट पे था इसलिए कॉल नहीं देखा, या कहेंगे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी. कहीं अगर समय पे ना पहुंचे तो कहेंगे भाई ट्रैफिक बहुत मिल गया. और अगर समय पे ना पहुंचे या फोन भी नहीं देखा तो अगर मैसेज करने की बात हुई मैसेज करना भी भूल गए, अचानक से बहुत जरूरी काम आ गया, फोन की बैटरी खत्म हो गई, इस तरह के ब्ला ब्ला बहुत सारे बहाने हैं जो बहुत सारे लोग बनाते हैं. तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है बहाने के बारे में, अब ये बात है पढ़ने वाली.
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बहाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, सभी को उल्लू बनाना ये भी आसान काम नहीं है. अगर बहाने में वफाएं हो तो तूफा भी किनारा है, वरना साहब के गुस्से से गिरती बिजली का नजारा ही नजारा है.
0: क्या बात है,
1: सामने वाला आसानी से विश्वास कर सके, ऐसा बहाना बनाओ कि हम राहत की सांस ले सके. ज्यादातर लोग तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना बनाकर आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ऐसे बहाने का उपयोग कब और कहां करना है ये सोचना चाहिए, नहीं तो आपके योग वियोग में बदल सकते हैं. क्योंकि कई बार लोगों को लगने लगता है कि नहीं ये तो बहाना बनाया जा रहा है तबीयत खराब होने का, जो बच्चे अक्सर बनाते हैं स्कूल से छुट्टी लेने के लिए.
0: और बहाना जो अक्सर काम करता है, सबसे पहले तो बहाना विद्यालय में बच्चे होमवर्क नहीं करें और कहेंगे कि मैडम कर तो लिया लेकिन कॉपी घर पे रह गई, अब क्या कहें. और शिक्षक बहाना एक्सक्यूज, किसी काम करने के लिए बचने के लिए, अपनी गलतियां छिपाने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए ये एक कारण होता है, यानी कि अलग अलग तरह का बचाव है.
1: बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण मिलने लगे तो समझ लीजिए बहाना है.
0: बिल्कुल, बहानों का इस्तेमाल लोग स्थिति से बचने के लिए, टाल मटोल करने के लिए या असफलता को सही ठहराने के लिए करते हैं, जैसे लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत था, तबीयत खराब हो गई, बैटरी खत्म हो गई, कोई जरूरी काम आ गया वगैरह वगैरह.
1: बिल्कुल, एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहाने जो अक्सर काम आते हैं, इस विषय पर एक बहाना ऐसा है जो हम सभी ने कभी न कभी बहुत लोग अक्सर करते ही हैं, और वो भी सटीक लग भी जाता है, और वो है फोन कॉल से संबंधित. अगर किसी अनचाहे का कॉल अटेंड नहीं करना हो तो सीधा सीधा बहाना होता है, अरे फोन तो चार्जिंग पर लगा था या साइलेंट मोड में चला गया था. लेकिन

0: चाय इससे बिल्कुल हटकर है। कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं बल्कि सच से चल सकता है। ये तो आप सही कह रहे हैं कि अगर हम जबरदस्ती में बार बार बहाना करेंगे तो सामने वाले को भी एहसास हो जाएगा कि ये बहाना ही है।
1: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब भी स्कूल जाने का मन नहीं होता तो सबसे बड़ा अच्छा बहाना होता था कि पेट दुख रहा है, और अक्सर बच्चे ये बहाना करते हैं। और आगे श्रोता लिखते हैं कि बहाना जो अक्सर काम आता है, तो ये कहूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दफ्तर ना जाना हो तब भी हम यही बहाना बनाते हैं, घुटनों में दर्द है, कहीं जाना आना संभव ही नहीं है।
0: बिल्कुल अक्सर होता है ऐसा। और एक कोई श्रोता है जो कहते हैं कि बहानों में हमारी श्रीमती जी का, हमारे जो श्रीमती जी है वो एक नंबर है, कुछ काम कहो तो बहाना बनाती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि, और वो स्वयं काम कर लेता हूँ, और फिर वो कहती है मैडम अरे वाह तनिक थोड़ा धैर्य रखते तो हम कर ही देते, लेकिन इसमें हल्की फुल्की बहाने नोक झोंक प्यार और स्नेह है तो दोनों खुश हो जाते हैं, और फिर वो हमारी तारीफ भी करती है, आप काम कर देंगे तो तारीफ तो आपकी होगी। वैसे अच्छी चीज है ये, इस तरीके का बहाना, और आप उनकी बात मान के थोड़ा बहुत काम करने का हाथ बटा देते।
1: हमारे श्रोता ने लिखा कि बचपन में स्कूल जाने के नाम पेट दर्द का बहाना बनाया करते थे, पर मैंने एक बहाना अभी भी मारा है। मुझे सोशल मीडिया पर कुछ अटेंड करना था, स्कूल में ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैंने ऐसे ही बहाना मार दिया कि मेरा पेट खराब है, लेकिन मैं पकड़ी गई और मुझे स्कूल जाना ही पड़ा। और उस समय सोशल मीडिया पर प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए, वो प्रोग्राम सोशल मीडिया पर भी आ रहा था और वीडियो पर भी था, लेकिन मैंने ना दे दिया, और इसलिए सोशल मीडिया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने क्या किया था।
0: हाँ, लेकिन अब सबको पता चल गया कि वो आपने बहाना बनाया था।
1: जी,
0: एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के अपने अपने बहाने होते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार लोग वही बहाना चुन लेते हैं जो उस वक्त उनको सही लगता है। और मेरे साथ भी एक मजेदार घटना हुई। मेरा एक दोस्त का जन्मदिन था, मुझे उसे विश करना था। सुबह तक तो मुझे उसका जन्मदिन याद था, लेकिन दिन भर की व्यस्तता में मैं उसे विश करना भूल गई। शाम को जब उसका फोन आया तो वो मुझसे थोड़ी नाराज थी, तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा अरे यार मुझे याद था, बस दिमाग से निकल गया। सच कहूं तो अरे हां मैं तो भूल ही गई थी, या मुझे याद था बस दिमाग से निकल गया, ऐसे बहाने जो हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल करते हैं। मैं करती हूँ अक्सर, हालांकि कई बार ये सिर्फ बहाना नहीं बल्कि सच भी होता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच कुछ बातें सचमुच दिमाग से निकल जाती हैं।
1: तो चलो अभी गीत सुन लें।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती तुमने कभी कोई बहाना बनाया है? बताओ मुझे।
1: बनाए तो बहुत सारे बहाने, मैं अक्सर बना लेती हूँ बहाने, लेकिन अभी मैंने बनाया था कि यही वाला कि मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था इसलिए मैं उठा नहीं पाई।
0: ये जो है ना, फोन साइलेंट पे था, बैटरी खत्म हो गई थी, चार्जिंग पे लगा था। आजकल क्योंकि जब कहते हैं फोन करना भूल गए, तो ये बहाना तो हर कोई बनाता है, या हम कहेंगे कि भाई घर पे कोई आ गया था,
1: बिल्कुल
0: ये भी बहाना बहुत होता है। तो अब बहानों की बात चली है तो बताएं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। कहते हैं कि बहाने यानी दो तरह के होते हैं। इससे हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे, किसी से अगर हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे पास 100 बहाने आ जाते हैं, और किसी से मिलना चाहते हैं तो बहुत बहाने हम निकाल ही लेते हैं। बस बहाने की ही बात है, मिलना ना हो तो हम बहाने बनाकर मिलने भी जाते हैं, ना मिलना हो तो बहाना बनाकर टाल देते हैं, और यही बता रहे हैं।
1: बिल्कुल। और एक हमारी श्रोता है जो लिखती है कि अभी कल की ही बात है, मैं अपनी बहन के घर आई हूँ, वो लोग कहीं घूमने गए, उनकी देवर की लड़की इतवार को मेरे साथ मेरे ही घर पर लंच करना चाह रही थी अपनी माँ के साथ। इतनी गर्मी हो रही है, मैंने बचने के लिए कहा कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ। इस तरह से मैं कहीं गई भी नहीं और घर में इतनी गर्मी में किचन में काम करने से बच गई। ये बहाना मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा, लेकिन अब उनको पता चल गया होगा, उन्होंने सुना होगा प्रोग्राम।
0: अगर वो रेडियो सुनते हैं, उन्हें रेडियो पर बात पता लग गई होगी
1: कि आपने बहाना बनाया था खाना बनाने से बचने के लिए। तो
0: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब बहुत छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे, तो एक तो बच्चों का कॉन्वेंट स्कूल और बहुत खर्च भी वहां पर था, और कई बार बजट डिस्टर्ब ना हो जाए तो कई बार बहाने बनाने पड़ते थे। जैसे एक बार बच्चों ने महंगी साइकिल लाकर देने को कहा, तो मुझे बहाना बनाना पड़ा कि मेरे मित्र ने अपने बेटे के लिए जो साइकिल खरीदी थी वो 15 दिन में ही टूट गई और वो यहाँ बन भी नहीं पाती है, इसीलिए फैक्ट्री में जाकर चीज लानी पड़ती है, तो बहुत पैसे लग जाते हैं। और इसी तरह बहाना बनाकर बच्चों ने जब साइकिल मांगने की जो जिद थी वो छोड़ दी।
1: बहुत बढ़िया बात है। और हम इस समय एक थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम पर भी हमारे जो एक सखी उन्होंने लिखकर भेजा है। कहती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उसमें चूसने वाले आम बहुत आते थे, उसमें जब हम आम खा चुकते थे तो गुठली को मेरी दादी एक टीन के डिब्बे में इकट्ठा कर लेती थी। बाहर छत पर रखा डिब्बा बहुत दिन तक रखा रहता था और गुठली इकट्ठा होती रहती थी, और फिर बरसात में भी भीगती थी। जब बहुत सी गुठली इकट्ठा हो जाती थी तो उसी डिब्बे में उबाल कर ठंडा होने पर गुठली को तोड़कर उसके बीज को नमक लगाकर खाते थे। यही हमारा मुहावरा बन गया कि मतलब आम तो खाए गुठलियां भी खाएं।
0: अचार में भी कई बार गुठलियों का प्रयोग किया जाता है, और गुठलियों में बड़ा अच्छा तो स्वाद होता है, लेकिन बहुत मीठा स्वाद होता है। हमारे पुराने फिल्मी गीतों में भी तो सुन लेंगे गाना।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: दिल तो हमारा भी नहीं भरा अपनी सखियों से बातचीत करते करते, लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि हमें जाना होगा, इसलिए ये था इस कार्यक्रम का आज का आखिरी गीत। लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्मी दुनिया के चमकीले सितारों से। आज एक ऐसी सितारा आ रही है जिन्होंने एक दिन नीले आसमान की तरफ देखकर ये कहा था,

0: जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं और उनकी मौजूदगी से रोशन है हमारी दुनिया। आइए वहीदा रहमान से करते हैं ढेर सारी बातें अपने साथी कमल शर्मा के साथ।
1: प्रिय श्रोताओ, आज हमारे स्टूडियो में उतर आया है चौदहवीं का चांद। इन्हें इंडियन स्क्रीन की क्लासिक ब्यूटी कहा जाता है और इन्हें जाना जाता है अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान हैं वहीदा रहमान जी। वहीदा जी, मैं अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। नमस्कार।
2: नमस्कार, शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर के आपको?
2: मेरे ख्याल से पहली बार आई हूँ मैं स्टूडियो में और अच्छा लग रहा है। अच्छा है
1: क्योंकि इस समय करोड़ों लोग आपकी बातचीत सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, और जिन्होंने आपकी फिल्में देखी उन्हें बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी, बहुत सारे सीन याद आए होंगे, कभी आपने उनको रुलाया होगा, कभी हंसाया होगा। मैं इससे पहले कि फिल्मों की जो आपकी यात्रा शुरू हुई, हम जानना चाहेंगे आपके बिल्कुल बचपन में जाना चाहेंगे, और आपसे ये जानना चाहते हैं कहाँ आपकी पैदाइश हुई।
2: मेरी पैदाइश हुई चेन्नई के पास, एक जगह, छोटी सी जगह है, इसका नाम है चेंगलपेट।
1: अच्छा।
2: तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब कमिश्नर थे, तो वहाँ पैदा हुई। मेरे ख्याल से कुछ घंटे डेढ़ घंटे का सफर है चेन्नई से वहाँ, मतलब मैं तमिलियन हूँ समझिए।
1: अच्छा, अच्छा। हाँ। लेकिन आपने शुरुआत की तेलुगु फिल्म से?
2: हाँ, वो क्या हुआ, मेरे वालिद साहब का ट्रांसफर हुआ करता था हर तीन साल, यू नो, पोस्टिंग होती थी जो आईएएस ऑफिसर्स की होती थी। तो हम विजयवाड़ा में थे, आंध्र प्रदेश में, तो मैंने कई बार डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे दिए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 11-12 साल की। तो साउथ इंडियन मूवीज जो थी वहां से मुझे ऑफर्स आ रहे थे। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा, ये उम्र बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई भी नहीं खत्म हुई, तो अभी वैसे एज ए प्रोफेशन शुरू करने का इरादा भी नहीं था। मगर उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मैं 13 साल की थी। फिर भी मेरी मुझसे तीन बड़ी बहनें हैं, उन सब की शादी हो चुकी थी, तो मैं रह गई थी, मेरी बारी थी शादी होने की। तो फिर इत्तफाक की, किस्मत की बात है मैं कहूँगी, फिर से ऑफर आने लगे साउथ से, मतलब मद्रास में। उस वक्त सारी इंडस्ट्री मद्रास में थी, वहाँ तेलुगु या तमिल दोनों फिल्में बनती थी। तो फिर जब एक ऑफर आया तो मेरी वालदा कहने लगी, नहीं अभी मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं नहीं इजाजत दे सकती। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, एक्साइट हो गई। तो वो जो प्रोड्यूसर थे वो किसी जगह के आंध्र प्रदेश के छोटे से जमींदार थे, वो प्रोडक्शन में जा रहे थे। तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि नहीं, मैं रहमान साहब को जानता हूँ, मिल चुका हूँ, तो अभी वक्त बदल रहा है, इसको भी एक बाकायदा प्रोफेशन समझा जाता है, और सिर्फ एक डांस ही तो करना है, स्टेज पे करती थी, एक फिल्में कर ले तो क्या हर्ज है। तो मैं तो बहुत, मेरे पीछे पड़ गई मम्मी के कि प्लीज इजाजत दे दीजिए, करने दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, अभी तक कोई लड़का मिला नहीं, चलो कर लेने दो। और फिर किस्मत की बात थी कि वो पहली फिल्म में जो एक सिर्फ मैंने फोक डांस किया था वो बहुत कामयाब हुआ, बहुत ही ज्यादा कामयाब हुआ, जो किसी को उम्मीद नहीं थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर वहां से सिलसिला शुरू हो गया।
1: कुछ बोल याद है उस डांस के, जो बोल थे गीत के, कुछ याद है आपको?
2: पूरे तो याद नहीं है। हीरुआ का सागरो रन्नो चिन्नन्ना आगे।
1: क्या बात है, तो बहुत सुरीली भी है। अच्छा, वो फिल्म कौन सी थी?
2: उसका नाम था रोजुलू माराई, मतलब था कि डेज आर चेंज, विच लिटरली चेंज माई लाइफ एंड डेज। तो

0: खत्म हो जाता है तो लोग पैसे फेंकते हैं स्क्रीन की तरफ. तो मैंने सोचा मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, फिल्मों में मैंने तो कभी नहीं देखा लोग पैसे फेंकते हैं, और जब मेन आर्टिस्ट नहीं हो. तो फिर मैं और मेरी वालदा और मेरी बहन सब मिलके देखने गए थे थिएटर में. हाँ, तो वाकई लोग पैसे फेंक रहे थे और कहते थे इसको दोबारा दिखाया जाए. तो मेरी नहीं समझ में आया दोबारा फिल्म एक चल रही है कैसे हो सकता है. तो फिर हमको वो एग्जिबिटर थे उन्होंने कहा पॉसिबल है क्योंकि वो रील निकालते हैं फिर दोबारा चलाते हैं. तो कई शहरों में वो निकाल के फिर एंड के एंड से पहले मतलब वो गाने को दोबारा प्ले करते थे. तो वो इतना ज्यादा कामयाब हुआ था वो गाना.
1: क्या कहने.
0: और फिर इसके लिए मैं अपनी डेस्टिनी पे बहुत मानती हूँ. और ये इसके सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में. तो हम हैदराबाद गए तो वहाँ इत्तेफाक से गुरुदत्त जी क्यों गए थे वो खुदा ही बेहतर जाने, वहाँ थे वो. तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में बैठे हुए थे तो काफी शोर शराबा, दो तीन मोटरें जा रही थी, लोग भाग रहे थे. तो उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है बाहर. तो उन्होंने कहा एक बहुत कामयाब तेलुगु फिल्म बनी तो उसके आर्टिस्ट हैं तो लोग. अच्छा अच्छा. तो फिर वो उन्होंने गुरुदत्त जी से कहा कि उसमें एक नई लड़की ने काम एक डांस किया है वो बहुत कामयाब हुआ और उस लड़की का नाम है वहीदा रहमान. तो उन्होंने सुना के बोले वहीदा रहमान तो मुसलमान मुस्लिम लड़की होगी. बोले नहीं है भी मुस्लिम तो उर्दू बोल सकती है. तो उन्होंने कहा जरूर बोल सकती है क्योंकि क्या है डाउन साउथ इंटीरियर गांवों में वो अब तेलुगु बोलते हैं. आंध्र प्रदेश में तमिल वाले तमिल बोलते हैं हालांकि है मुसलमान. केरला उस तरह मलयालम बोलते हैं. तो उन्होंने कहा नहीं ये बोलती हैं. तो बोले आपको कैसे पता. तो उन्होंने कहा कल फंक्शन था तो स्टेज पे गए थे वो स्टेज पे आर्टिस्ट आए थे तो मैं भी उसमें था तो ये लड़की आई स्टेज पर उर्दू में बोल रही थी. बोले अच्छा तो क्योंकि आजकल मुझे नए चेहरों की तलाश है तो ये क्या मुनासिब है कि मैं उससे मिल सकूं. तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ. तो उन्होंने अपने हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके जरिए एक मीटिंग अरेंज की. तो वहां मुलाकात हुई तो कुछ ज्यादा बात नहीं हुई. थोड़ी देर 10-15 मिनट मैं और मेरी वालिदा थे फिर चुप. कुछ खास कहा नहीं उन्होंने. ये नहीं कहा कि आप बॉम्बे आइए. खैर हम वापस मद्रास पहुंचे तो इस चीज को भूल गए हम. 6 महीने बाद फिर उन्होंने किसी को भेजा मद्रास. तो उन्होंने कहा हम मिले थे हैदराबाद में उनको कहिए बॉम्बे आने के लिए तो उनका टेस्ट फिर से लेंगे हम फिर हम साइन करना चाहते हैं उस तरह से यू नो.
1: तो उसके बाद में आपको सीआईडी मिली.
0: सीआईडी पहली मेरी हिंदी फिल्म थी और दूसरी प्यासा.
1: तो सीआईडी और प्यासे की बातें करें उसके पहले हम वेदा जी चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ हमारे श्रोताओं को सुनवाएं.
0: मुझे प्यासा का वो गाना बहुत पसंद है जिससे मेरा काम लोगों को भी बहुत पसंद आया. जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी.

0: बहुत ही खूबसूरत गाना है और खासतौर से सचिन दा का जो म्यूजिक है उसका जवाब ही नहीं है. आपको याद है जब आपने गुरदुत साहब के डायरेक्शन में पहली बार वो कैमरा फेस किया था, हिंदी की अगर हम बात करें कौन सा दृश्य था, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, पहले तो सीडी बनी थी, उसके डायरेक्टर थे राज खोसला.
0: हाँ जी.
1: तो एक महीने दो महीने तो सिर्फ सीडी की शूटिंग हो रही थी, उसके बाद उन्होंने साइमल्टेनियसली दो तीन महीने के बाद प्यासा की भी शूटिंग शुरू हुई थी. और दोनों डायरेक्टरों में मैंने फर्क बहुत पाया, क्योंकि राज खोसला जो थे वो अच्छे डायरेक्टर थे फिल्मों में के लिए, मगर नए आर्टिस्ट को हैंडल करना उनको इतना नहीं अच्छा आता था. हालांकि गुरदत्त जी तो वो आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है. तो उससे फिर लगता था हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है. और राज खोसला थे कि ये ऐसे करना है, कर दिया. अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आए, और चूंकि मैं नई नई थी और बहुत शाई थी तो पूछती नहीं थी. यहाँ गुरुदेव जी पूछते थे आपका कुछ प्रॉब्लम है लगता है, क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है. तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे.
0: गुरुदत्त साहब
1: हाँ
0: को कैसा डायरेक्टर मानती थी?
1: डायरेक्टर तो वो बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे, तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या का किस हद तक क्या क्या कर सकता है. उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ.
0: उनके डायरेक्शन में कौन सा सीन आपको सबसे बेहतरीन लगता है, यादगार लगता है अपना, कौन सा सीन?
1: कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के. ये जैसे दिल की आवाज है. और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉर्ट्स होंगे उस

0: जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा.
1: आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लाने थे.
0: हाँ, एक्सप्रेशन लाने थे. और उसमें तो मैं कहूंगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए, और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज एनहांस हुई थी मैंने, और बढ़िया दिखती थी.
1: आपने जिस गाने का जिक्र किया कागज के फूल का, ये गाना भी बड़ा हॉन्टिंग
0: है
1: और इसकी मेलोडी जो है आज तक बहुत दिल को छू लेने वाली.
0: बिल्कुल,
1: क्यों नहीं गाना सुना जाए.
0: बिल्कुल, क्यों नहीं.

0: सुमेधा जी, कागज के फूल का हमने गाना सुना, ये एक जो फिल्म है इंडियन क्लासिक्स में इसका शुमार होता है, लेकिन ये फिल्म असफल रही और कई लोग कहते हैं वक्त से पहले बन गई थी इसलिए ऐसा हुआ, तो आपकी क्या राय है इसमें?
1: ये सही बात है, वो वक्त से पहले बनी थी और जब पूरी फिल्म बन गई थी तो ट्रायल पे हमने सबने देखी तो सब एक दूसरे आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है, तो मैंने फट से कह दिया कि पिक्चर चलेगी नहीं।
0: तो आपने कह दिया?
1: हाँ, मैंने कह दिया। तो अबरार साहब जो थे, जो डायलॉग राइटर थे, उनको बहुत बुरा लगा, बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता क्या किस हिसाब से कह रही। मैंने कहा बहुत हैवी है पिक्चर, बहुत ज्यादा हैवी है, और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलेगी नहीं क्योंकि इट्स टू सैड एंड टू हैवी। तो बोले अच्छा एनीवे देखते हैं, तो वो इत्तेफाक से वो हो गई। तो इतनी उस वक्त कमर्शियली बुरी थी कि बहुत तो दुख तो हुआ और मुझे इतना शौक नहीं लगा कि मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि पिक्चर नहीं चलने वाली।

0: में वो बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे वो अपनी कहानी कह रहे हो।
1: नहीं मगर जब वो गुजरे तो उनके डाउनफॉल तो नहीं हुआ था ना, उसके बाद चौदहवीं के चांद बनी तो सुपर हिट हो गई थी फिल्म, फिर अपनी क्या उसके बाद बनी थी साहेब बीबी और गुलाम, उसको भी अप्रिशिएट बहुत किया गया अप्रिशिएट, और फिर वो फेस्टिवल में गई थी।
0: अच्छा वैसे जी साहेब बीबी और गुलाम का जिक्र आया है, डायरेक्टर के रूप में नाम आता है अबरार अलवी साहब का, लेकिन पूरी फिल्म में ऐसा लगता है कि शैडो के रूप में गुरदत्त साहब मौजूद हैं। पूरी फिल्म में वो झलक जो है गुरदत्त साहब की जरूर दिखाई पड़ती है, उनके निर्देशन की झलक दिखाई पड़ती है।
1: अभी देखिए अबरार साहब क्योंकि उनसे उनके साथ शुरू से काम कर रहे थे तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना, तो उन्होंने हमेशा गुरदत्त जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शूटिंग की होगी, और डिस्कशन होते थे होंगे उन दोनों के आपस में, क्योंकि जब मैं अकेली काम कर किया जैसे चंद सीन्स थे जहाँ गुरदत्त जी नहीं थे तो उसमें गुरदत्त जी नहीं आए थे सेट पे, और जब गुरदत्त जी थे सीन में एज ए लीडिंग मैन तो नेचुरली होते थे, मगर जब ऑब्वियसली आई एम श्योर कि अबरार साहब और गुरदत्त जी के डिस्कशन जरूर होते थे होंगे आपस में कि इस चीज को इस तरह से किया जाए इस तरह से किया जाए।
0: हमने सुना है कि उसमें जो छोटी बहू का किरदार जो मीना कुमारी जी ने प्ले किया वो आप करना चाहती थी।
1: बिल्कुल, जब कहानी सुनाई गई और नॉवल से लिया गया बंगाली नॉवल से तो मुझे बहुत दिल किया कि मैं रोल करूं, तो गुरदत्त जी ने कहा देखो आप नहीं कर सकती ये रोल, तो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा, तो मैंने कहा आपका मतलब ये है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूं, तो बोले नहीं नहीं ये मतलब नहीं है, आप समझ नहीं रही हैं, एक एक मैच्योर औरत का रोल है, जो औरत अपने हस्बैंड के प्यार के लिए बहुत ज्यादा तड़पती जो उसको मिलता नहीं है, ये आप नहीं कर पाएंगी। तो फिर मैंने कहा क्या आपका मतलब कि औरत शादीशुदा होना चाहिए तो शादीशुदा औरत का रोल करें, नहीं बोले वो नहीं आप समझेंगे नहीं, आप अभी बहुत छोटी हैं इस चीज को कि हाउ यू वेट एंड पाइन फॉर योर हस्बैंड। खैर फिर भी मैंने कहा नहीं कुछ तो कोशिश तो करते हैं, तो उन्होंने वैसा गेटअप दे के स्टिल फोटोग्राफ्स लिए, लेने के बाद मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन थे वो हमने सब ने स्टिल्स देखे, मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बुरी नहीं लगती हूँ अच्छी लग रही हूँ, तो मूर्ति साहब ने कहा नहीं गुरदत्त जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं आप, यू नो यू लुक वेरी यंग कि

0: कि ऐसा नहीं कि शादी हो के कुछ 5-10 साल हो गए हस्बैंड की तवज्जो नहीं मिलती, ये तुम्हारे फेस पे ये आ नहीं सकती बात, तो भूल जाओ इस चीज को। तो मैं समझ गई बाद में क्या कहना चाह रहे हैं। सो
1: इस फिल्म का शुमारी बहुत बेहतरीन फिल्मों में होता है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। कोई यादगार संस्मरण इस फिल्म से जुड़ा है, कोई आपको याद आता हो, कोई प्रसंग याद आता हो?
0: मुझे रोल अच्छा लगा था क्योंकि हाँ उसके बाद गुरजीत जी ने कहा आप नहीं करेंगे तो बात खत्म हो गई। तो जब अब्रार साहब डायरेक्ट करने लगे तो वो एक दिन घर पे आके कहने लगे देखो मैं पहली बार डायरेक्शन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे क्योंकि मैं नया डायरेक्टर हूँ इसके लिए नहीं करें। मगर मैंने कहा उसकी तो कास्टिंग हो गई है अभी मीना जी के साथ। बोले नहीं जबा का रोल है वो भी तो कर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लूंगी। तो गुरुदेव उन्होंने जाके गुरुदेव जी को बताया तो उनको ताजुआ भाई तुम आप समझ नहीं रहे हैं 14वीं के चांद के बाद आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, ये तो सेकेंडरी रोल है टाइटल रोल नहीं है, क्यों करेंगी आप? तो मैंने कहा मुझे कोई हैंग अप नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा वो भी काफी इंटरेस्टिंग है जबा का रोल, डिफरेंट डेफिनेट कैरेक्टर है। तो बोले आप सोच लीजिए क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ आपको करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं अब्रार साहब ने इतना कहा तो मैं कर लूंगी, तो इसलिए मैंने किया।
1: तो इसका जिक्र चला है क्यों ना इस फिल्म का कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो?
0: एक तो मेरा अपना गाना है भंवरा बड़ा नादान, उसके उसमें जो शरारत कैरेक्टर की थी वो बहुत अच्छी थी। मगर उसका दूसरा जो गाना जो मुझे बहुत पसंद है कि ना जाओ सैया छुड़ा के बैया।

0: खास उसे परफॉर्मेंस को लेकर के?
1: नहीं, क्या हुआ, प्यासा जब शुरू हुई, क्योंकि कई सीन में गुरदत्त जी नहीं सिर्फ डायरेक्ट कर रहे थे, तो मेरे दिलो दिमाग में गुरदत्त जी मोर अ डायरेक्टर देन एन एक्टर. तब तक आदत हो गई थी कि वो के समझने लगे हमारे प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करते, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे कर लो, तो वो एक रैपोर क्रिएट हो गया था उनके साथ. हाँ, इनके साथ बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा है हमसे, तो वो समझाते थे. वो था. फिर गुरदत्त फिल्मों की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो एक ही किस्म के नई फिल्में बनाते थे. जैसे CID बनाई, सस्पेंस थ्रिलर थी, फिर प्यासा इतनी सीरियस पोएट की थी, फिर चौदहवीं का चांद रोमांटिक मुस्लिम बैकग्राउंड पे थी, फिर साहेब बीबी खान, बड़ी वैरायटी हुआ करती थी, वो बड़ी अच्छी बात थी. और फिर चौदहवीं का चांद फिर उन्होंने खुद नहीं डायरेक्ट की, एम सादिक साहब ने की. तो तब मैंने पूछा ये किस लिए आप किसी और को दे रहे हैं, तो कहने लगे भाई कुछ भी कहो मैं तो रहूंगा सेट पे, मगर वो जो उर्दू जबान का वो जो मजा है वो कोई छोटी सी बात मैं नहीं समझ सकूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी जबान है ही नहीं. अगर सादिक बाबू करेंगे तो छोटी छोटी बातें होंगी, हाय अल्लाह कहने का भी अंदाज उनको जो मालूम होगा जो मुझे नहीं पता होगा, यू नो. और खासकर वो लखनऊ के हैं उस तरफ, सही बात थी, तो उनका अगेन डिस्कशन जरूर होते थे होंगे, बट ऑन द सेट सिर्फ सादिक बाबू. ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गुरदत्त जी बैठे हो कह रहे नहीं आप बैठिए मैं ये शॉट ले रहा हूँ, ये वो उतनी रेस्पेक्ट देते थे अपने डायरेक्टर्स को.
0: आप लोग की राय ली जाती थी डिस्कशंस में?
1: नहीं, मैं तो यू नो ऐसी वैसी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी कि मेरी राय ली जाए. अगर कोई गलत ऐसे लगे तो मैं पूछती थी लॉजिकली ये कैसे हो सकता है, तो कहते थे भाई आप लॉजिक में बहुत जाती हैं. एक चीज होती है फिल्मों में, उसको कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी, तो हमको लेनी पड़ती है.
2: सेल्यूलॉइड के सितारे आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान. इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा.
0: देव साहब के साथ में कैसी जुड़ी थी आप?
1: देव साहब के साथ क्योंकि पहले उस CID में थे, तो मेरा उनका बहुत अच्छा एक वो भी अगेन ही वाज अ वेरी क्वाइट पर्सन, बट ही वाज नॉट अ टॉकेटिव पर्सन, मगर वेरी नाइस, वेरी डिसेंट, और बहुत अच्छा था उनके साथ.
0: उनके साथ कोई यादगार संस्मरण आपका किसी फिल्म का?
1: हाँ, एक बार हम उनकी प्रोडक्शन थी काला बाजार नवकेतन की, उसकी शूटिंग चल रही थी ऊटी में, तो यूनिट होटल से कुछ डेढ़ घंटे की ड्राइव थी दूर, लोग के आउटडोर शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो यूनिट पहले जा चुका था. तो देव, मैं और मेरी सिस्टर थी और मेरी हेयर ड्रेसर थी, हम जा रहे थे. देव ने कहा मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है. एक आधे घंटे के बाद देव कहने लगे, फॉग आने लगी पहाड़ियों में, तो कहने लगे वहीदा मुझे दिख नहीं रहा है. मैंने कहा क्या मतलब आपका दिख नहीं रहा है, क्योंकि पहले कभी मैंने उनको देखा नहीं चश्मा पहनते हुए. नहीं, एक तो फॉग है. मैंने कहा हाँ फॉग तो है, मगर ये क्या मतलब आपका दिख रहा है. तो बोले मैं चश्मा लगा था. तो फिर मैंने कहा आपने चश्मा क्यों नहीं लगाया, तो बोले जी मैं अपने कमरे में भूल आया. तो मैंने कहा अब क्या होगा, तो बोले ऐसा करो मैं गाड़ी रोकता हूँ, तुम आगे बैठो और अपनी दीदी और हेड्रेस को पीछे बैठने दो, और तुम मुझे बताते रहना राइट में लेफ्ट में जाना है. मैंने कहा भाई ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है. फिर उससे बढ़कर टेंशन ये हुई, एक तो फॉग और पहाड़ी का रास्ता, आगे से एक मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था. ओह, मैंने कहा देव भाई आगे से मिलिट्री कॉन्वॉय, और ये रास्ता इतना नैरो था कि कोई एक दूसरे को ये नहीं कह सकता. मैंने कहा तो मरवा दिया आपने, हम पीछे भी नहीं जा सकते और आगे तो जाना ही है. और वो जो ट्रक्स आ रही हैं, तो बोले मैं बहुत आहिस्ता चलाऊंगा. अच्छा, आहिस्ता चलाई है और कोई और रास्ता ही नहीं था. ओ, इतनी टेंशन में हम अपने लोकेशन पहुंचे, तो एक घंटा देर पहुंचे, तो वहां यूनिट वाले परेशान, और विजय आनंद जो थे गोल्डी वो डायरेक्टर थे, वो पहुंचे, भाई क्या हुआ आप लोगों को? तो मैंने कहा, विजय आनंद को सब गोल्डी बुलाया करते थे, गोल्डी आपके भाई साहब चश्मा छोड़ा है और फॉग थी और मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था, तो तुम्हें नहीं पता हम कितने टेंशन में खैरियत से पहुंच गए. तो दैट वाज अ वेरी डेंजरस एक एपिसोड हुआ था.
0: तो उसी फिल्म में गाने बहुत अच्छे हैं, कोई गाना याद करिए आप.
1: खोया खोया.

0: गोविंदा जी गुरली साहब का भी जिक्र आया है और इसके पहले हमने बात की गाइड की और गाइड में डांस बड़े खूबसूरत फिल्माए. वैसे गुरली साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं और सुना कि उसका जो एक डांस का सीक्वेंस था जिसमें आप थोड़ी सी घबरा गई थी, वो कौन सा सीक्वेंस था जिसमें दीवार पे चढ़ के डांस करना था?
1: या, या, या। आज फिर जीने की तमन्ना है, बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया था. उसका जो मूड था वो गाने में, उस म्यूजिक में, उसके लिरिक्स में और पिक्चराइजेशन में इतना उभर के आया तो वो एकदम परफेक्ट था. तो चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे. कुछ खंडर थे वहाँ पर, वो ऊंची सी दीवार थी, कुछ 6-7 फुट की और ज्यादा चौड़ी भी नहीं थी और बीच में एक गैप था. तो वो कहने लगे आप इतनी खुश और इतनी, मतलब लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं मगर खुश हैं. तो गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जप कर जाती हैं. तो मुझे थोड़ी कभी कभी हाइट से वर्टिगो सा होता है. मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अरे बापरे, मैंने कहा टूटे हुए पत्थर खंडर, मैंने कहा गिरे तो हड्डी तो जरूर टूटने वाली है, मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई. भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है? तो बोले 2-4 बार आप मेरे साथ रिहर्सल कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि पैर ये हो तो रुक जाना. मैंने कहा वो तो बाद में पता चलेगा, पैर फिसलेगा तो फिसलेगा. खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं.
0: गाइड की पूरी बात कर रहे हैं तो भी कम है, उसमें बहुत सारे दृश्य एक से बढ़कर एक हैं. वेला जी उसमें आपने रोजी का एक करेक्टर किया था और उस दौर में विमेन लिप की बात अगर हम कर रहे हैं या नारी की मुक्ति की बात करें, इस तरह के आंदोलनों का नाम भी शायद लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन रूसी एक ऐसा करेक्टर जिसने उस स्त्री की जो एक परंपरागत इमेज थी ट्रेडिशनल इमेज उसको तोड़ा उसने, वो विद्रोही उसमें रिबेलियस है. तो अमूमन इस तरह के खतरे लेने से जो अभिनेता हैं अभिनेत्रियां डरते हैं कि इससे उनकी इमेज पे फर्क पड़ेगा, पता नहीं पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी.
1: ये क्या हुआ, जब मैं फिल्मों में आई मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि जो भी रोल हो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए. और क्योंकि हो सकता हमारी फैमिली में कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं था, परफॉर्मेंस से मेरा मतलब था. क्योंकि आजकल भी लोग पूछते हैं आपने CAD का रोल कैसे किया, वो तो वैम्प का रोल था. फिर मैं कहती हूँ वो वैम्प का रोल नहीं था. अकॉर्डिंग

0: टू मी, मेरे हिसाब से वैम्प वो होती है जो इंटेंशनली किसी का बुरा चाहती है. वो कैरेक्टर वैसा नहीं है, तो वो फंसी हुई थी, एक गरीब लड़की थी किसी के चुंगल में, उनके कहने पे जो भी कर रही है वो कर रही थी. रोजी का कैरेक्टर रोल लिया मेरे दूसरे डायरेक्टर्स, उन्होंने कहा आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रही हैं. मैंने कहा क्यों? तो बोले एक तो रोजी नाम है और पहले सीन में ये दिखाया जाता है कि आप शादीशुदा औरत हैं, उसके बाद जाके आपका राजू से इश्क होता है व्हाटएवर, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है. फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं मानती नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है, एक नॉवल लिखी गई है. और ये नहीं कि अक्सर फिल्मी कहानियां क्या होती हैं, दिमाग में जिस आर्टिस्ट को लेने वाले हैं उनके पर्सनालिटी के हिसाब से लिखी जाती है. ये एक प्रोफेशनल ऑथर ने लिखी, उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक मेरी बन रही थी फिल्म नीलकमल, उसमें मेरा नाम था सीता और मनोज का नाम था मेरे ख्याल से राम ऑब्वियसली. तो वो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट किया, आपने ये रोजी का रोल किया, मेरी तो आपने बर्बादी कर दी, ये पिक्चर मेरी नहीं चलेगी, तो सीता का क्या होगा. तो मैंने कहा एक बात बताइए, उसमें राजकुमार का एक कैरेक्टर है जो पिछले जन्म में हम दोनों का बड़ा प्यार है, तो इस जन्म में आते रहते मैं एज ए स्लीप वॉकर चली जाती हूँ, तो वो सीता का राम पिछले जन्म में कहाँ चला गया, जो तो इस जन्म में आप कह रहे हैं सीता को तो हर वक्त सीता के राम के साथ ही होना चाहिए. तो ये आर्ग्यूमेंट उनको अच्छा नहीं लगा, चुप हो गए. फिर भी मेरे ख्याल से गलत ही, आपकी गाइड जो है वो चलेगी नहीं और आपको बहुत मतलब क्रिटिसिज्म मिलेगा. मैंने कहा आई डोंट केयर, मुझे करना है, मुझे रोल बहुत अच्छा लगा.
1: और दोनों ही फिल्मों ने इतिहास रचा. आपको गाइड के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला.
0: बिल्कुल सही है,
1: कमल के लिए भी मिला. कभी आपको ऐसा लगा कि ये दो फिल्मों को अगर हम छोड़ दें, किसी फिल्म में आपने बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए आपको अवार्ड नहीं मिला, कभी अखरा कि नहीं इसके लिए भी मिलना चाहिए था मुझे?
0: मुझे अपना रोल मुझे जीने दो में बहुत अच्छा लगा था, वो भी कंप्लीट कस्म का रोल था, उसमें वेरिएशन बहुत थे इमोशंस के, कि एक तवायफ है उसको किडनैप किया जाता है, फिर उसे शादी होती है, फिर वो माँ बनती है, कैसे उसमें चेंज आता है, कैसे वो अपने हस्बैंड को डाकू को समझाती कि भाई छोड़ दो इन सब चीज़ों को, सरेंडर कर दो बच्चे की खातिर. सो देयर द इमोशंस के जो वेरिएशन और अप्स एंड डाउन थे वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था. मुझे लगा शायद उसमें अवार्ड मिलने का चांस है, वो नहीं हुआ. इट्स ओके.
1: डाकू की समस्या पर वो फिल्म थी.
0: हाँ.
1: सुनील दत्त साहब के साथ में.
0: हाँ जी.
1: और सुनील दत्त साहब के साथ में आपने खूब दौरे वाले भी किए फौजियों के साथ में, बीच में जाकर के खूब काम किया. उनके साथ में, उनके ट्रूप के साथ में जाते
0: हैं ना. तो उनका था एक अजंता आर्ट्स ट्रूप एंटरटेनमेंट समथिंग ऐसे तरह का, तो हम लद्दाख गए थे उनके साथ और रास्ते में जो भी सिलीगुड़ी जहाँ भी जाते जवान थे वहाँ बहुत अच्छा भी लगता था उन लोगों को देखकर, खुशी भी होती थी, दुख भी होता था, यू नो. और काफ़ी प्रोग्राम वगैरह हमने किए. फिर बांग्लादेश वॉर के बाद वहाँ भी गए थे ट्रूप को एंटरटेन करने के लिए.
1: तो ऐसा है कि कुछ देर पहले हमने मुझे जीने दो की बात की है, तो उसमें भी बहुत अच्छा संगीत है. उसका कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो?
0: उसमें जयदेव जी का म्यूजिक था.

0: और आपकी बड़ी ऑफ बीट फिल्म रही है, बड़ी खूबसूरत फिल्म रही है, सुनील दत्त साहब ने उसका निर्माण किया, जयदेव साहब का उसमें संगीत था, रेशमा शेर और अमिताभ बच्चन साहब खासतौर से जो अपने खूबसूरत और गहरी दानेदार आवाज के लिए जाने जाते हैं, असरदार आवाज के लिए जो उनके डायलॉग सुनने जाते हैं उसमें उनको गूंगा बना दिया गया और उसमें जयवंत भी थे आपके साथ में, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रेशमा शेरा भी बनी, उसके आउटडोर्स खासकर बड़े इंटरेस्टिंग थे क्योंकि हमको टेंटों में रहना पड़ता था और जैसलमेर से कुछ 80 किलोमीटर आगे रेगिस्तान में, मगर बड़ा मजा आया। और हाँ, मैं मानती हूँ, मगर उस वक्त अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार नहीं बने थे और उससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी साथ हिंदुस्तानी, ये उनकी दूसरी फिल्म थी और सब उस वक्त सोचते थे कि इसमें अमिताभ बच्चन आगे क्या होगा इनका, क्योंकि एक तो माशाल्लाह बहुत लंबे हैं और सब कहते तो थोड़े ऑकवर्ड से लगते हैं उनकी लंबाई की वजह से। तो मैंने कहा सुनील साहब भी बड़े लंबे हैं, वो भी उनको 6 फुट तो हैं होंगे ही। और जब पैकअप हो जाता था, कुछ करने को नहीं, रेगिस्तान में टेंटों में रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस वक्त अमिताभ ये जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा काम है, रोज ढोलकी बजा के गाया करते थे। मगर उनके एक दो शॉट देखे मैंने रेशमा शेरा में, तो जब सुनील जा रहे हैं तो माँ कहती है छोटू उसको ये खाना दे दे, तो भागते हैं, तो तब तक वो ऊंट निकल चुके हैं, बहुत दूर चले गए, तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का जो एक्सप्रेशन था अमिताभ का, जो बहुत अच्छा था। तो हम आपस में नरगिस जी हुआ करती थी बैठे, हम दूसरा शॉट हो रहा था बैठे गप्पे मार रहे हैं, मैंने कहा मुझे लगता है ये एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। तो बोले कैसे, एक तो डायलॉग नहीं बेचारे का, तुम किस हिसाब से कह रही हो। मैंने कहा नहीं, इस फिल्म में साइलेंट एक्सप्रेशन देना बहुत मुश्किल होता है, अगर इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ साइलेंट एक्सप्रेशन तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डायलॉग साथ में, मैंने कहा उसकी बाद उनकी आवाज इतनी अच्छी है, जब वो टॉकिंग डायलॉग हमें रोल मिल जाएगा मेरे ख्याल से विल डू वेरी वेल। तो फीलिंग होती है कि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट और स्टार बनेंगे, वो जो हो चुका।
0: मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि अमिताभ बच्चन साहब ने भी कहा और अभिषेक बच्चन ने, उनके बेटे ने भी कहा कि हमारी फेवरेट एक्ट्रेस में से वहीदा जी हैं। और अमिताभ बच्चन साहब की बात करें तो आपने उनकी नायिका की भूमिका भी की है और उनकी माँ का किरदार भी अदा किया। कैसे कलाकार आगे चल के लगे आपको, वो जो शुरू में वो जो बात होती थी उस समय, बाद में तो सब कुछ बदल ही गया पूरा, उन्होंने साबित भी कर दिखाया, लेकिन आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ?
1: मेरा अनुभव उनके साथ बहुत ही अच्छा रहा है आज तक, रेशमा शेरा से लेकर आज तक। और क्या, हर इंसान बदलता है, उसमें बदलना भी चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, मगर मेरे साथ तो उनका स्वभाव जो भी कहिए, उनके बच्चे जया सब कुछ का बहुत ही अच्छा रहा है। और वो इतने ज्यादा प्रोफेशनल हैं, पंक्चुअल हैं, उनके साथ कई फिल्में काम की तो कोई तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि बहुत बड़े स्टार हो गए, जब मैंने कैरेक्टर रोल शुरू कर दिए तो उनमें बदलाव आ गया कि नहीं, बहुत ही मतलब इट्स वेरी क्रेडिटेबल, बहुत ही अच्छा है उनका।
0: दिलचस्प सीन याद है उनके साथ किया हुआ आपको किसी फिल्म का?
1: हाँ, रेशमा और शेरा में वो न्यू कवर थे, एक सीन था एंड में कि मैं उसको तमाचा मारती हूँ बड़े जोर का,

0: तो इत्तेफाक से आंटी बच्चन मतलब अमिताभ की वालदा सेट पे बैठी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले वहीदा बहुत जोर का नहीं लगाना तमाचा। ओ मैंने कहा, उधर से सुनील दत्त ने कहा जी एक कसके लगाइए ताकि रीटेक की जरूरत नहीं। मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर मैं वापस गई जहाँ आंटी बैठी थी, तो मैंने कहा आंटी आप क्यों नहीं थोड़ा बाहर घुमाइए, कितनी देर से गर्मी में कहाँ बैठी हैं आप सेट पे, आप जरा बाहर ताजी हवा खाइए। फिर कह लगे तुम पता है मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो। मैंने कहा क्यों, तुम कस के मार रहे हो। तो मैंने कहा देखिए अगर मैं एक कस के मारूं तो वो शॉट खत्म हो जाएगा, अगर गलत ठीक नहीं हुआ वो डायरेक्टर कहेंगे और एक टेक, छह तमाचे पड़ेंगे उसको। तो हंसने लगी, बोले नहीं नहीं अच्छा मैं जाती हूँ। फिर मैंने सुनील दत्त को कहा डायरेक्टर को, देखिए अगर तमाचा पड़ने से पहले कोई गलत पोजीशन मेरी या डायलॉग गलत बोल दिया कुछ भी हो तो पहले काट दीजिए, बेचारे को क्यों इतने तमाचे मारूं। पहले तो आंटी ने मुझे कॉन्शियस कर दिया क्या कस के नहीं मारे, बाद में एक दिया मैंने बहुत कस के।
1: यहाँ हम रेशमा और शेरा, इसका संगीत बहुत ही खूबसूरत है, जयदेव साहब ने इसका बहुत ही दिल को छू लेने वाला संगीत दिया है, कोई गाना हो जाए रेशमा और शेरा का।
0: रेशमा का वो एक मीठी सी चुबन, एक हाँ बहुत मीठा गाना, बहुत अच्छा है।
2: एक मीठी सी चुबन, एक ठंडी सी अगर

0: महिदा जी, आपको अपनी मतलब किस फिल्म की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण लगी, बहुत चैलेंजिंग लगी?
1: मैं तो कहूंगी गाइड का रोल, इसलिए तो 40 साल पहले बनी फिल्म, 40 साल हो गए हैं, बियॉन्ड इट्स टाइम, और इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल. कभी वो रोल देख के ये नहीं लगा कि ये बुरी औरत है, यू नो, जस्टिफिकेशन था. और एक था, दे वर नॉर्मल कैरेक्टर्स, जैसे कि मार्को का या राजू का या रोजी का, कि हर इंसान हर वक्त कोई सेंट तो होता नहीं है और ना ही पूरा बुरा होता है. और एक पॉइंट आता है लाइफ में, सिर्फ जो अपने आप के लिए जीना चाहते हैं, जो भी चीज़ हम

0: अपने लिए करना चाहते हैं। तो रोजी का पैशन था डांस करना, वो उसको मार्को से नहीं मिलता तो उसको एंकरेजमेंट राजू से मिलता है। फिर एक पॉइंट आता है जहां सडनली राजू सेल्फिश हो जाता है कि वो एक जगह एक सीन कहते हैं अभी बस मैं रिटायर होना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। राजू कहते हैं नहीं अभी तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने हैं, अभी जल्दी क्या है। ये कहती है नहीं मुझे बच्चे चाहिए। अरे बच्चे भी हो जाएंगे इसकी क्या। उस वक्त राजू सेल्फिश हो जाता है, उसको एक अय्याशी की आदत पड़ जाती है, पत्ते खेलना, शराब पीना। वो कहते हैं कहाँ से जिम्मेदारी लें शादी बच्चों की। सो हर एक मौके पे कभी मार्को सेल्फिश हो गया था तो अपने पैशन में, तो उसने अपनी बीवी को भूल जाता है। अब रोजी पैशनेटली डांसर बनना चाहती, वो बन जाती है, फिर कहती है नाउ आई वांट टू गेट सेटल्ड। फिर उस वक्त राजू कहते हैं नहीं अभी कहाँ सेटल होंगे। तो ये चीज जो थी उसको बड़े डेलिकेट ये था। सो यू नेवर फील जब आप मूवी देखते हैं कि ये कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ए बैड पर्सन। नो, नोबडी इज बैड एंड नोबडी इज गुड।
1: देव साहब के साथ में और जो आपके क्योंकि वो भी बड़े सदाबहार अभिनेता रहे हैं और उनके साथ में आपकी बड़ी यादगार फिल्में रही हैं, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे उनके बारे में कुछ और, आपकी मन की बातें कुछ और बताइए उनके बारे में, कैसा है उनके साथ में केमिस्ट्री थी आपकी खास उससे। एक होता है कि अभिनेता और अभिनेत्री के बीच में एक वही ट्यूनिंग वाली बात है, फिर एक इंसान के रूप में भी हमारे रिश्ते होते हैं, कैसे थे?
0: जैसे मैंने कहा वो भी बड़े टॉकेटिव नहीं, उनको बात करने बाहर निकालना पड़ता था सवाल कर करके। तो हम प्रेम पुजारी जब सुनाने आए तो वो उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू डायरेक्टोरियल मूवी थी, तो कहने लगे मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ तो तुमको तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर लेंगे,
1: इतना हक
0: हाँ हक जता रहे थे जैसे। तो बड़े कोऑपरेटिव, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती। जब हम यूरोप गए थे प्रेम पुजारी की शूटिंग के लिए, लंदन, स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना वगैरह, तो वो काफी केयर लेते थे बहुत अच्छी तरह से। तो ही इज वेरी नाइस एज अ प्रोड्यूसर
1: और एक एनर्जी से भरे हुए
0: बेहिसाब। मैं तो उनको मजाक में एवर रेडी बैटरी बुलाती हूँ क्योंकि वो कभी थके कभी, मैं तो कहती भाई मैं थक गई अभी पैकअप कर लें, तो वो तो कभी नहीं कहते थे। वो उतने जब खासकर जब वो प्रेम पुजारी डायरेक्ट कर रहे थे तो शॉट देते थे, शॉट अरेंज किया ओके हो गया, फिर कैमरामैन को कहते थे ये शॉट है ऐसा है, फिर भाग दौड़ फिर वो पसीना पसीना हो जाते थे तो ऊपर कमरे में मेकअप रूम में जाते थे, फिर ताजी शर्ट पहन के आते थे ताकि पसीने वाली शर्ट नहीं हो शॉट के लिए। फिर वो हुआ, फिर उसको सुखाते थे, वो कहते थे, मैं कहते देव आप हमेशा ऑल द टाइम यू फुल ऑफ एनर्जी सो यू will call you ever ready battery.
1: अभी भी उनके अंदर जैसे एक नौजवान होता है और वो फिल्में बनाए जा रहे हैं और बेशक वो सफलता मिले ना मिले लेकिन वो कारवां नहीं रुका है, उनका जज्बा अभी भी वैसे ही है और फिल्में बनाए जा रहे हैं। तो अभी उससे कभी फोन पे आपकी बातचीत होती, मुलाकात होती है?
0: नहीं, तो एक बार फिल्म खत्म हो जाती है हम कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं किसी से भी, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। मेरे जो फिल्मों में दोस्त हैं वो एक्सेप्ट नंदा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और उसके बाद सिवाय काला बाजार के बाद हमने कोई काम ही नहीं किया, मगर 40-45 साल की दोस्ती रही है। सलीम साहब हैं, यश जौहर हैं, जो जौहर थे बेचारे, उनसे उनकी फैमिली से वैसे भी काम से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि उनकी फिल्मों में यश जौहर के काम नहीं किया। हालांकि यश जौहर को मैं तब से जानती हूँ जब वो मुझे जीनोदो में थे प्रोडक्शन कंट्रोलर, और फिर नवकेतन में थे गाइड के वक्त, प्रेम पुजारी में थे, तो तब से मुलाकात दोस्ती है, वो हमेशा मिलते रहे हम।
2: दोस्तों वहीदा जी से करने को इतनी सारी बातें हैं कि समझ में नहीं आता कहां से शुरू करें और कहां से खत्म करें। आज के कार्यक्रम का वक्त खत्म होने को आया लेकिन हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं, इसलिए वहीदा जी अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को फिर से रोशन करेंगी। भूलिएगा मत अगले रविवार फिर से सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम। हम आपको बता दें वहीदा जी से हमारे साथी कमल शर्मा ने बातचीत की। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी ने दिया। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती केंद्रीकृत प्रसारण सेवा के कार्यक्रम विविध भारती केंद्र मुंबई से। न्यूज ऑन AIR ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5 बजे हैं। युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: अभिनंदन, आभार, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज है थ्रिलिंग ट्यूसडे और मैं आपकी दोस्त मंजुल सिंह लेकर आ चुकी हूँ आपका पसंदीदा युवाणी कार्यक्रम। आज कार्यक्रम में क्या कुछ है खास, चलिए जान लेते हैं। आज सबसे पहले चर्चा सेगमेंट में है समुचित नींद में सहायक योग। उसके बाद भारतीय इतिहास सेगमेंट है जिसमें बात करेंगे बिरसा मुंडा के आंदोलन की। और फिर है आपका पसंदीदा चक्रव्यूह। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारी दिनचर्या इतनी भाग दौड़ भरी क्यों हो गई है? क्यों हमारा मन अक्सर अशांत और असंतुलित रहता है? इसका जवाब है आज के हमारे विषय में ही। दोस्तों, समुचित यानी संभाव और संतुलित चित या फिर मन, और समुचित नींद है एक बैलेंस्ड और प्रॉपर नींद। अक्सर हम दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, देर रात तक फोन स्क्रॉल करते हैं, और नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि बिस्तर पर जाने के बाद भी घंटों तक हमें नींद नहीं आती है, करवटें बदलते बदलते सुबह हो जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो आपको अपना स्लीप पैटर्न सुधारने की जरूरत है। और इसमें आपकी सहायता कौन करेगा? इसमें आपकी सहायता करेगा योग। दोस्तों, योग सिर्फ और सिर्फ वजन घटाने या बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए नहीं है, ये हमारे दिमाग को शांत करने के लिए सबसे पुराना और खास तरीका है। जब हम सोने से पहले कुछ खास योगासन या प्राणायाम करते हैं तो ये हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम का स्लीप हार्मोन बनाता है, साथ ही साथ जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है इसको भी कम करता है। जैसे आप सोने से पहले भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं जिसमें आंखें बंद करके कानों को उंगलियों से दबाकर भौरे जैसी गूंज करनी होती है, ये दिमाग को शांत करता है और स्ट्रेस कम होता है। साथ ही बालासन भी कर सकते हैं जिसमें घुटनों के बल बैठकर आगे की तरफ झुकना होता है, ये रीढ़ की हड्डी के तनाव को दूर करता है और शरीर को पूरी तरह रिलैक्स मोड में ले जाता है। लेग्स अप द वॉल पोज यानी विपरीत

कर्णियासन भी नींद में काफी सहायक है, जिसमें दीवार के सहारे पैरों को ऊपर उठाकर सीधे लेटते हैं। ये पैरों की थकान को मिटाता है और ब्लड सर्कुलेशन को दिमाग की तरफ बेहतर करता है, जिससे गहरी नींद आती है। और एक सबसे आसान लेकिन सबसे असरदार आसन भी है, और वो आसन है शवासन, जिसमें बिस्तर पर बिल्कुल सीधे लेट जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें और अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। और इसे करते करते आपको नींद कब आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आज से रात में सोने से पहले फोन को आधे घंटे के लिए दूर रख दीजिए। पहले दूर रखिए, हल्की लाइट जलाइए, योग कीजिए और नींद दौड़ी चली आएगी आपके पास। तो आज का ये हमारा सेगमेंट था चर्चा, जिसमें हमने बात की समुचित नींद में सहायक योग की। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट भारतीय इतिहास की ओर। दोस्तों, इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, इतिहास उन लोगों की भी कहानी है जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और पीढ़ियों तक के लिए प्रेरणा बने। आज के भारतीय इतिहास सेगमेंट में आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं हम, जिनकी दहाड़ से ब्रिटिश हुकूमत हिल गई थी। जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए जिन्होंने अपनी जवानी तक कुर्बान कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की। बात है 19वीं सदी के आखिरी दशकों की। अंग्रेजों के काले कानून, जमींदारों का जुल्म और साहूकारों का लालच आदिवासियों की जमीन और आजादी को छीने जा रहा था। अंग्रेजों की नीतियों ने आदिवासियों की जमीनें छीन ली और जंगलों पर उनका पारंपरिक अधिकार सीमित कर दिया गया। बेट बेगारी यानी बंधुआ मजदूरी से उनका शोषण किया जा रहा था। लोग बेबस थे, लोग लाचार थे। लेकिन कहते हैं ना, जब जुल्म अपनी हद पार करता है तो क्रांति का जन्म होता है। और तब 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलीहालू गांव में एक सूरज उगा, जिनका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने देखा कि उनके समाज को ना केवल बाहरी दुश्मन खोखला कर रहे हैं, बल्कि अंदरूनी अंधविश्वास और कुरीतियां भी कमजोर कर रही हैं। कम उम्र से ही उन्होंने अपने समाज की पीड़ा को देखा। वे केवल एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक सुधारक भी बने। बिरसा मुंडा ने सबसे पहले अपने समाज को जगाया। उन्होंने अंधविश्वास और पशु बलि के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को बताया अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपने अधिकारों के बारे में। उन्होंने लोगों को सिखाया कि प्रकृति ही ईश्वर है। लोग उनके विचारों से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें धरती आबा यानी धरती का पिता कहने लगे और उन्हें भगवान का रूप मानने लगे। लेकिन दोस्तों, असली क्रांति तब शुरू हुई जब 1895 में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को टैक्स देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज। ये केवल एक नारा नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की घोषणा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने उन्हें 2 साल के लिए हजारीबाग जिले में डाल दिया, जेल में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, क्रांति की आग सिर्फ सलाखों के पीछे रहने से बुझती नहीं है, बल्कि और बढ़ती ही है। 1897 में जब बिरसा मुंडा जी जेल से छूटे तो क्रांति की मशाल और तेज हो चुकी थी। साल 1899 आते आते उन्होंने ऐतिहासिक विद्रोह का बिगुल फूंक दिया, जिसे इतिहास में उलगुलान यानी महाविद्रोह कहा जाता है। बिरसा मुंडा का वो अमर नारा आज भी हवाओं में गूंजता है, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना, यानी महारानी विक्टोरिया का राज खत्म हो और हमारा अपना स्वशासन स्थापित हो। सोचिए दोस्तों, एक तरफ अंग्रेजों की आधुनिक बंदूकें और तोपें, और वहीं दूसरी तरफ भगवान बिरसा के नेतृत्व में आदिवासियों के पारंपरिक तीर कमान और कुल्हाड़ी। डोबारी पहाड़ी पर एक ऐतिहासिक जंग हुई, उसने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। महिला हो या पुरुष, बूढ़े हो या बच्चे, हर कोई जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। ऐसे कई स्थानों पर विद्रोह हुआ। और दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब हमारे देश के वीरों को कोई हरा नहीं पाया है, तब तब छल का सहारा लिया गया है।
साल 1900 के मार्च महीने में चक्रधरपुर के जंगलों से अंग्रेजों ने सोते हुए बिरसा मुंडा को धोखे से गिरफ्तार कर

लिया। 9 जून 1900 को रांची की जेल में महज 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा जी ने रहस्यमयी परिस्थितियों में अपनी आखिरी सांस ली। अंग्रेजों ने सोचा कि बिरसा के जाने से आंदोलन मर जाएगा, लेकिन वो गलत थे। बिरसा मुंडा एक व्यक्ति नहीं, विचार बन चुके थे। बिरसा मुंडा का आंदोलन भले ही अल्पकालिक रहा, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा था। उनके इस आंदोलन के दबाव में आकर ही अंग्रेजों को बाद में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास करना पड़ा, जिसने अंग्रेजों को हटाकर आदिवासियों की जमीन सुरक्षित की। आज भारत सरकार उनके जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जनजातीय समाज के महानायक, स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रदूत और धरती आबा बिरसा मुंडा के आंदोलन की भारतीय इतिहास सेगमेंट में। चलिए, इसी के साथ अब वक्त हो चला है एक सुंदर से प्यारे से गाने का, और ये गाना हमने लिया है फिल्म जीनियस से। आवाज है अरिजीत सिंह की, गीत है कुमार का और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

0: दीवाने।
1: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
0: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाए वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
6: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596242404 और 78007322।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ हैं धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
3: दोस्तों, चलिए अपने कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और आ चुका है अब आपका पसंदीदा सेगमेंट चक्रव्यूह। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं चक्रव्यूह क्रमांक 607 के प्रश्न और उनके उत्तर। 607 चक्रव्यूह हमने आपसे पूछा था, तो चलिए आपको बता देते हैं। पहला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था वो था, भारत के पहले कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कौन थे, जिसका सही उत्तर है लियोनन फील्डन। हमारा दूसरा प्रश्न आपसे था, युवाणी सेवा की शुरुआत कब हुई थी, जिसका सही उत्तर है 21 जुलाई 1969। हमारा तीसरा प्रश्न आपसे था, भारत में पहला FM प्रसारण किस शहर में हुआ था, जिसका सही उत्तर है मद्रास, चेन्नई। हमारा चौथा प्रश्न आपसे था, आकाशवाणी की एक्सटर्नल सर्विस की शुरुआत किस भाषा से हुई थी, जिसका सही उत्तर है पश्तो भाषा। हमारा पांचवा प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था वो था, आकाशवाणी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस निजी रेडियो स्टेशन

में हुआ था, जिसका सही उत्तर है आकाशवाणी मैसूर। हमारा छठा प्रश्न था, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत सबसे पहले किस शहर में हुई थी, जिसका सही उत्तर है बॉम्बे। हमारा सातवां प्रश्न आपसे था, वर्तमान में आकाशवाणी के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन है, जिसका सही उत्तर है श्री राजीव कुमार जैन। तो दोस्तों, ये थे हमारे चक्रव्यूह क्रमांक 607 के प्रश्न और उनके उत्तर। तो चलिए, अब आपको भी इंतजार होगा ये जानने का कि आपने अपना जो हमारा भेजा हुआ चक्रव्यूह था ये भेजा या नहीं। तो चलिए आपको बता देते हैं हमारे कौन से दोस्त हैं जिन्होंने इस चक्रव्यूह को भेज लिया। दरियापुर बाभली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले। अगले दोस्त हमारे बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से थे बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रहलाद मुरली, उमेश मिथिलेश वर्मा। अगले दोस्त बटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू। अगले दोस्त हमारे छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदोलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, मयंक और पुष्पांजलि। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखिलाल वर्मा। अगले दोस्त हमारे नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से थे कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। छत्तीसगढ़ से अगले दोस्त हमारे थे खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। अगले दोस्त धर देई सरगांव छत्तीसगढ़ से थे चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा और क्रिस्टी पटवा। अगले दोस्त हमारे बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी और विभूति साहू थे। और अगले दोस्त थे रामशरण विश्वकर्मा, साहिल प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। ये थे हमारे दोस्त जिन्होंने हमारे चक्रव्यूह को सक्सेसफुली भेद लिया। अब आपको बता देते हैं हमारे ऐसे कौन से दोस्त हैं जिन्होंने हमारे इस चक्रव्यूह को अटेम्प्ट किया। देखिए दोस्तों, सही होना गलत होना मैटर नहीं करता, पर उसे अटेम्प्ट करना बहुत मैटर करता है। और हमारे इन दोस्तों ने हमें ईमेल करके इसके उत्तर भेजे। ये दोस्त थे पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर। अगले दोस्त परसाटोला अंबागढ़ी चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सलोचनी मसिया, तुषारणी मसिया और खुमेंद्र मसिया। अगले दोस्त हमारे पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से थे राधेश्याम पांडे, वीना, विनय शंकर पांडे, नयन, सोमांशु पांडे। अगले दोस्त हमारे डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये। अगले दोस्त थे हमारे बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, राधिका, पूजा, प्रभा देवी तामुरिया। और अगले दोस्त जिन्होंने हमारे पास किया था मेल वो थे छत्तीसगढ़ कोयलारी से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद चंद्राकर, पूर्णेंद्र चंद्राकर और साहिल चंद्राकर। और हमारे दोस्त थे आरसी कामड़े, करुणा, मीणा, अश्विनी और विपुल कामड़े। अगले दोस्त रिंगिनी छत्तीसगढ़ से थे दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। अड़ार नाथघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा। पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति, शिवांश वर्मा। गुड़ाराज से मनोज साहू, चित्रेखा साहू, देवेंद्र साहू, लवीना, चंचल वासनी और गरिमा साहू। दोस्तों, ये थे हमारे सारे दोस्त जिन्होंने चक्रव्यूह या तो अटेम्प्ट किया या तो चक्रव्यूह को भेद लिया। चलिए अब पेन पेपर लेकर आप हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं चक्रव्यूह क्रमांक 608 के प्रश्न, जिनके उत्तर आप हमें लिखकर भेजेंगे हमारे मेल आईडी yuvvaniayodhya@gmail.com पर, और 15 जून से पहले ही भेजेंगे आप। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। प्रश्न दोबारा से सुनिए, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था। प्रश्न दोबारा से सुनिए, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है। प्रश्न दोबारा से सुनिए,
भारतीय संविधान का कौन सा

अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है। हमारा चौथा प्रश्न है, जब अर्थव्यवस्था में मंदी यानी स्टेग्नेशन और उच्च मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन दोनों एक साथ मौजूद होते हैं, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? प्रश्न फिर से सुनिए, जब अर्थव्यवस्था में मंदी यानी स्टेग्नेशन और उच्च मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन

प्रश्न होता है। हमारा छठा प्रश्न है, बुद्ध चरितम के लेखक कौन है जिन्हें बौद्ध धर्म का पहला संस्कृत नाटककार माना जाता है। प्रश्न फिर से सुनिए, बुद्ध चरितम के लेखक कौन है जिन्हें बौद्ध धर्म का पहला संस्कृत नाटककार माना जाता है। हमारा सातवां प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का स्थायी सचिवालय किस शहर में स्थित है। प्रश्न फिर से सुनिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का स्थायी सचिवालय किस शहर में स्थित है। दोस्तों ये थे हमारे सारे प्रश्न चक्रव्यूह क्रमांक 608 के। उम्मीद है आपने इन सब को नोट कर लिया होगा और 15 जून 2026 से पहले उत्तर लिखकर भेज देंगे हमारे मेल आईडी yuvaniayodhya@gmail.com पर, yuvaniayodhya@gmail.com। और अगला चक्रव्यूह क्रमांक 609 प्रसारित होगा 16 जून को और साथ ही इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो चला है एक प्यारे से गीत का जिसे हमने लिया है फिल्म सिंगर्स किंग से। आवाज है राहत फतेह अली खान की, गीत है मयूरपुरी का और संगीत है प्रीतम का।

0: और दोस्तों मौसम में गर्मी बरकरार है तो कुछ सावधानियां आवश्यक है। हीट वेव से बचने के लिए लगातार पानी पीते रहें, प्यास अगर ना लगी हो तो भी पानी पिए। पानी में ORS घोल, नमक चीनी का घोल और नींबू पानी मिलाकर पिए। पारंपरिक पेय जैसे छाछ, लस्सी, कच्चे आम का पना, बेल का शरबत, नारियल पानी, ये सब सेवन करें। शराब, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक से बचें। हल्के रंग के सूती ढीले कपड़े पहने। बाहर निकलते समय चश्मा, छाता, टोपी या सिर पर सूती कपड़ा जरूर लपेटें। दोस्तों इसी के साथ अब बता देते हैं कल के कार्यक्रम में क्या कुछ है खास। कल चर्चा होगी सभ्यताओं के मध्य संवाद के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, साथ ही एक भेंटवार्ता होगी CBSE बोर्ड से। इंटरमीडिएट में जिले में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा आनंदता चतुर्वेदी से दिशा की बातचीत। व्यक्ति विशेष में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है, साथ ही सेगमेंट है खेल संसार। तो इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त मंजलि सिंह को इजाजत। नमस्कार।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण

0: क्रिकेट में जिले में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा आनंदता चतुर्वेदी से दिशा श्रीवास्तव की बातचीत। व्यक्ति विशेष में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है, साथ ही सेगमेंट है खेल संसार। तो इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त मंजलि सिंह को इजाजत। नमस्कार।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी न्यूज ऑन आईआर ऐप और 101.9 एफएम पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए अमरनाथ और साथियों की आवाज में ये लोकगीत, लेकिन उससे पहले कुछ एक संदेश।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम तिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
0: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com AYODHYA AKASHVANI@

0: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161877347।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत, न्यूज ऑन AIR ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके पश्चात अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की कीजिए बस जरा सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट

यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।

ये तो गीत अभी आपने सुना फिल्म आन मिलो सजना से। और अब बातें गर्मी की। जी हाँ, गर्मी ज़बरदस्त पड़ रही है वो आप जान रहे हैं, और इसके लिए सबसे पहले आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रचार माध्यमों के माध्यम से हीट वेव यानी लू के संबंध में जारी की जा रही चेतावनियों पर विशेष ध्यान दें। हीट स्ट्रोक यानी लू लगना के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, उबकाई, घबराहट, धड़कन और सांसों में तेजी, मूर्छा आदि को पहचानें। यदि उपरोक्त किसी भी लक्षणों में हीट रैश यानी घमोरियाँ आपको हो गई हों या हीट क्रैम्प मांसपेशियों में जकड़न जैसी स्थिति हो उसका आप अनुभव कर रहे हो तो तुरंत मेडिकल एड ले लें। अपने शरीर में जल की कमी को पूरा करते रहें, हाइड्रेटेड रहें, हमेशा अधिक से अधिक पानी पिएं। यदि प्यास नहीं भी लगी तब भी कुछ ना कुछ पानी अवश्य पी लें। घर से बाहर निकलते ही पीने का पानी पी लें और साथ में पीने का पानी

लेकर जाएं। ओआरएस घर में बने हुए पेय है, जैसे लस्सी, चावल का पानी, माड़, नींबू पानी, छाछ इत्यादि का अधिकतम उपयोग करें, जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहे, शरीर में पानी की कमी न होने पाए। मौसमी फल सब्जियां जैसे तरबूज, खरबूज, संतरे, अंगूर, अनानास, खीरा, ककड़ी, सलाद, पत्ता, इन सबका इस्तेमाल करें। तो ये तो थी गर्मी से बचने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह। और इसी के साथ फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी अब समाप्त होता है। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे समाचार संस्कृत में हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: सुनवाने जा रहे हैं रेखा माहौर की आवाज में ये ब्रिज लोकगीत, लेकिन उससे पहले कुछ एक संदेश।
1: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
2: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध ना करें।
1: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें, और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
2: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
1: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आंकें, अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
2: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
3: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95 59 24 42 04 और 78 00 37 22 22।

0: अंजु भारती की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे नकटा। और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनाने जा रहे हैं ये साक्षरता लोकगीत छविलाल पाल और साथियों की आवाज़ में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा संदेश।
1: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682705221।

0: छविलाल पाल और साथियों के गाय इसी लोकगीत के साथ ही लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के अब समाप्त होता है।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत पर आधारित गूंजे स्वर गांव के। न्यूज वन AIR ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ।

0: ही कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर। हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ
2: परम तो सभी डाले
1: सब नहीं। आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है
1: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: कृषक महिला बहनों जय हिंद।
5: उर्मिला बहनी
4: हाँ गायत्री
5: देखा एक बात कही
4: कहा
5: जहाँ रहे हरियाली वहीं रहे खुशहाली। तो कहे ना कही भाई देखो जौन भी घर आंगन है ना अपने द्वार मार कहूँ भी भुइया अगर अपने सबका खाली मिलत है ना तो अपने सबका चाही को हरा भरा राखी साफ सब्जी खूब बढ़िया से लगाई फल फूल कितना नीक लागत है जब ताजी ताजी हवा मिलत है।
4: ये घरे के सभी मनई का प्रकृति के करीब लावत है और स्वास्थ्य बदे बहुत लाभकारी होते है साथ ही साथ ताजी व शुद्ध साग भाजी मिल जाते है। और ये सब लगाए से ना सवेरे संझा के गायत्री वही के देखभाल कहे से मन का शांति और तनाव दूर हो जाता है।
5: बिल्कुल भाई सही कहे उर्मिला बहनी देखा घर के आसपास हरियाली बढ़ावे से घर के तापमान भी नियंत्रित रहता है और शुद्ध ऑक्सीजन अपने सबका मिलवे करे। ग्रह वाटिका बदे वह जमीन के अपने सबका चुनाव करे के चाहिए जहाँ कम से कम 4-5 भाई घंटा धूप आवत रहा है और जोन भी अपने सब साग भाजी लगाए है ना उमा जैसे पानी के अगर अपने सब सिंचाई करे थे ना तो उमा कहूँ से ऐसे छाही भी ना आवे और पानी भी ना रुकाए।
4: हाँ बहनी यानी वो छा बिल्कुल न मारे धूप आवत रहे हुआ। और एक बात का और ख्याल रखे गायत्री कहा गवा है ना कि देसी खाद पड़े तो खेत नाहित पूरा रेत। गमला या भुइया में जवन भी क्यारी मनई लगाए रहा था तो माटी में सड़ी गोबर के खाद या बर्मी कंपोस्ट मात्रा अनुसार जरूर मिलावे। और साथ ही जहाँ पे जौन बा स्वास्थ्य वर्धक साग भाजी या फल लगावे के बाय हुआ जल निकास की व्यवस्था जरूर रहे।
5: हाँ भाई देखे जैसे अपने सब जोन भी बीज के चयन करें ये ओका बढ़िया जौन कृषि विज्ञान केंद्र या स्थानीय नर्सरी से गुणवत्ता वाला लाई जौन बीज शोधित हुए और अपने सबका बढ़िया से उमा फसल मिले। ये जौन अपने बहनी देखो कितना बहनी लोग लगाए हैं ये ग्रह वाटिका तो भाई कितना नीक लागत है कि ताजा ताजा लौकी करेला तरोई ये बैगन कद्दू नींबू अमरूद पपीता इस तरह से देखा जाए ना जो यह समय देखो चौराई की तरह नीक लागत है।
4: अरे गायत्री पूछा ना एकदम हरा भरा खेत लागत है गृह वाटिका लागत है और जिकरे दुआरे मोहरे नेबुआ कहू ना लाग रहा थी है गर्मी में वो फल देख के जे ना लगाए रहा तो वो ललचात है सोचत है दुठी तूर ली जाए शरबत बनाई या पनिये में डाल पी ली तो बहुत फायदा करे।
5: और गर्मी में तो भाई नींबू का अलग है महत्व है। और इतने ना ही जो अपने भाई अड़ोस पड़ोस में जो साग भाजी लगा रहा था तो अपने सब कुछ भाई अगर जैसे खाए का है तो अपने घरे भाई परिवार के ताई अपने सब लाइबे करी थे तोड़ के और जो ज्यादा हो जाते तो देखा अड़ी पड़ोस में दे दिए तो कितना मन खुश हो जाता है ये कि उन्हों का जो है सब्जी मिल गए एक दूसरे का ये तरह से बांट के जब खाते है ना तो के कुछ अलग आनंद होते है।
4: और जो घर का साग भाजी रहा था गृह वाटिका का रहा था अपने घरे लगाए रहा था नहीं वहां देखा रासायनिक खाद ना पड़ी रहा देसी खाद पड़ी रहा था। और वो का अगर लौकी हुए चाहे कोहड़ा हुए चाहे हम कहीं सरपुतिया हुए ये सब अगर बनावा जात ना तो वहाँ मिठास रहा था। और यही मेर से गायत्री क्यारी में पुदीना तुलसी जरकुश एलोवेरा गुलाब बेला इस सब लगाए से स्वास्थ्य बदे तो बहुत कुछ मिलिन जात है और फूल से वातावरण सुगंधित व मनमोहक हो जात है।
5: बिल्कुल सही कहो कि मतलब सुंदरता बढ़ जाते है एक ही अगर अपने घरे द्वारे मुहारे

0: है हरियाली वाला पेड़ पौधा, तो जोन अपने सबका लाभ तो मिलते हैं और अपन जोन पर्यावरण शुद्ध होते हैं अपने घरे के, और भाई हर घर में अगर मैं नहीं ये सब सोच लेना तो बहुत ज्यादा लागत नहीं लागत है और ना बहुत ज्यादा सोचे की जरूरत है कि कितना जमीन हो, क्योंकि देखा गमले में लगा लेते हैं और जोन लता वाली पौधा वो थे तो और कम जगह में लगावा जा सकत है। लेकिन एक ही ध्यान रखे का है कि जैसे गमला में है तो वह में पानी रुके ना, नहीं तो फिर भाई पौध सड़ जाई हैं, तो वो का भी ध्यान देखा है और समय समय पे वो कहीं निराई गुड़ाई भी करत रहे। जौन भी जैसे पौधा खराब हो गए सूख गए है तो का अपने भाई क्यारी मसा निकारत रहा है, तो ऐसे अपन हरियाली बनी रहे और जो भाई सबके ताई जैसे अपने सब देखे ना कि अपने सबका जो दायित्व तो है कर्तव्य है कि हरियाली रहे तब अपन पर्यावरण भी शुद्ध रहे।
1: बिल्कुल गायत्री, पर्यावरण शुद्ध रहे, शुद्ध हवा रहे और स्वास्थ्य अच्छा रहे और वहाँ दो चार जनी बैठ के अगर बतियात रहा तो शुद्ध वातावरण में मन एकदम खुश रहा था। पर एक साथे साथे ना गायत्री, यह गर्मी के मौसम में हरियाली तो मन का मुग्ध कहीं लेत है, पर यह मौसम में अपने सबका कुछ ज्यादा ख्याल रखा रहा।
0: बिल्कुल,
1: कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसन रहा है।
0: बिल्कुल भाई, देखा यही पेटो बद कही लेके आए हैं, गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा हो, जेका बतावत है डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव, जो उनकी है सहायक प्राध्यापिका मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से आई है और उनसे मंजू मौर्या बहने कितना बढ़िया से बतवाए हैं, चलो हम लोग सुना जाए।
1: हाँ तो बहने सुने का
2: बहनों, हम सब अपनी पंचायती में अपने किसान महिला बदे मौसम के अनुकूल जानकारी देवावे ताई समय समय पर डॉक्टर बहनी का बुलावा करी थी और आज अपन विषय है कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा हो, यह विषय पर जानकारी देवे बदे आज अपनी पंचायती में हाजिर रही डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव बहनी, जो उनकी सहायक प्राध्यापक है मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से। सबसे पहले डॉक्टर बहनी आपका पंचायती में स्वागत है, स्वागत किए के साथ है आज जैसे कि हमारा विषय है कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा हो, तो सबसे पहले हम आपसे जानब कि गर्मी में हमारे सबके खान पान कैसे हुए के चाहिए और काहे का ये जरूरी बाटे हमारे बहनन बदे बतावत चले।
3: देखिए गर्मी का मौसम चल ही रहा है
2: जी
3: और सभी महिलाएं देख रही हैं कि हमारा वातावरण का तापमान कभी 40 पहुंच जा रहा है, कभी 42 45 तक पहुंच जा रहा है
2: जी।
3: लेकिन हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो लगभग औसतन 37 डिग्री सेल्सियस होता है
2: जी।
3: अब उसमें हमें अपने तापमान को 37 डिग्री बनाए रखने के लिए हमें जो है विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब जब बाहर का तापमान बढ़ता है तो हमारे शरीर को अपना तापमान स्थिर रखने के लिए हमारे शरीर पसीना निकालता है, आप जानते ही हैं, और पसीना निकलने के साथ साथ हमारे अच्छे खनिज लवण भी पसीने के साथ साथ निकलते हैं और साथ ही साथ हमारी रक्त वाहिकाएं हैं वो भी फैल जाती, हृदय गति में भी थोड़ा परिवर्तन होता है, थोड़ी तेज हो जाती है, भूख में कमी आ जाती है, पाचन क्रिया मंद हो जाती है और हमारे शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर में ऊर्जा को भी आवश्यकता होती है कि ऊर्जा लगती है ठंडा रखने के लिए
2: जी।
3: तो इसलिए जो है हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गर्मी में किस तरह से हम रहें और किस तरह से खान पान रखें कि जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके।
2: अच्छा खान पान कैसे रखेगा, कोनी में रखेगा, एक बदे जरूरत होता है कि हमारे सबका भोजन कैसे लेकर है, संतुलित लेकर है, तो हमारा भोजन कैसन हुए के चाहिए यह का पता चले।
3: देखिए अभी आपने बात की संतुलित भोजन की, तो संतुलित भोजन तो चाहिए चाहिए, ये नहीं कि गर्मी में है तो भोजन आधा कर देंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन ये ध्यान देना है कि चूंकि हमने पहले बता दिया है कि हमारी पाचन क्रिया थोड़ी धीमी पड़ जाती है तो हमें ऐसे भोजन को करना चाहिए जिससे कि हमें उसे पचाने में आसानी से पच सके। तो सबसे पहली बात है कि बहुत अधिक तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत अधिक मसाले नहीं प्रयोग करने चाहिए, जो चीजों के पचने में थोड़ा दिक्कत होती है जैसे शाकाहारियों में आप जान रही इस समय कटहल की सब्जी बहुत चलती है, कटहल की सब्जी है, पनीर है, इस तरह की गरिष्ठ जो भोज्य पदार्थ होते हैं मांसाहारी में मीट मछली वगैरह है, ये सब चीजें थोड़ा पचने में इनके लिए थोड़ा सा ज्यादा शरीर को करना पड़ता है
2: गर्मी के।
3: हाँ, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसे गरिष्ठ पदार्थों को कम मात्रा में, और ऐसे पदार्थ जो आसानी से पच जाते हैं, जैसे कि आप देख रही हैं इस समय तरोई है, लौकी है, परवल है, ऐसी सब्जियां जो आसानी से पच जाती हैं, उनका भोजन अपने में समावेश करना चाहिए।
2: कुल मिला के आपका
3: तेल मसाला कम प्रयोग करना चाहिए,
2: हरी सब्जी का,
3: हरी सब्जी जी हाँ, हरी सब्जी का इस्तेमाल ज्यादा करें।

0: जो आसानी से पच जाती है, और गरिष्ठ चीजों का इस्तेमाल कम करें जिसको पचने में हमें ज्यादा देर लगती है।
1: हमारे सबका सोच विचार के जो सुपाच्य भोजन हुआ वही का आयसेती अपने भोजन में शामिल करे का है आपका कहे मतलब। लेकिन डॉक्टर बेनी हम सब ही और का चीज यस प्रयोग करी जैसे हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहे अपने शरीर के ताई फायदेमंद भी रहे।
0: देखिए सबसे चीजें आपको ये हम बता दें कि दही, जान रहे हैं कि दही कितना अच्छा होता है, और दही में एक चीज होती है जिसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में प्रोबायोटिक कहते हैं, वो हमारी पाचन क्रिया को करने में सहायता देता है। तो हमको दही है, मट्ठा है, ये चीजें अपने भोजन में प्रयोग करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में।
1: अच्छा।
0: और ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है और हमारे पेट को भी ठंडा रखता है। तो इसके साथ साथ सब्जियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ही ली। फल की बात हम यदि हम करते हैं तो हमारे प्रकृति ने देखिए गर्मी में हमको कितने पानीदार फल दिए हैं, जैसे तरबूजा है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, तो इन सब चीजों का प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए,
1: इनका सेवन ज्यादा से
0: हाँ ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो है स्वास्थ्य अच्छा रहे।
1: कौन ही मेरे से फायदेमंद बनावत है,
0: ये इसलिए फायदेमंद बनाता है, इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन खनिज लवण पाए जाते हैं, सुपाच्य होता है, हैं, और फल हमको प्रतिदिन खाना चाहिए जिससे हमारे उसमें विटामिन और खनिज लवण की कमी ना हो सके।
1: बिल्कुल
0: ठीक है। और साथ साथ एक चीज आपने सुना होगा सत्तू, सत्तू भी बहुत, देखिए सत्तू क्या होता है, चने का सत्तू लें यदि हम जौ चना मिला के लें तो इसमें जो है हमें प्रोटीन वगैरह अच्छी मात्रा में मिलता है और सुपाच्य प्रोटीन मिलता है जो आसानी से पच जाता है, और इसको हमें अपने भोजन में सत्तू का प्रयोग जरूर से करना चाहिए। हमें ये लू से बचाता है सत्तू, और हमारा पेट भी भरता है और आसानी से पच जाता है।
1: बिल्कुल, हम तो कही थी कि जैसे आप बताएं कि जैसे तरबूज है, खीरा है, ककड़ी, ये सब जो बताएं ये सब अपने पेटे का जो है ठंडा ही दिया था, सुपाच्य भी हुआ था, और पानी के जो कमी है वो होकर पूर्ति भी एक साथ साथ हो जाती है।
0: और एक बात हमें बता दूं, जैसे आपको मैंने शुरू में बताया कि पसीना होता है हमारे शरीर का तापमान को स्थिर रखने के लिए, तो पसीने के साथ खनिज लवण निकलते हैं। अब हमको खनिज लवण किससे मिलेंगे, फलों से ही और सब्जियों से मिलते हैं, तो इसलिए हमें उनको अच्छी तरह से पकेंगे तभी पच जाएंगे हमारे पेट में, तभी हमको खनिज लवण देंगे। तो इसलिए हमें ऐसे फलों का प्रयोग करना चाहिए जो मैंने आपको अभी बताया कि खरबूजा है, तरबूजा है, ये सब चीजें, इसमें पानी की भी अच्छी मात्रा होती है, खनिज लवण भी होते हैं और सुपाच्य भी होते हैं।
1: तो मिला के आपका कहा का मतलब जो मौसमी फल है
0: उसको लेते रहे।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर बनी एक बात हम आपसे और जाना की पानी क्या तरह पिए और कौन मेर से और कौन कौन इस चीज लेके जो अपन शरीर है वो का तरल हम सभी बना सकी थी बताओ।
0: देखिए पानी की मात्रा इसलिए जरूरी है कि पसीना हमको होता है, पानी बराबर हमारे शरीर से निकलता रहता है, खासतौर से वो लोग जो धूप में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, उनके लिए तो हमको कम से कम 2.5 से 3.5 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए औसतन। पुरुषों के लिए थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे 12 से 13 ग्लास पानी पुरुषों को प्रतिदिन मिलना पीते रहना चाहिए, और महिलाओं को भी 9 से 10 ग्लास पानी प्रतिदिन पीते रहना चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ तरल में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका नारियल पानी है आप पी सकते हैं, नींबू पानी है पी सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं, आम का पना पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, मतलब हर चीज में आपको ये देखना है कि सुपाच्य हो। तो सूप पी सकते हैं सब्जियों का, जिससे कि आपको जो है तरल की भी मात्रा रहती पूरी होती रहती है और विटामिन खनिज लवण भी मिलते रहते हैं। तो इन सब चीजों का भी अपने पानी के साथ साथ अपने भोजन में मात्रा इनकी बढ़ा देना चाहिए गर्मियों के मौसम में विशेष रूप से।
1: कौनी कौनी बातें का और ध्यान में रखा है कि जैसे मान लो गर्मी के मौसम में हम सभी धूपे में से आई थन तो कौनी मेरे से पानी की जरूरत है, कैसे पिए का है, कुछ यहू पर सावधानी बरते का है, कैसे का?
0: देखिए ऐसा है कि दो तरह की बातें हैं, एक तो हम जो धूप में काम करते रहते हैं तो हमको लू लग जाती है, आपने सुना होगा, तो इसलिए जो बाहर काम करते हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि एक तो उनका पेट खाली ना हो, है घर से कुछ ना कुछ खाना पीना खा के चलें, साथ ही साथ अपने पास हमेशा पानी रखें और हो सके तो नींबू पानी रखें, शिकंजी इस टाइप की कोई चीज रखें। देखिए यदि आप अपने पास पानी नहीं रखेंगे तो आपको प्यास लगने पे भी आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि हम कहाँ पानी पिए, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी ना होने पाए।
1: बिल्कुल,
0: बराबर पानी पीते रहें थोड़े थोड़े समय पे, बहुत प्यास लगने का इंतजार ना करें या ये इंतजार ना करें कि हमारा काम खत्म हो जाएगा तो पानी पियेंगे।
1: बिल्कुल,
0: आप जो है 15-20 मिनट 25 मिनट
1: छोड़ के पानी,
0: हाँ पानी पीते रहें, और यदि लू लग ही गई है तो सबसे जरूरी है कि ठंडे स्थान में उस व्यक्ति को तुरंत पहुंचाएं, गीला कपड़ा आप करके उसके शरीर को पोंछते रहें, उसके बगल में, जांघ में ठंडा कपड़ा

0: कपड़ा पानी से भिगा हुआ रखें हैं और बराबर सर को माथे को पैर को गीले कपड़े से पोंछते रहें, जिससे कि उस पे लू का असर जो है ना हो ठीक हो जाए। और यदि ऐसा है कि वो व्यक्ति लू से बेहोश हो गया, ज्यादा समस्या आ गई है, तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि इस समय चिकित्सा की बहुत आवश्यकता होती है। हम देखते हैं हर साल आता है आंकड़ा कि धूप लू लगने के कारण कितने लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं, तो इसका कारण यही है कि शुरुआत से हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अपने खान पान का खाली पेट कभी नहीं रहना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल डॉक्टर बहनी, पानी पियत रह चाहिए, पानी के कमी अपने शरीर में ना हो पाए, यही मारे देखा हम सभी डॉक्टर के यहाँ जब जाए थी, पानी कमी हो जाता तो डॉक्टर भैया लोग ORS के घोल दिया था ना।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो ORS के घोल तो हम सभी ले आई थी, मान लिया दइए संजोग है दूर यहाँ है डॉक्टर भैया के घर, तो अपने यहाँ गाँव क्षेत्र में घर ही पर रही ORS के घोल कैसे हमारे बहनी लोग बनाए के अपने जीवन जो है बचा सकते थी बताओ। चले
0: हाँ ठीक है, ORS देखिए महिलाओं को मैं बता दूं, हर महिला को पहली बात तो अपने नजदीकी अस्पताल से ये मुफ्त में मिलता है, लाके इसका पाउच रखना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपके पास नहीं है, तो आप जो भी आपके घर में लोग हैं उनको बाहर निकलने से पहले बच्चों को खासतौर से महिलाओं को ORS के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ORS क्या है, इसको कहते हैं हिंदी में पुनर्जलीकरण घोल।
1: अच्छा।
0: तो आपको यदि घर पे बनाना है तो 1 लीटर यदि आप पानी लेना चाहती है तो 1 लीटर पानी को आप पहले उबाल लें।
1: अच्छा।
0: जिससे वो कीटाणु रहित हो जाए, उसके बाद ठंडा कर लें, ठंडा करने के बाद इसमें लगभग 6 चम्मच चीनी मिला दें और आधा चम्मच नमक मिला दें। तो चीनी और नमक मिलाने से क्या होगा, वही जो बात शुरू में कही जा रही है कि जो खनिज लवण है वो आपको जो है सोडियम पोटेशियम जो निकलता है वो चीनी नमक मिलाने से वो उसमें अपना आराम से घोल करके रख दें, और जब जब आपको जरूरत महसूस हो तो आप उसको पी सकती हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर बहनी, लेकिन चला चला था आप हमारे किसान महिला बहनों का जो खेती पाती करती है, जो घरे हैं, जो बहरे काम करते हैं, उनका यह गर्मी से बचे बदे का सलाह देना चाहती हूँ बताओ। चलो
0: कि जो मैंने पहले कहा, पेट भरा रखें, पानी साथ में रखें, पानी ना यदि आप बहुत ज्यादा धूप में काम कर रही हैं तो ORS रख लें, सर पे हमेशा सर को ढक के रखें, और साथ साथ हम थोड़ा दो बात बताएंगे, गर्भवती महिला हैं तो उनको अपने पानी की मात्रा थोड़ा बढ़ा देनी चाहिए
1: जी।
0: और साथ साथ यदि आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, धात्री माता हैं
1: जी,
0: तो आपको हर स्तनपान कराने से पहले अपने आप 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए, जिससे आपके शरीर में, चूंकि वो एक आपसे अतिरिक्त दूध रूप में पानी शरीर से ही निकलता है
1: जी।
0: तो आप हर स्तनपान कराने से पहले आप 1 गिलास पानी पी लें,
1: तो स्वास्थ्य बनाए
0: रखें।
1: का बात करें डॉक्टर बहनी, डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव बहनी, आप सहायक प्राध्यापक मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से आई, और हमारे बहनन का गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा हो यह विषय पर पूरा जानकारी दी। एक बदे आपका पंचायती की वारी से और किसान महिला बहनन के वारी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गायत्री
3: हाँ और मीना बहनी,
2: देखा डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव बहनी, गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा हो, यानी कैसन हो, कैसे अपने सबके दिनचर्या रहे, काव खाए के चाहिए, काव पिए के चाहिए, इस सब कितना बढ़िया से बताई। और मंजू मौर्या भी फरियाए फरियाए पूछी।
3: बिल्कुल सही कहू कि जैसे हर आयु वर्ग हर कार्य बूत करे वाला कि क्यों बाहर करत है, क्यों धूप में ज्यादा भाई जात आवत है, तो होके भी अपने स्वास्थ्य बदे कितना ध्यान देगा है कि ये गर्मी में तरल पदार्थ के सेवन ज्यादा करें, पानी ज्यादा पिए और गरिष्ठ भोजन न करें, ये सुपाच्य भोजन के ही अपने सब प्रयोग करबे, तब भाई देखा स्वस्थ रह।
2: और गायत्री एकरे बदे देखा, अपन बहने जौन घरे घरैतिन बहनी होती वो बहुत कुछ जिम्मेदार होती, काहे से उनके सरिया में देखा गाय भैंस रहवे करथिन, दूध दुहे जात शुद्ध, तो संझा के खाना बनाए के बाद आराम से दूध गरम कैके थोड़ा जौन बाय जब कुछ ठंडा हो जाए दही रोज जमाए दें, और सवेरे अपने लड़का से लेके सयान बूढ़ पुरानिया सबका दोपहर जौन बोक मट्ठा दें या दही दें, लौकी है शायद बोक रायता बनाए के दें, तो शरीर में पानी की पूर्ति होत रहे।
3: बिल्कुल भाई, और ये मौसम में देखा जो है अपने सबको जो फल फूल मिला था तरबूज खरबूज, यह तरह से देखा जाए तो यहू का सेवन भी करे का है। एक है का मतलब है कि जौन भी अपने सब खाई की आसानी से पच जाए ये और शरीर स्वस्थ रहे।
2: और साथ ही साथ बहनन का यह कहा कि सबका दें लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। काहे से उन्हीं भैया रसोईया में रही है, उन्हीं सबके पेट पूजा करी है, बनी है, खान
3: करी है।

0: भाई अपने खाए पिए का भी ध्यान दे। और देखा बताई ना जोन जोन है रामधनी काकी के जोन पोती भाई है तो वही आवत रहन तो भेटान रही तो जुम्न है भाई यही पे चलो कुछ मन मन साइन हो जाए।
1: अरे गायत्री उनके यहाँ जौन चतुरा चाची हैं हमसे कहीं कि आज उनके यहाँ सोहर गावा जाए और इतना वे खुश हैं कि सबका जनऊआ दे रही यहाँ कि ढोल मजरा लेके बहनी आवा हमरे पोती भाई भाई आज हम गवाऊ पूरा गांव जवार जाने।
0: तो भाई देखा हम लोग अपने तरफ से जो है ये महिमा भाई शामिल हो जावा जाए तो अंजू मिश्रा उनके सखियाँ किस गावत हैं चलो सुना जाए।
1: हाँ

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: हाँ, और मेरा बहन देखा अपने पास जो है ना बाजार भाव है।
6: हाँ?
5: और बाजार भाव भी अपने भाई सखन का बतावा चली, ये चावल 3,060 रुपये प्रति कुंटल, गेहूं दड़ा 2,585 रुपया, मक्का पीली 2,400 रुपये प्रति कुंटल, उड़द काली 9,200 और चना देसी 6,400
6: और मसूर जौन बा 7,160 रुपया प्रति कुंटल के दर से, अरहर दाल जौन बा 10,900 रुपया प्रति कुंटल, आलू सफ़ेद 910 रुपया, प्याज लाल 1,320 रुपया प्रति कुंटल
5: और टमाटर 1,700, लहसुन 7,100 रुपया, जो है तरोई 1,140, खीरा 2,050 और बैगन 2,000, हरी मिर्च 3,270 और कद्दू के भाव जो है 1,100 रुपया प्रति कुंटल, अदरक 8,500 रुपया और शिमला मिर्च 2,700, भिंडी 1,440 रुपया और लौकी जो है 1,580 और करेला 1,250।
6: अब केला पका का भाव 2,800 रुपया प्रति कुंटल के दर से, नींबू 6,800, पपीता 2,795 और सेब का भाव बहनी जौन बाय 12,000 रुपया प्रति कुंटल के दर से,
5: और अनार 7,600 और जो है गुड़ बट्टी जो है 5,130 रुपये, चीनी 4,130 रुपये प्रति कुंटल। भाई ये तो रहा बाजार भाव, अपने पास देखा
6: मौसम की जानकारी भी मिली है।
5: बिल्कुल, तो अधिकतम तापमान 42 डिग्री जो उनके सामान्य से 3.3 अधिक जो है और न्यूनतम तापमान 29.5 जो उनके सामान्य से 3.9 अधिक है।
6: आर्द्रता अधिकतम 70%, न्यूनतम बहनी 36%, हवा के गति 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिशा उत्तरी पश्चिमी
5: और वर्षा भाई देखा बिल्कुल न होए। पूर्वानुमान है कि आगामी 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रही है एक संभावना है और हवा सामान्य गति से पश्चिमी चले के एवं औसत तापमान सामान्य से अधिक रहे के संभावना है, ए जोने से कि अभी उष्ण लू से राहत मिले के कोनो संभावना नहीं है।
6: हाँ बहनी, यानी सावधानी बरतें, घामी नहीं करें,
5: बिल्कुल
6: सवेरे संझे काम करें।
5: बिल्कुल भाई देखा, और चला चला बताई दी ना कि काल कृषि जगत कार्यक्रम में चर्चा रहे, हरियाली बढ़ाएं पर्यावरण बचाएं और जो ने बत कही रहे DSR धान की सीधी बुआई ड्रैगन फ्रूट, जेका बताइए श्री राकेश कुमार वर्मा, उनसे बतवाए हैं राम प्रकाश पांडे भैया। हाँ, भाई ये गौ नहीं थोड़ा करे
6: एक जौन बिहान भैया लोग सुनिए, लेकिन गर्मी से अपने स्वास्थ्य के सुरक्षा जरूर करत रहे,
5: बिल्कुल
6: घामे निकरत भय, अंगूछा से अपन सिर बधे रहें और फुल बाही का शर्ट पहने,
5: भाई आरामदेह ढीला कपड़ा पहने जोने से कि जोने पसीना ज्यादा ज्यादा सूख ले।
6: और गायत्री देखा बहनी, अब धीरे धीरे समय सारा कर दबा अपने सब जौन बा पंचन से विदा लीन जाए, तेहिक साथी उर्मिला का
5: और गायत्री का दे अनुमति। जय हिंद।
7: कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। न्यूज ऑन एआईआर ऐप और 101.9 एफएम पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 7:15 हुए हैं। हम जानकारी दे दें अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों के बारे में। जी हां, आज रात 8:15 पर आप सुन पाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। 9:15 पर सुनेगा गजलों का कार्यक्रम महफिल गजल। आज रात 9:30 आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। और आज रात 10:00 आप सुन पाएंगे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम खेल दर्पण।

0: यह सबसे जानकारी आज के कार्यक्रमों की और अब बातें कल की। जी हाँ, कल यानी बुधवार 10 जून 2026 को हमारी सभा आरंभ होगी। रोज की तरह प्रातः 5:53 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश आप सुनेंगे। कल प्रातः 7:30 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वर संगम प्रसारित किया जाएगा। कल सुबह 8:15 पर 8:30 पर आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, जिसमें आज की बात होगी सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय पर। अन्य जानकारियों के अलावा इसी कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे डॉक्टर प्रतीप मेहरोत्रा, ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ से की गई भेंटवार्ता, जिसका विषय होगा स्तन कैंसर जागरूकता ही बचाओ। कल सुबह 9:00 आप सुनेंगे व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। 9:30 सरयू फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। कल दिन में 11:55 पर आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल। अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग आप सुनेंगे कल दोपहर 12:30 पर। कल दोपहर 1:00 फेसबुक श्रोताओं की फरमाइश हम पूरी करेंगे, कार्यक्रम होगा कुछ तुमने कहा। कल दोपहर 2:00 सुनेगा गीत गजल व भजन, कार्यक्रम होगा गीतांजलि। 2:30 पर ग्रामीण महिलाएं सुनेंगे अपने कार्यक्रम अंगना, जिसमें चर्चा होगी सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस तथा तकनीकी शिक्षा से कौशल उन्नयन विषय पर। इसी कार्यक्रम अंगना में आप सुन पाएंगे दंत चिकित्सक डॉक्टर विनोद शुक्ला से की गई भेंटवार्ता, जिसका विषय होगा दांतों की बाइट की समस्या कारण व निवारण। कल शाम 5:00 कार्यक्रम युवाणी में चर्चा होगी सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। व्यक्ति विशेष में आप जानेंगे पंडित राम प्रसाद विस्मिल के बारे में और इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे हमारा सेगमेंट खेल संसार भी। साथ ही हम सुनवाएंगे सीबीएसई बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा में जिले में 3रा स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा आनंदिता चतुर्वेदी से की गई भेंटवार्ता। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा कल शाम 5:30 पर कार्यक्रम लोक संगीत में और 6:30 पर कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के में। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुनेंगे कल शाम 6:10 पर। रात्रि 8:15 पर गीत गुंजन और रात्रि 9:15 पर महफिले गजल। 9:30 सरयू फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। कल शाम 6:45 पर कृषक बंधु अपने कार्यक्रम कृषि जगत में सुनेंगे चर्चा हरियाली बढ़ाएं पर्यावरण बचाएं। साथ ही सुन पाएंगे राकेश कुमार वर्मा से की गई भेंटवार्ता, जिसका विषय होगा DSR धान की सीधी बुआई और ड्रैगन फ्रूट की खेती। यह तो थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष तथा कल प्रातः 5:53 से रात्रि 11:10 तक के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM तथा न्यूज ऑन AIR ऐप पर इस वक्त आपके साथ है आपका रेडियो दोस्त विवेक सोनी। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 7:18 होने को हैं। कुछ पलों में कुछ एक संदेशों के बाद ठीक 7:20 पर आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन की।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर से मिली नई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। श्री मोदी ने आज के ही दिन वर्ष 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। श्री मोदी ने लिखा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और पूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित इस 12 वर्षीय परिवर्तनकारी नेतृत्व ने अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए भारत को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नई ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित किया है। श्री योगी ने लिखा है कि ये कालखंड पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक प्रेरक अध्याय है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 18 हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जयप्रकाश शिवहरे ने आज लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने जन विश्वास के तीसरे चरण के लिए पहल शुरू कर दी है। श्री शिवहरे ने बताया कि आज देश के विभिन्न राज्यों में मंत्रालय द्वारा उद्योग जगत के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है और उन्हें सरकार की नीतियों और नए नियमों कानूनों की जानकारी दी जा रही है।
3: भारत सरकार ने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के जिस तरह के कदम लिए हैं, खासकर जन विश्वास एक और जन विश्वास दो के द्वारा बहुत सारे एक्ट उन प्रावधानों को हटाया गया और अब 12 वर्ष के वर्ष पूरे हुए हैं तो भारत सरकार ने जन विश्वास के लिए पहल शुरू की और अब जो प्रोसीजर पार्ट फोकस करके किस तरह के चेंजेस किए जाने चाहिए, फीडबैक भी लिया जा रहा है।
0: इससे पहले श्री शिवहरे ने लखनऊ में राज्य के उद्योग जगत के लोगों के साथ विचार विमर्श किया। संवाददाता सम्मेलन

भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक दिलीप शुक्ला और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद भी उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में रक्षा मंत्रालय की 850 एकड़ जमीन पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से शुरू की गई ये अपनी तरह की पहली परियोजना है।

0: newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डिजिटल नवाचार के अभियान को गति देने के लिए आज लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभिनव पहल डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। श्री योगी ने कहा कि इंटरनेट जितना फास्ट होगा विकास की गति भी उतनी ही तेज होगी।
1: इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही डेवलपमेंट की गति भी फास्ट होती हुई दिखाई देगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए कई चरणों में पूर्व में काम किए थे, खासतौर पर ई ऑफिस की हमारी संकल्पना, लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन की कार्रवाई हो या फिर प्रदेश के अंदर डिजिटल पेमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और इस महीने की 21 तारीख को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चूक और खामियों को रोकने के लिए राज्यों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
2: प्रधानमंत्री जी देश के बच्चों को निश्चित आश्वस्त करना चाहते हैं कि सब प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से अब भरोसा हमारे ऊपर आपकी है, आप रखिए, हम जो त्रुटियां हुई है उस त्रुटियों को हम पुनरावृत्त नहीं करेंगे, सटीक परीक्षा करवाएंगे।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच दो पालियों में सकुशल संपन्न हुई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। सॉल्वर गिरोह को पकड़ने के लिए यूपीएसटीएफ, लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस सक्रिय रही। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। कल लिखित परीक्षा का अंतिम दिन है। ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगल पर आज राजधानी लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जयकारों के साथ दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं शहर में कई स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया है। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी आज बड़ी संख्या में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी संभाग के कई जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ ही वज्रपात और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।

0: जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
1: आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 7:31 हुए हैं। आप सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम विविध भारती केंद्र मुंबई से।
2: पुरी ने संगीत जयदेव का है।

आइए अब सुनते हैं सागर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, गीत जावेद अख्तर का है, संगीत आर.जे. बर्मन का।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में पॉप एक्सप्रेस। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं करण औजला और नेहा कक्कड़ की आवाजों से। एल्बम का नाम है आय हाय, गीत करण औजला और संगीत है करण औजला और जैक ट्रैक का। आइए सुनते हैं ये गाना।

अब सुनते हैं साकेत सिंह की आवाज में ये गाना। संगीत साकेत सिंह और निरंजन का है, गीत है साहिल सुल्तानपुरी का।

0: नहीं, ओफो, ये कमबख्त दाढ़ी भी महंगाई की तरह रोज बरोज बढ़ती जाती है। अजीब इल्लत है, चाहे साबुन मिले ना मिले मुंह पर झाग मलते रहो। मैं कायर तो नहीं मगर।
1: अरे भाई पुष्पा जी, खिल रहे हो अर्थात अंदर विराज रहे हो क्या? बड़ा सन्नाटा लगा रखा है।
0: आइए दुख घोटन लाल जी, आइए पधारिए।
1: पधारते हैं तनिक चरण दासियों से मुक्ति पाले, अर्थात जूतियां उतार ले। लो भाई पधार गए, कहां रखें अर्थात तशरीफ? इधर ही कोने में रखते हैं, पंखे की शीतल वायु लगती रहेगी। हाँ भाई एक शुभ समाचार है।
0: कह डालिए पंडित जी, मन व्याकुल हो रहा है।
1: पहले यह बताओ कि तुम्हारी राशि क्या है?
0: है? ये क्या वस्तु होती है पंडित जी?
1: क्या वस्तु होती है? कव्य की चोंच की भस्म होती है
0: जी?
1: राम राम धर्म कर्म तुम नवयुवकों ने विक्रय करके भक्षण कर लिया है, अर्थात बेच खाया है, जन्म राशि नहीं जानते। अच्छा तुम पहले मुख रोमों का खुरचन निपटा लो, अर्थात दाढ़ियां बना लो, तो बात करूं।
0: जी पंडित जी, मैं दाढ़ियां नहीं दाढ़ी बना रहा हूं, सिर्फ अपनी, मोहल्ले भर की नहीं।
1: काश मोहल्ले की बनाते तो धना लाभ तो होता। खैर भाई, कहने का अर्थ यह है कि कई राशियां होती हैं, जैसे सिंह मीन कर्क कन्या तुला आदि, अर्थात शेर मछली मकड़ी लकड़ी लड़की तराजू वगैरह वगैरह। इनमें से तुम्हारी कौन सी?
0: ना मैं लड़की हूँ, ना तराजू, ना शेर हूँ, ना मछली, सिर्फ दिवाकर नाथ पुष्प हूँ और बस।
1: काश तुम लड़की होते
0: जी?
1: मेरा तुम्हारा परिचय तो ना होता। मैं तुम्हारे लाभ की सोच रहा हूँ और तुम परिहास फ्लाई कर रहे हो, अर्थात मजाक उड़ा रहे हो। जानते हो ये कपड़ा क्या वस्तु है?
0: जी वो जूता पोछने का चीथड़ा लगता है।
1: तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अर्थात खलास हो गई है। अरे बांगड़ू, यह है राशि फल।
0: जी एक कौन सा फल?
1: राशि फल अर्थात राशि के अनुसार भविष्य का पूरा हाल। हमारे महापंडित ज्योतिषी ने 21 दिवस सिर्फ कद्दू खाकर बांचा है।
0: हाँ।
1: कागज की कमी के कारण उन्होंने इसे कपड़े पर छपवाया है। यदि हमें तुम्हारी राशि मालूम होती तो भविष्य बांच देते। ठहरो, पहले तुम्हारी राशि निकालते हैं। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम किस वर्ष किस महीने किस दिन कितने बजकर कितने मिनट पर कहां और क्यों पैदा हुए?
0: है, है, है, पंडित जी मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम। डेट ऑफ बर्थ पिताजी के पास थी, सो तो परलोकवासी होते गए, या फिर हाई स्कूल सर्टिफिकेट में है जो दफ्तर में जमा है। बहरहाल इतना मुझे अवश्य याद है
1: कि मैं
0: पैदा अवश्य हुआ हूँ।
1: नहीं तो क्या लॉटरी में निकले थे? काश तुम पैदा ना हुए होते तो पृथ्वी का बोझ 200 पाउंड हल्का तो रहता है। क्या तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि तुम किस मौसम में पैदा हुए?
0: जी वो बरसात में।
1: बरसात में? शाबाश शाबाश, अर्थात अगस्त में। यह तुम्हें कैसे मालूम?
0: मुझे याद है पंडित जी कि मेरे पैदा होने से पूर्व जब पापा जी नर्स को बुलाने गए थे तो मम्मी ने कहा था कि छाता लेते जाइए, यानी बरसात थी।
1: पुनः शाबाश। अब जरा ये भी बताओ
0: जी
1: कि वो अगस्त का कौन सा सप्ताह था जब तुम्हारे जन्म की दुर्घटना हुई थी?
0: जी पहला हफ्ता।
1: भाई पुनः पुनः शाबाश। अच्छा यह कैसे विश्वास हो कि वो अगस्त का पहला सप्ताह था?
0: पहले सप्ताह में तनख्वाह मिलती है पंडित जी। पापा के पास पैसे थे तभी तो नर्स बुलाने गए, वरना दाई पकड़ लाते, बात साफ है।
1: अरे मुझे भयंकर प्रसन्नता हुई, तुम कितने समझदार हो। अच्छा उस समय दिन था या रात थी?
0: जी रात थी। मेरे जन्म से पहले पापा छाते के साथ टॉर्च भी ले गए थे। दिन होता तो छड़ी ले जाते।
1: बस बस बस, बस पर्याप्त है। अगस्त पहला सप्ताह रात।

0: भाई तुम्हारी राशि मीन है, अर्थात तुम मछली हो।
1: व्हाट यू मीन पंडित जी?
0: नाराज ना हो, नाराज ना हो, मैंने कोई अंग्रेजी वाला मीन थोड़े ही कहा है। मीन यानी मछली, अर्थात फिश।
1: मैं मछली हूँ? कौन सी, रेहू, टेंगन, पढ़न या वीर? धीरे बोलिए पंडित जी, पड़ोसियों को पता लग गया कि मैं मीन यानी मछली हूँ तो कांटिया डाल देंगे और पकाकर हड़प कर जाएंगे। अजी सुनती हो?
2: क्या है?
1: मैं मछली हूँ।
2: ठीक है, कांग्रेचुलेशंस।
0: काश तुम गधे होते, गधे। अरे मैं तुम्हारा भविष्य बांचने जा रहा हूँ और तुम दादुर अर्थात मेंढक की नाई टर्रा रहे हो। शांत रहो।
1: जी मैं एकदम शांत हूँ। हाँ पंडित जी, इतना ध्यान रखिएगा कि कोई लाटरी वाटरी निकल रही हो तो बहुत आहिस्ता से कहिएगा, और अगर खर्च बढ़ने की संभावना हो तो वॉल्यूम जरा ऊंचा कर दीजिएगा ताकि अंदर रसोई में ये जो मोहब्बत है वो भी सुन ले।
0: राम
1: वाची पंडित जी।
0: लिखा है इस मास मंगल शनि पर राशन पानी लेकर हावी है, अर्थात तुम्हें वो धन मिलेगा जिसकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं।
1: हाय सच? अजी सुनती हो? वो जो हमारे मझले साले साहब मुझसे पिछले महीने पैसे उधार ले गए थे, अरे भाई पिक्चर देखने के लिए, वो धन लौट आएगा। बहुत अच्छे पंडित जी, बहुत अच्छे, आगे बढ़ो।
0: अरे महापंडित जी लिखते हैं कि मीन राशि वालों का स्वास्थ्य अर्थात सेहत उत्तम रहेगी, शरीर में नई उमंगे पैदा होंगी और नया खून बनेगा।
1: ठहरो ठहरो पंडित जी, मेरे मसल्स फड़क रहे हैं, हैं, हैं, बाजू पेश रहे हैं, हैं, जरा एक मुझे किंग कॉन्ग, कामा और सैमसन के पते देना, मैं तीनों को इकट्ठा पछाड़ कर नाम कमा लेना चाहता हूँ। पता नहीं अगले महीने सेहत ठीक रहे ना रहे।
0: शांत हो जाओ, शांत, उतावले मत बनो, जरा अपनी जन्मपत्री मंगा लो, तुम्हारे ग्रह तगड़े बन रहे हैं।
1: जन्मपत्री कहाँ से लाऊं?
0: कहाँ से लाऊं? जरा भीतर पत्नी से पूछो, शायद उनके पास हो।
1: वो कोई मेरे घर थोड़ी ही पैदा हुई थी, जन्मपत्री उसके पास होगी, वो भी मेरे जन्म के 4 साल बाद जन्मी थी, काफी जूनियर है।
0: जूनियर है? खैर आगे सुनो, घर में नया मेहमान आएगा
1: जी,
0: काफी चहल पहल रहेगी
1: जी,
0: नया सामान खरीदोगे, सजावट बनी रहेगी, धूमधाम रहेगी।
1: पंडित जी, पंडित जी जरा नजदीक खिसक आइए। क्या क्या मेरे लिए विवाह का जुगाड़ बन रहा है? है लड़की कैसी है, कहाँ तो पढ़ी है, किसी एक्ट्रेस से मिलती जुलती है कि नहीं?
0: अरे चमाखोर, क्या एक पत्नी पर्याप्त नहीं? शिव शिव शिव, आगे सुनो बंधु, किन्हीं कारणों से तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी, सैकड़ों के बीच में नाम ऊंचा हो।
1: हाय पंडित जी, है अपने चरण दीजिए चरण, उनकी गंदगी साबुन से धोकर अपने माथे लगाऊंगा। आप धन्य हो पंडित जी,
0: सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो, अर्थात जीते रहो
1: जी।
0: हाँ भाई, अंत में लिखा है कि इस मास की तारीख 5, 13 और 29 से सावधान रहना।
1: 5 और 13 तो बीत गई पंडित जी, बस 29 आज है, मैं ओढ़कर मच्छरदानी में लेट जाता हूँ, सुरक्षित रहूंगा।
0: अच्छा तो अब चले हैं, कई जिजमानों की अंतिम क्रिया में जाना है
1: जी,
0: वैसे हमें तुम्हारा भी काफी ख्याल है।
1: प्रणाम पंडित जी।
0: आयुष्मान भव।
1: पंडित जी वो छाता मेरा है जिसे आप ले जा रहे हैं।
0: श्याम रंग देखकर ब्रह्म हो गया, हमारा छाता भी काला है।
3: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
1: अजी मैंने कहा कृपया सुनती हो?
2: इतनी ऊंची आवाज तो पड़ोसी तक सुन रहे हैं। आज्ञा दीजिए, बंदी हाजिर है।
1: हाय, आज तुम किस कदर मुगलिया हो रही हो, जाने बाहर कहना ये है कि मैं मछली हूँ
2: तो क्या मैं कढ़ाई में तेल चढ़ा दूँ?
1: देखो जी मजाक ना करो, मेरी राशि मछली है, जरा मेरी छपी हुई रचनाओं वाले अखबार तो ला।

0: मैं आज ही शुभ मुहूर्त में संक्रांत छपाने का प्रोग्राम बनाता हूँ।
1: अखबार?
0: हाँ
1: वे तो सब मैंने रद्दी में बेच डाले।
0: क्या रद्दी में बेच डाले? मर गया सारी रचनाएं गई। पंडित ठीक कहता था कि धन लाभ होगा, हो गया।
1: I'm sorry, मुझे क्या मालूम था कि उनमें आपकी रचनाएं हैं। ये चिट्ठी है आपकी?
0: चिट्ठी? मकान खाली करने का मुकदमा
1: क्या
0: आज ही पेशी है? सैकड़ों के बीच नाम पुकारा जाएगा, दिवाकर नाथ कोई हाजिर है? पंडित सच कहता था कि सैकड़ों के बीच नाम ऊंचा उठेगा।
1: अरे तो निराश क्यों होते हो, एक शुभ समाचार भी है। आज ही शाम की गाड़ी से मेरे बड़े भैया सातों बच्चों और भाभी सहित आ रहे हैं, खूब चहल पहल रहेगी।
0: और बच्चे क्रॉकरी तोड़ेंगे, मैं नई खरीदूंगा, काफी धूमधाम मचेगी। अरे भगवान, पंडित ठीक कहता था। ओह मैं मर क्या, गाड़ का दर्द बढ़ रहा है।
1: अरे आपका तो दाहिनी ओर का चेहरा आपको सूझ गया।
0: पंडित ठीक कहता था, सेहत बढ़ेगी, मेरे दाहिने गाल की सेहत बढ़ती जा रही है, शरीर में नया खून बनेगा, जरा दो चार बोतल खून भी चढ़वा दो।
1: महीने के आखिर 29 तारीख को डॉक्टर भी कैसे बुलाया जाए, फीस भी तो देनी होगी।
0: पंडित ये भी ठीक कहता था, 29 तारीख से सावधान रहना। अरे पंडित तू मुझे मीन यानी मछली बनाकर कांटे में फंस गया। ओहो काश मैं रुक कर पैदा हुआ होता तो सिंह यानी शेर होता, लेकिन मछली।

मछली तो नहीं, झलकी अभी आपने सुनी। लेखक के पी सक्सेना, निर्देशक पुरुषोत्तम दार्वेकर। ये झलकी विविध भारती की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम विविध भारती केंद्र मुंबई से। न्यूज ऑन AIR ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:15 हुए हैं। ये समय होता है फिल्मी गीतों के हमारे कार्यक्रम गीत गुंजन का। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आप आए बाहर आए का ये प्यारा सा गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसको लिखा है आनंद बख्शी ने और सुरों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लेकिन उससे पहले कुछ एक संदेश।
3: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ

0: सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
1: नहीं अछूता हो जिस...
0: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
4: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682705221।
5: हेलो
6: हेलो सुनो टेलीफोन नंबर।
7: माय नंबर इज
8: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
9: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
10: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
9: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
10: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
9: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
10: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
9: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।

लता मंगेशकर की आवाज़ में भी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, फिल्म थी अगर तुम न होते। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। इस गीत को लिखा था गुलशन बावरा ने और सुरबद्ध किया था आरडी वर्मन ने। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं राधा पौडवाल की आवाज में समीर के लिखे इस प्यारे से गीत को, जिसे सुरों से सजाया है आनंद मिलिंद ने। फिल्म आई मिलन की रात।

गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और अब कार्यक्रम में सुनिए क्या कहना फिल्म का ये प्यारा सा गीत अलका याग्निक, सोनू निगम और कुमार सानू की आवाज में। गीत संगीत राजेश रोशन का।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
1: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।

अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज के गाए इसी प्यारे से नगमे के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन अब समाप्त होता है। न्यूज ऑन एआईआर ऐप और 101.9 एफएम पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से, और उसके पश्चात ठीक 9 आप सुनेंगे न्यूज एट 9 हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250

0: 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। ये सभी नागरिक, हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है।
2: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा

0: प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
3: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
5: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या था? मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे।
4: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां

0: बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
1: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाके ठीक ठाक रह रहा हूँ।
0: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders. And Defense Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening

0: आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM और न्यूज वन AIR ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी गजलों का कार्यक्रम महफिल गजल। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल, लेकिन उससे पहले कुछ एक संदेश।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com। सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
1: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
2: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
1: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।

0: आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम तिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682705721।
1: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।

जगजीत सिंह की गाई सी मीठी सी गज़ल के साथ ही गैर फिल्मी गज़लों का कार्यक्रम महफिल गज़ल अब समाप्त होता है। न्यूज़ ऑन AIR ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 9:30 हुए हैं। आप सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है आपका रेडियो दोस्त विवेक सोनी। कार्यक्रम में आपके फ़ोन कॉल्स को लेने का सिलसिला हम शुरू करें, उससे पहले कुछ एक संदेश।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596240 और 7800-37-2222।
2: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा

0: क्या है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
1: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
0: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
1: जी हाँ, और वो है योग।
0: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
1: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
0: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
1: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
0: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
1: योग करिए, निरोग रहिए।
2: जी हाँ, कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है आपका रेडियो दोस्त विवेक सोनी। जी हाँ, फोन लाइनें खुली हुई है, हमारा नंबर आपको पता ही है 73-76-80-40-90। और देखिए कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो, प्लीज अपना नाम बताएं। जी नाम बताइए।
3: नमस्ते सर।
2: नमस्ते जी, अपना नाम बताएं।
3: मनीषा,
2: हाँ, कहाँ से बोल रही हैं? और गाना कौन सा सुनेंगे? प्रोग्राम में गाना आप कौन सा सुनना चाहते हैं?
3: वो
2: जी,
3: तू महलों की रानी और मैं प्यार मस्ती।
2: हाँ, फिल्म का नाम बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 21 पिक्चर का है ये गीत। नहीं तो ऐसे तो हम नहीं खोज पाएंगे इसको। और कोई फिल्म बताइए।
3: बीगा फिल्म का मैंने कहा
2: वो
3: नाम।
2: जिगर फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे, बिल्कुल सुनवाएंगे। जिगर फिल्म का गाना है हमारे पास। और बताइए आप क्या करते हैं?
3: पढ़ाई।
2: किस क्लास में पढ़ रहे हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं? सेवेंथ में पढ़ते हैं। और तो अकेले ही आप रेडियो सुन रहे हैं और कोई भी आपके साथ है सुनने वाला? आपके साथ और कोई भी सुनने वाला है रेडियो प्रोग्राम जो चल रहा है? हाँ, कौन कौन सुन रहा है?
3: बेबी है, मम्मी है।
2: अच्छा अच्छा, ठीक है। तो लीजिए, हम आपको ये फिल्म जिगर का प्यारा सा गीत सुनवाने जा रहे हैं।
3: आप ठीक हैं सर?
2: हाँ हम ठीक हैं, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। और आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यारा सा गीत, नमस्ते जी, गीत गया आप तक।

0: सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो, अपना नाम बताइए, कहाँ से? हाँ नमस्कार जी,
1: मेरा नाम सुमन मोहरी है, मैं त्रिपुरा से बात कर रहा हूँ।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं? त्रिपुरा से।
1: जी बिल्कुल।
0: अपना नाम एक बार फिर से बता देते तो अच्छा होता।
1: जी मेरा नाम है सुमन मोहरी।
0: सुमन मोहरी
1: जी, बिल्कुल सर।
0: बहुत दूर से आपने कॉल किया है, हमारे प्रोग्राम वहाँ पे अच्छी तरह सुनाई देता है आप लोगों को?
1: जी एक्चुअली मैं न्यूज़ एयर में सुनता हूँ।
0: और ही और बहुत बढ़िया सुनाई देता
1: हूँ। डायरेक्ट नहीं आते
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, प्रोग्राम में गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: हाँ, मैं इस प्रोग्राम में अंधा कानून फिल्म से गाने का रोल है, ये अंधा कानून है, किशोर जी का गाया हुआ
0: जी,
1: वो सुनना चाहता हूँ सर। और मैं कुछ दोस्तों को याद करना चाहता हूँ, क्या नाम बोल सकते हैं?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, आप याद कर सकते हैं अपने दोस्तों को।
1: जी जी, त्रिपुरा से है विश्वजीत पाल है, और शिमला से राकेश जी, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह जी है, और सारे अयोध्या सुनने वालों को डेडिकेट रहेगा और आपको भी डेडिकेट रहेगा सर।
0: देखिए ऐसा है, हम ये किसी दूसरे का बनाया गीत किसी को डेडिकेट नहीं किया जा सकता। हाँ, उनके जो गाना हम सुन रहे हैं वो फरमाइश कह सकते हैं कि हम, उनकी भी फरमाइश यही है जो मैं गाना सुनना चाहता हूँ, है ना?
1: जी जी बिल्कुल, अंधा कानून का फिल्म का गाना है, आपका आवाज बिल्कुल साफ सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है, तो अंधा कानून फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, और आपने इतनी दूर त्रिपुरा से हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: ठीक है सर, थैंक यू सर, शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि।

0: सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो
1: सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं वो भी बता दीजिए।
1: संतोष कुमार मौर्य, ग्राम पलिया भानपुर पोस्ट गोहटा जिला अयोध्या से।
0: संतोष जी कैसे हैं?
1: ठीक है सर।
0: गाना कौन सा सुनना चाहते हैं प्रोग्राम में?
1: आज हमको सुना दीजिए जानवर फिल्म का कोई भी गाना।
0: जानवर फिल्म का कोई भी गाना। इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है
1: जी, गर्मी ताबड़तोड़ पड़ रही है।
0: आपने अपने घर के बाहर जानवरों के लिए पानी रखा है कि नहीं रखा है?
1: जी जी जी, अभी छत पे लेटे हैं, फ्रिज में पानी बोतल लेकर चढ़े हैं, क्या करें।
0: नहीं, वो तो आप अपने लिए ले आए हैं ना, जो बाहर जानवर हैं जिनको
1: बाहर जाने से पहले बोतल में पानी ले लेना पड़ता है।
0: आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आपने अपने घर के बाहर जानवरों के लिए पानी रखा है कि नहीं रखा है?
1: नहीं, वो तो हमेशा भरा रहता है।
0: भरा रहता है जी, बहुत अच्छी बात है। तो जानवर फिल्म का ये प्यारा सा गीत है और मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ, और आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। कहें कि अभी ना कहें, कुछ और बात करनी है?
1: कल ही मेरी कॉल लगी थी।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो कल आपकी कॉल लग गई थी तो आज आपको करना नहीं चाहिए था? थोड़ा सा औरों को भी मौका देते है ना। चलिए ठीक है, तो आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म जानवर का ये गीत अलका याग्निक, सोनू निगम और जसपिंदर नरूला और साथियों की आवाज में पहुंच गया आप तक।

0: जी हाँ, कार्यक्रम सजीव फोन इन हेलो अयोध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो जी, अपना नाम बताएं। जी हेलो।
1: हाँ जी, मेरा नाम चंद्रशेखर मिश्रा है।
0: चंद्रशेखर
1: ग्राम शेखपुर। हाँ मिश्रा, ग्राम शेखपुर जिला बस्ती।
0: गाना कौन सा सुनना चाहते हैं चंद्रशेखर जी?
1: क्रांति क्रांति पिक्चर का सुना दीजिए सर।
0: अच्छा जी, और परिवार में कौन कौन है?
1: एक लड़का है, मियाँ बीबी हम हैं, दो लड़कियां हैं।
0: जी बहुत अच्छी बात है। तो क्रांति फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं आज?
1: भाई चना जोर गरम।
0: चना जोर गरम, आपको चने बहुत अच्छे लगते हैं क्या? और क्या करते हैं वैसे? जी
1: हाँ सर।
0: हाँ हम पूछ रहे हैं क्या करते हैं आप?
1: हम तो खेती बाड़ी करते हैं सर।
0: अच्छा, तो इस समय कौन सी फसल आपने उगा रखी है अपने खेत में?
1: सर इस समय तो खाली गन्ना है और कुछ नहीं, चरी है, गन्ना हरी चरी भैंस के लिए और गन्ना है बस।
0: जी जी जी, चलिए। तो और खेती बाड़ी के अलावा और खाली समय कैसे व्यतीत करते हैं? रेडियो सुन के और कुछ?
1: हाँ सर, यही रेडियो वेडियो सुनते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता है, बस यही हेलो फरमाइश में रह जाते हैं हम।
0: हाँ हाँ,
1: फिर में नहीं टाइम मिलता।
0: अच्छा, खेती बाड़ी एक 24 घंटे व्यस्त रहने वाला हमें लगता है कि कार्यक्रम होता है, नहीं?
1: हाँ सर, जो है दो चार घंटे सुबह, दो चार घंटे शाम को, बीच में जो है टाइम मिलता है तो वही हेलो जो है।
0: हाँ हालांकि अगर
1: तो उसमें थोड़ा आराम करें कि खाना पीना खा के।
0: जी जी जी
1: हाँ, अभी टाइम थोड़ा जो ना खाना पीना खा के अपन तक चले आए तो मोबाइल लेके अपना सोते हैं।
0: हालांकि एक बात ये बड़ी ये भी है कि अगर खेती बाड़ी ना हो, किसान भाई अनाज ना उगावे तो फिर हम लोग तो मतलब संसार के लोग तो भूखे ही मर जाए, नहीं?
1: सही बात।
0: चलिए खैर, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, नितिन मुकेश और साथियों की आवाज़ में फिल्म क्रांति का ये प्यारा सा गीत जा रहा है आप तक। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: जी हाँ, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म क्रांति से, और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं, हमें लगता है ये अंतिम कॉलर होंगे। जी हाँ, प्लीज अपना नाम बताइए।
1: सर नमस्ते सर, मेरा नाम महेंद्र गुप्ता है।
0: महेंद्र गुप्ता जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर हम बोल रहे हैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से, पूरे बार हमारा यहाँ बाजार है, पूरे बार के पास में यहीं पे घर पड़ता है।
0: गाना कौन सा सुनना चाहते हैं महेंद्र जी?
1: सर फिल्म का नाम है कभी कभी और गाने के बोल हैं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।
0: आपके दिल में क्या ख्याल आता है कुछ हमको भी बताइए।
1: ख्याल क्या आता है? ख्याल तो आता ही रहता है, ड्यूटी पे है।
0: अच्छा अच्छा,
1: आज गाड़ियां कम हो रही है।
0: अच्छा अच्छा, कौन सी ड्यूटी करते हैं?
1: सर रेलवे में।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपके दिल में ख्याल आता हो कि मैं रेल लेकर के कभी कभी उड़ जाया करूं, ऐसा भी कुछ होता है? चलिए
1: तो ये सॉन्ग जो है हमारे एस एस साहब जो दर्शन नगर के हैं, राजकुमार भाई साहब और जितेंद्र सर, केपी सर, विशाल और धर्मेंद्र, सारे लोग सुन रहे हैं सर।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सब की फरमाइश पर, जो फरमाइश आपने की वो आप उन सब की तरफ से की है। आप सब की फरमाइश पर फिल्म कभी कभी का ये प्यारा सा सॉन्ग जा रहा है आप तक। एंजॉय कीजिए इस प्यारे से नगमे को। आपने बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ओके, थैंक यू सर।

खेल दर्पण कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं अल्पना श्रीवास्तव। झांसी शहर, विशेष रूप से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मभूमि होने के कारण पूरे देश में खेल नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास, अनुशासन, स्वास्थ्य और रोजगार का माध्यम भी बन रही है। झांसी में खिलाड़ियों के लिए कई मैदान और प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए नए स्टेडियम और खेल परिसर विकसित किए जा रहे हैं। झांसी के मोठ गांव में पहला मल्टीपर्पज ग्रामीण स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। यहां लड़के और लड़कियों के लिए खेल उपकरणों की व्यवस्था भी की गई है। यहां पर मल्टीपर्पज हॉल में बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, कुश्ती और कबड्डी, जिमनेजियम हॉल में ओपन जिम और टेबल टेनिस कोर्ट, उपकरण के रूप में जेवलिन, शॉटपुट, डिस्कस, हैमर, वेट लिफ्टिंग हॉल की भी सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मल्टीपर्पज मिनी स्टेडियम का भी भूमि पूजन हो चुका है। यहां पर 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक सहित इंडोर गेम्स की सुविधा होगी। झांसी की यदि हम बात करें तो यहां स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला एथलेटिक्स स्टेडियम, डे नाइट मैच की सुविधा वाला एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम, फ्लड लाइट युक्त क्रिकेट ग्राउंड और दो बड़े जिमनेजियम हॉल

0: है। झांसी विकास प्राधिकरण ने भी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया है, जबकि सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में क्रिकेट का बड़ा ग्राउंड है जहां पवेलियन का भी निर्माण कराया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बॉक्सिंग हॉल, कुश्ती हॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, वातानुकूलित जिम, स्विमिंग पूल, क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा सभी प्रमुख खेलों के प्रशिक्षकों की नियुक्ति, बॉक्सिंग और हॉकी खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा भी है। भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों की स्थिति वर्तमान समय में काफी मजबूत और प्रभावशाली मानी जाती है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पिछले वर्षों में विश्व क्रिकेट टीम में विश्व विजेता बनकर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। टीम ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और नेतृत्व तीनों क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। आज हम बात करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उभरती हुई खिलाड़ी क्रांति गौड़ से। उन्होंने अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में साथ ही साथ बुंदेलखंड में नई पहचान बनाई है। क्रांति जी, गांव से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा, और साथ ही आप ये बताइए कि आपके घर परिवार गांव में कितनी खुशी थी?
1: मतलब छोटी थी जब, उस टाइम पे तो मैं गांव में रहती थी तो उधर ऐसा क्रिकेट था नहीं उस टाइम पे पहले, और लड़कियों का तो ऐसा था कि लड़कियों को निकलना भी थोड़ा सा बाहर, अगर कोई जा रहा है ना तो किसी को साथ नहीं भेजेंगे, तब लड़कियां जाती हैं। तो घर के सामने एक ग्राउंड है, उधर क्रिकेट चल रहा था, तो लड़कियां सब अपना गेम खेल रही थी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, तो भैया लोग खेल रहे हैं तो मैं जाऊंगी उनके साथ खेल रहे। फिर टूर्नामेंट हुआ था, ऊपर टूर्नामेंट, तो दो टीमें आई हुई थी, एक मैच कराया था उन्होंने गर्ल्स का, तो दो टीमें आई हुई थी, नौगांव और सागर, तो सागर की टीम में एक लड़की कम थी, तो मैं बस गई थी, गर्ल्स का मैच था, तो ऐसे ऐसे घूम रही थी, तो उन्हें आके जो सागर टीम के कोच थे सोनू सर, उन्होंने आके मुझसे पूछा कि तुम खेलोगी क्या क्रिकेट, तो मैंने कहा हाँ सर मैं खेलूंगी। फिर हमारे वहाँ के जो पुलिस में स्टाफ में एक भैया है, उन्होंने बोला हाँ सर इसको खिला लो, बहुत अच्छा खेलते हैं। तो फिर वो भैया लोग गए, मेरे को यूनिफॉर्म दिलाया, और वो मेरा फर्स्ट मैच था लेदर का, और उस मैच में मैं मैन ऑफ द मैच थी।
0: गांव से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचना, ये सफर आपका कैसा रहा, और आपके घर परिवार और गांव को कितनी खुशी मिली जब आपका वहां चयन हो गया?
1: जब मैं गांव गई थी ना, तो उससे पहले मुझे मतलब WPL के लिए जाना था, तो हमारा सीनियर वनडे बोर्ड के मैचेस थे, तो हम लोग फाइनल जीते हुए थे, तो उस फाइनल मैच में मैंने बेंगाल के अगेंस्ट चार विकेट लिए थे, चारों बोल्ड लिए थे और चारों बोल्ड विकेट थे, तो सबको ऐसा पता चला, क्योंकि जब मैं वनडे मैचेस खेल रही थी तभी ऑक्शन चल रहा था, यूपी वॉरियर्स टीम ने मुझे लिया था, तो एक तो विनिंग टीम, एक तो मैच जीत के हम लोग आए, और फिर एक और खुशी लेके आए कि WPL में सिलेक्शन हुआ, तो जब पता चला हुआ में सबको, तो सब उसी मतलब मेरे वेलकम के लिए सब रेडी थे, फिर कब मैं आऊँ उसका मुझसे सब लोग मिले, लाइक प्राउड था कि हाँ कुछ तो, सबको खुशी थी, ऐसा नहीं कि कोई भी चीजें बोली भी हुई थी, मेरी फैमिली चीज में शामिल हुए वो भी इस चीज में खुश थे। जैसे मैं उधर पहुंची फिर सबके माहौल देखा, सबने टीका माला सब करा, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, और मेरे को बहुत प्राउड था कि मैं भी नहीं रुकी, मुझे फैमिली ने रोका भी नहीं उस चीज के लिए, तो जो मैंने आज उनको करके दिया, तो प्राउड फील कर रही थी उस टाइम।
0: भारतीय टीम में चयन की खबर मिली तब सबकी क्या प्रतिक्रिया थी?
1: जब सीनियर T20 मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं गुहारा में ही थी उस टाइम में, मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो अचानक से एक दीदी उनका फोन आता है कि भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है। मैंने कहा मेरे पास लिस्ट नहीं आई, फिर उन्होंने मेरे को लिस्ट भेजी, जब मैंने लिस्ट देखी तो मेरे को, फिर मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, मैंने कहा अब घर जा रही हूँ, हो गई प्रैक्टिस, सबको बताऊंगी घर पे। जैसे घर पे जाके बताया सबको पता चल गया, गुहारा मतलब ऐसा कोई बड़ा शहर तो नहीं है, गाँव टाइप में है, फिर जैसे सुबह सबको पता चला कि क्रांति के सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, तो जो लोग भी उधर पे हैं बहुत सारे लोग आए घर, और उधर के जो न्यूज वाले भैया लोग सबको पता चल गया था, क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, उधर जाऊंगी मैं खेलने, तो कुछ नया सीख के आऊंगी और कुछ अच्छा वहाँ पे करके आऊंगी। फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने टीम को 100% दिया है, फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने ऐसा था कि मेरे को एक वो था कि बस टीम को जिताना है, फाइनल मैच में भी मैंने चार विकेट लिए, बड़े प्लेयर्स थे चारों, बट ऐसा लग रहा था कि बस जिताना है और कुछ नहीं।
0: दूसरे वरिष्ठ खिलाड़ियों से आपको सहयोग मिला?
1: जब उधर मेरे को जाना था तो एक्साइटेड थी, पहले तो फॉरेन प्लेयर से मिलूंगे और बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं जो सब मुझे मिलेंगे, उनसे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। तो मतलब ऐसा था वहाँ पे कि पहले तो हम लोग गए, पहले तो हमारे कैंप्स लगे कुछ दिन सूरत में, तो कैंप में जो मतलब ऐसा लग रहा था कि जो मेरे को पूछना चाहिए वो मैंने खुलकर पूछा, ऐसा नहीं लगा कि। और उधर जो कोचेस थे मैम, उनने मेरे को बताया सीनियर प्लेयर्स हैं उनसे मुझे कुछ पूछना है, तो उनसे भी मैं पूछती

0: तो वो भी मेरे को बता रहे हैं। तो एक तो मैंने सारे मैचेस प्लेइंग करे हैं, सारे मैचेस मैंने खेले थे, तो अगर ऐसा था मैं बॉल डाल रही हूँ अगर मेरे को एक ओवर में रन पड़ते हैं तो मेरे को ना वो सेट सा लगे, रन पड़ गए, मेरा मूड थोड़ा सा ठीक। तो मेरे ना बड़े प्लेयर्स आ रहेंगे वो मेरे को समझा रहे थे, सीनियर प्लेयर, कि ठीक है तुम बॉल डाल रही हो, वो बैटिंग कर रहे हैं, वो भी तो बैटिंग करने आए हैं, अगर तुम बॉल डाल रही हो तुम विकेट लोगे वो रन बनाएंगे, क्रिकेट का काम भी है मतलब नेक्स्ट ओवर लेके आना और सोच के डालना बोलते। और उन्होंने ऐसे हमेशा यही बोला है, फेस में स्माइल रखना चाहे मैच का रिजल्ट कुछ भी हो।
1: धन्यवाद क्रांति जी, अपना और देश का नाम यूं ही रोशन करती रहेंगी। क्रांति कौर के कोच राजीव बिलथरे ने उनके खेलों को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजीव बिलथरे मध्य प्रदेश के छतरपुर के प्रसिद्ध क्रिकेट कोच और जिला क्रिकेट संघ के सचिव हैं। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम बात करते हैं राजीव बिलथरे जी से। आपका स्वागत है राजीव जी।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक कोच के रूप में आपकी क्रिकेट की यात्रा कैसे शुरू हुई।
2: जी सबसे पहले छतरपुर में 2013 में जब हमने यहाँ पर एकेडमी शुरू की उस समय यहाँ लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना टोटल बंद हो चुका था। तो हम तीन चार लोगों ने कोशिश की कि यहाँ बच्चों को सिखाना शुरू करें, तो वहाँ से हम लोगों ने सिखाना शुरू किया और आज इंडिया लेवल पे क्रांति गौड़ मेरी स्टूडेंट खेल रही है और एक शुभम शुक्ला वो KKR IPL खेल रहा है।
1: अच्छा,
2: तो बड़े लेवल पे हाँ खेल रहे हैं और एक लड़की अभी रिसेंटली MPL जो होता है मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग उसमें ग्वालियर की टीम से खेल रही है रिया यादव।
1: युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
2: एक तो क्या है मेरा बैकग्राउंड पूरा स्पोर्ट्स का ही है, क्वालिफिकेशन पूरी स्पोर्ट्स की है, कॉलेज में जो जॉब है वो भी स्पोर्ट्स की है, तो खेल से जुड़े हुए काम तो लगातार हम कर ही रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि छतरपुर से कोई रणजी ट्रॉफी खेले
1: जी।
2: तो एकेडमी स्टार्ट करने के बाद इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया कि एक रणजी ट्रॉफी हमको छतरपुर से खिलाना है, क्योंकि वो छतरपुर से कोई खेला नहीं था अभी तक, लेकिन रणजी ट्रॉफी से ऊपर इंडिया लेवल तक जब ये लड़की खेल गई तो अभी लगता है कि जो मेहनत है और जो परिश्रम किया वो सफल हुआ है,
1: पूरे बुंदेलखंड को एक नई पहचान मिल गई। राजीव जी पहली बार क्रांति गौड़ की प्रतिभा को आपने कब और कैसे पहचाना?
2: क्रांति गौड़ 2017 में हमारी साइंस स्पोर्ट्स अकेडमी की टीम एक टूर्नामेंट खेल रही थी, गर्ल्स का टूर्नामेंट, उसमें इसके फादर लेके आए थे कि सर हमारी बच्ची गांव में ये लड़कों के साथ ऐसी खेलती रहती है टेनिस बॉल से, तो हम चाहते हैं कि आपके मार्गदर्शन में रहे और सीखे। तो उनको हमने कहा कि आप कल छतरपुर लेके आ जाइए तो इसका एडमिशन कर देते हैं और प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। तो वो नेक्स्ट डे उसको लेके आ गए छतरपुर।
1: उस समय आपको लगा था कि खिलाड़ी एक दिन भारतीय टीम तक पहुंचेगी?
2: हाँ देखिए उस समय वो थी एक ऑर्डिनरी प्लेयर, टेक्निकली वो तैयार नहीं थी और फैमिली बैकग्राउंड भी उसका बहुत उस समय आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा था उसको, हम फीस नहीं दे पाएंगे एकेडमी की। हमने कहा ठीक है, तो हमने उसकी फीस के लिए बोल दिया कि ये जब तक हमारे पास रहेगी तो फ्री इसको सिखाएंगे।
1: जी आपने सहयोग किया।
2: हाँ तो आज तक उससे कोई फीस नहीं ली और उसके रहने की भी समस्या रही कि अब जब वो फीस नहीं दे सकती थी तो खाना रहना कैसे अफोर्ड करेगी।
1: जी हाँ।
2: तो करीब एक हफ्ते वो हमारे घर में रही, ऐसे बड़ा मतलब उसका जीवन तो बड़ा संघर्षमय रहा है।
1: जी उनके संघर्ष के दिनों की कोई यादगार घटना हो तो बताइए।
2: संघर्ष के दिनों में यादगार तो ये है कि उसके पास शूज नहीं थे शुरू में, स्टार्टिंग में प्लेस तो हमने शुरू में ही दे दी थी उसको लोअर टी शर्ट, तो उसका बड़ा मन था कि एक स्पाइक जो बॉलर के स्पाइक होते हैं,
1: अरे वाह,
2: हाँ तो वो उसको जब हमने लाके दिए थे तो वो बहुत खुश हुई थी, ऐसा लगा था कि बहुत बड़ी चीज उसको मिल गई।
1: जी क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता आपको क्या लगती है?
2: उसके अंदर जो स्पीड है, गति, वो आमतौर पे लड़कियों में होती नहीं है, शरीर में मूवमेंट और स्पीड दो चीजें उसकी बहुत अलग है, हट के देखेंगी तो आपको अलग ही उसकी स्पीड अलग दिखेगी, बॉल के पीछे जब भागेगी, रनअप पे जब भागेगी, या बॉल की उसकी जो स्पीड है वो उसके शरीर की स्पीड से ही कन्वर्ट हो रही है,
1: मतलब एक पता चलता है कि एक जुनून है उसको खेल के प्रति।
2: हाँ नहीं जुनून तो है ही,
1: तभी अपने आगे पहुंची है।
2: जी जी जी।
1: ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को क्रिकेट में आगे बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती होती है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
2: देखिए हम यहाँ पर जो एकेडमी में बच्चे हैं, लड़कियां हैं जो अब अभी आज की डेट में तो पूरे मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की भी लड़कियां हैं, करीब 40-45

0: 40 लड़कियां रेगुलर ग्राउंड पर हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा परेशानी ये जाती है कि वो घर से बाहर निकालने में थोड़ा ट्रेडिशनल होते हैं, लेकिन जब से ये क्रांति गौड़ खेली है तब से ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत सारी लड़कियां आई हैं, और क्रांति भी अब जैसे एकेडमी की जो लड़कियां हैं उनको सपोर्ट करती है, हमें पता भी नहीं लगता और लड़कियों को उपलब्ध करा देती है।
1: एक खिलाड़ी को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कोच की क्या भूमिका होती है?
0: बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं लेकिन अच्छा नहीं होता है, तो उस समय जो प्लेयर है खिलाड़ी है वो थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान रहता है, तो उस दौरान कोच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि किस तरीके से वो उसको समझाए, उससे बात करे, मतलब मोटिवेट उसको करते रहना पड़ता है बच्चे को।
1: क्रांति गौड़ जब भारतीय टीम का हिस्सा बनी तब आपने कैसा महसूस किया?
0: बहुत खुशी हुई। रात को करीब 10:30-11 बजे उसको कॉल आया श्रीलंका टूर के लिए
1: जी।
0: एक प्लेयर उसमें इंजर्ड हुई थी इंडिया टीम की, तो उसकी जगह इसको लिया गया था, और 10:30 बजे उसको कॉल आके ये कहा गया कि आपको 2 बजे निकलना है भोपाल के लिए, भोपाल से आप फ्लाइट है मॉर्निंग में।
1: कितना कम समय मिला जी।
0: परेशान थी थोड़ा कि भोपाल कैसे पहुंचेंगे। अभी भी वर्ल्ड कप में जब भी उसका सिलेक्शन हुआ तुरंत फोन आया था। अच्छा। सर बधाई हो।
1: युवा कोच और खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, अच्छा खिलाड़ी बनना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है, वैसे एक अच्छा कोच बनना बहुत आसान नहीं है, और जो बनना चाहते हैं वह फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो कठिन भी नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत समर्पण और बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत रहती है, और कोच जितना ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, उसके बच्चे उतने अच्छे परफॉर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: दौड़ भाग वाले खेल स्वस्थ एवं पुष्ट शरीर वाले खिलाड़ियों के लिए होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से दिव्यांग यदि इन खेलों में दमखम दिखाए तो आश्चर्य स्वाभाविक है। विशेषकर पैरों से दिव्यांग खिलाड़ी क्रिकेट खेले तो उनकी विशिष्टता खास हो जाती है। पिछले दिनों झांसी के राजकीय इंटर कॉलेज स्थित खेल मैदान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के दिव्यांग खिलाड़ियों की व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता हुई। व्हील चेयर क्रिकेट को बढ़ावा देने का श्रेय झांसी के झाकरी निवासी सोमजीत सिंह को जाता है। पैदा होते ही उन्हें स्पाइन ट्यूमर हो गया। जब 3 माह के हुए तो ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। 10 वर्ष की उम्र में ट्यूमर उनका वापस आ गया तो शरीर को लकवा मार गया। कमर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। व्हील चेयर पर बैठ कर ही टीवी पर मैच देख कर वे शेडो प्रैक्टिस करने लगे। सोमजीत ने अपने जैसे लोगों की टीम बनाई। प्रयागराज में 3 दिसंबर 2015 को पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया। बाद में बीसीसीआई ने व्हीलचेयर टूर्नामेंट को मान्यता दी। सोमजीत वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान चुने गए। ये टीम नेशनल चैंपियन बनी तो उन्हें स्थायी रूप से भारतीय टीम की कप्तानी सौंप दी गई। हमने बात की रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर अभय यादव जी से।
2: मेरा नाम अभय यादव है, मैं झांसी का रहने वाला हूँ और रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से रन कर रहा हूँ।
1: अभी हम जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों व्हीलचेयर क्रिकेट हुआ था तो उसके बारे में कुछ बताएंगे?
2: जी, व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट जो हुआ था उसका नाम था वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप
1: जी।
2: की जो है प्रतिभागी जो टीमें थी वो यूपी, दिल्ली, हरियाणा और एमपी, यहाँ के टीमों ने उसमें प्रतिभागी की थी इस प्रतियोगिता में, और इसका जो फाइनल हुआ था वो यूपी वर्सेस दिल्ली के बीच में हुआ, जिसकी विजेता टीम रही थी वो यूपी थी।
1: सामान्य आदमी दौड़ भाग कर लेता है, स्वस्थ होता है, उसके लिए तो आसान होता है, लेकिन जो खेलते हैं दिव्यांग हैं जो, तो वो देखने में आपको कैसा लगा?
2: देखने में ये बहुत ही उत्कृष्ट था, और कहीं ना कहीं झांसी वासियों के लिए ये एक नया टूर्नामेंट था कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात ये थी झांसी में एक मिनी स्टेडियम बना जिसमें लाइट लगी हुई थी, रात की चकाचौंध दूधिया रोशनी में ये टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें कि हमारे इंडियन टीम के प्लेयर्स और कैप्टन
1: जी
2: सोमजीत सिंह उन्होंने तक इसमें आके प्रतिभा।
1: हाँ जी, कि जैसे कि पता चला कि सोमजीत सिंह जी है, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी और बीसीसीआई द्वारा मान्यता भी मिली हुई है इसे, तो जैसे और जगह के खिलाड़ी आए थे क्रिकेट के लिए तो वो लोग का, खिलाड़ियों का आपस में किस तरह का व्यवहार रहता है?
2: बहुत ही साधारण और बहुत सिंपल रहते हैं, अपने गेम से उनको मतलब है, समय से समय अवधि इसमें थोड़ी सी

0: ज्यादा ले लेते हैं, परंतु अपने गेम को बहुत ही दृढ़ संकल्प के तौर पर ये आपस में करते हैं खिलाड़ी कहीं ना कहीं, और उस मेहनत को ग्राउंड पर उतार के लेके आते हैं और लोगों को दिखाते हैं खेल।
1: जैसे हमारी सामान्य क्रिकेट से कुछ अलग नियम होते होंगे?
0: सामान्य क्रिकेट से अलग नियम होते हैं, उनके बाउंड्री छोटी होती है और एम्पायर्स वगैरह उनके रहते हैं, बट हल्के से कुछ रूल्स में चेंज किए।
1: तो रन जब ये लेते हैं तो किसके व्हीलचेयर के साथ ही जाते हैं?
0: व्हीलचेयर के साथ में ही जाते।
1: ये हमारे यहाँ झांसी में कब से शुरू हुआ है?
0: ये झांसी में इसका जो टूर्नामेंट हुआ था ये हुआ था 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ था वैसे ये टूर्नामेंट
1: जी,
0: और इसका जो मैच था वो 27 फरवरी को झांसी में हुआ था। 27 फरवरी को ये मैच हुआ था जिसमें कि दिल्ली ने बनाए थे 12 ओवर में 68 रन, और उत्तर प्रदेश ने बनाए थे 10वीं ओवर की पहले ही गेंद पे इसका लक्ष्य को हासिल करते हुए 69 रन बनाए थे और 3 विकेट के नुकसान पे।
1: बहुत अच्छी बात है तो कि जो उस तरह के खिलाड़ी,
0: जो मैच था वो अपने झांसी में ही हुआ था।
1: आगे जो खिलाड़ियों का क्या भविष्य है इसमें?
0: बिल्कुल, खिलाड़ियों का भविष्य इसमें बहुत ही शानदार है, क्योंकि सरकार इसमें मदद कर रही है कहीं ना कहीं, खेल को प्रोत्साहन दे रही है, जो इस खेल को खेल रहे हैं दिव्यांग लोग हैं उनको आर्थिक सहायता भी दे रही है, जिससे कि दिव्यांगों में खेल के प्रति एक उत्सुकता भी है और कहीं ना कहीं उम्मीद भी है कि अगर हम इस दिव्यांग लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं अगर इसको खेलते हैं तो फाइनेंशियली उनको सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, साथ में नाम और शोहरत भी।
1: जी हाँ, प्रयागराज में 3 दिसंबर 2015 को पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया गया था।
0: जी जी,
1: और तब से लगातार ये मैच खेला जा रहा है।
0: और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको
1: जी,
0: कि ये जो अपना यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था इसमें अनिल सिंघानिया जी जो थे प्लेयर रहे वो टॉप स्कोरर रहे थे फाइनल मैच में, उन्होंने 19 बॉल में।
1: जी बहुत बड़ी बात, और वाकई में ये जो मैच है देखने वाले और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक अलग ही इसमें उत्साह होता है और एक अलग ही अनुभव होता है मेरे।
0: बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस दिन मैं बता सकता हूँ मैं उपस्थित था ग्राउंड पे
1: जी,
0: लगभग शाम का समय था और अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 लोग दिया रोशनी में बीच शहर के अंदर जब उनका मैच हुआ तो न्यूज रिपोर्टर्स से लेके लोकल पब्लिक से लेके पहली बार कहीं ना कहीं झांसी में इसको सौभाग्य था कि वो लोग आए और खेल रहे थे, देखने का उनको मौका मिला कि कैसे दिव्यांग क्रिकेट होता है
1: जी।
0: कहीं ना कहीं लोगों ने इसको
1: क्योंकि विशेषकर पैरों से जो दिव्यांग है और वो खिलाड़ी यदि क्रिकेट खेलते हैं तो एक विशिष्टता, एक खास खेल तो हो ही जाता है वो। अभय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, और हम आपके साथ सभी को शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, तैराकी के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि तैराकी केवल एक खेल नहीं बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम है। ये ऐसा व्यायाम है जिससे पूरे शरीर की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में मदद मिलती है। तैराकी हृदय और फेफड़ों को मजबूत बनाती है, सही शक्ति बढ़ाती है और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक मानी जाती है। यही कारण है कि आज हर आयु वर्ग के लोग इसे अपना रहे हैं। खेल के रूप में तैराकी खिलाड़ियों में धैर्य, संतुलन और एकाग्रता विकसित करती है। ओलंपिक से लेकर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक भारतीय तैराक लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए खेलों को जीवन का हिस्सा बनाएं, और इस विषय में हमने बातचीत करी।
2: मेरा नाम किशोर कुमार मिश्रा, मैं ध्यानचंद स्टेडियम में विगत 2004 से काम कर रहा हूँ। बराबर, मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैराकी में भाग लिया। इसके अलावा मैं बीकेडी में इंटर यूनिवर्सिटी गया।
1: अच्छा, ध्यानचंद स्टेडियम में स्विमिंग की प्रशिक्षण की क्या विशेषताएं हैं?
2: जो छोटे 5 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को जो हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और बाकी जो सीखना चाहते हैं उनको भी हम सिखाते हैं।
1: अच्छा, बच्चों को तैराकी सिखाने की शुरुआत किस उम्र से करनी चाहिए?
2: वैसे तो 5 साल है, बच्चे की लंबाई अगर थोड़ी सी और बड़ी हो तो 4 साल का बच्चा चल जाता है। हमारे सिखाए हुए बच्चे झांसी के नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर इस समय अपना योगदान दिए हैं, जिसमें की हमारी शिक्षिका दिया यादव हसारी की रहने वाली और इस समय वो विदेश में अपना कैंप करने गई हुई है। अभी लगभग 16 वर्ष और इस समय वो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल में अपनी स्विमिंग का जोर दिखा रही है।
1: बहुत अच्छी बात है। तो आज के युवाओं में स्विमिंग को लेकर कितना उत्साह दिखाई देता है?
2: बहुत, आज तो

0: हमें जब स्विमिंग सीखने जाते थे तो हमारे माता पिता मारते भी थे कि नहीं तुम डूब जाओगे ये
1: पानी से दूर रहिए। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने।
0: और आज समय ये है कि माँ बाप खुद स्वयं अपने बच्चों को लेकर हमारे ध्यान से स्टेडियम आते हैं, अपने बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं कि नहीं सर हमारे बच्चे को अच्छा से अच्छा सिखाओ, अच्छे से अच्छा उसको बनाने की। तो हम अपनी तरफ पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे ध्यानचंद स्टेडियम से बिना ये भी बच्चा बिना सीखे वो स्टेडियम से बाहर ना जाए।
1: अच्छा प्रशिक्षण देते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
0: कुछ नहीं सिर्फ ध्यान देना पड़ता। अगर वो बच्चा सीखता है तो जैसा जैसा हम बताते जाए वैसा वैसा वो करता जाए तो ना तो हमें सिखाने में दिक्कत होगी और ना बच्चे को सीखने में कोई दिक्कत होगी।
1: बस ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का।
0: बच्चों का ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा पानी में गहरे पानी में ना जाए, डूबे ना, तो बस यही सब ध्यान रखना पड़ेगा। और तो उसमें तो ये है कि अब हमारी तो सबको एक प्रकार से कभी हमारे सारे बच्चों को एक लाइन में बिठा के पैर चलवा दिए, पहले सीधे पैर चलवा दिए, फिर उनसे क्या लेट के पैर चला दे, उनसे फ्लोटिंग करवाते हैं, पैर हमेशा मुड़ के नहीं चलाना चाहिए, बच्चों को हमेशा पैर सीधे चलाएं जिससे कि बच्चों को आगे बढ़ने में उनको,
1: क्योंकि इसकी तैराकी की भी कई तकनीक होती है।
0: उसके चार स्टेप होते हैं। सबसे पहले फ्री स्टाइल, दूसरा है ब्रेस्ट स्ट्रोक, तीसरा है बटरफ्लाई, चौथा है बैक स्ट्रोक। ये स्विमिंग की चार स्टाइलें हैं। फ्री स्टाइल अच्छा कर रहा है कौन बच्चा, ब्रेस्ट अच्छा कर रहा है भाई, बटरफ्लाई अच्छा कर रहा कौन बच्चा, बैक स्ट्रोक अच्छा कर रहा,
1: उससे में उसको आप आगे बढ़ाते हैं,
0: उसको बारीकी बताते हैं।
1: और हम देखते हैं कि गर्मियों में स्विमिंग सीखने वालों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसे में सुरक्षा के क्या उपाय जरूरी हैं?
0: नहीं हम लोगों के पास दो दो तीन तीन लाइफ गार्ड है और वो पूल के ऊपर 24 माने जब तक हमारा समर कैंप चलता है, तो अगर एक आदमी अगर मेरे पानी के अंदर बच्चों को सिखा रहा है तो दूसरा ऊपर से देखता रहता है बराबर कि कोई बच्चा पानी के अंदर डूबे ना, या तो पानी में इन सब अपनी अपनी स्विमिंग करिए, कोई एक दूसरे को पकड़ेगा नहीं,
1: परेशानी तो नहीं। आपने तैराकी, स्वास्थ्य और खेल भावना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं से साझा की। हमें विश्वास है कि आपकी बातें युवाओं को तैराकी के प्रति प्रेरित करेंगी। धन्यवाद। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। झांसी की बेटी इमरोज खान ने अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे झांसी और भारत का नाम रोशन किया। 70 किलोग्राम वर्ग में अमेरिकी बॉक्सर जेनेट जॉनसन को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इमरोज खान ने गौतम बुद्ध नगर में आयोजित नवी एलिट महिला व पुरुष राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता और वे निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया,
2: पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि अमेरिका की धरती पर आप गोल्ड मेडल लेकर आई।
3: शुक्रिया।
2: अब आप बताइए आपने बॉक्सिंग की शुरुआत कैसे की?
3: बॉक्सिंग की शुरुआत तो ऐसा था कि बॉक्सिंग के नाम से ही फैमिली डरती थी, तो मैं पहले हॉकी खेलती थी, तो वो ही बॉक्सिंग का एक था दिल में कि करना है, लेकिन बॉक्सिंग से नाम से ही मना कर दिया घर वालों ने, तो हॉकी की आड़ में बॉक्सिंग शुरू करा था। तो बस सब जूनियर ऐसी स्टेट था, उसमें गोल्ड आया झांसी में, तो उसके थ्रू न्यूज़पेपर में निकला फोटो, तो घर वालों को पता लगा कि मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ, तो फिर मुझे लगा शायद अब मुझे मार पड़ेगी, तो मैंने थोड़ा रोना वोना करा, लेकिन सपोर्ट किया घर वालों ने, तो जब से आज तक फुल सपोर्ट है और जब से आज तक कर ही रही हूँ।
2: लेकिन इस गोल्ड मेडल के पीछे आपकी तैयारी और दिनचर्या कैसी रहती थी?
3: ये इस गोल्ड मेडल के पीछे यही है कि मतलब एक था कि बस मुझे करना है, हाँ मतलब पुलिस टीम से मुझे गोल्ड लेना है और उसके बाद खेलना है वर्ल्ड पुलिस, एक सपना था कि मुझे वर्ल्ड पुलिस जाना है, तो बस वो था कि हाँ मतलब तब भी वहाँ पहुँच के भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं आ गई यहाँ पर।
2: सबसे कठिन मुकाबला कौन सा रहा था आपका?
3: मुझे ऐसे लगता कि अपने इंडिया के प्लेयर्स को फाइट देके ही निकलना है, यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं आती, चाहे मेरा कोई भी मेडल है आता है, बस ये है वहाँ से। फिर
2: क्या कोई ऐसे कोच या व्यक्ति है जिनका योगदान आप विशेष रूप से मानती हैं?
3: करी मैं पहले रोहतक हॉस्टल में थी, फिर JSW चली गई, अभी मैं CSF में हूँ, वहाँ पे कोच के उनके कोच के अंडर कर रही हूँ, और अभी कैंप में हूँ तो यहाँ के कोचेज है। तो बाकी झांसी से अगर सपोर्ट की जाए तो जैसे हमीद सर है और रोहित पांडे सर, मतलब जो

0: थोड़ा सपोर्ट देते हैं बैकबोन का वो मिलता है, बाकी जो कोचिंग है तो मैंने यहाँ वहाँ करके ली।
1: क्या बॉक्सिंग जैसे खेलों में महिलाओं को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
0: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ये बॉक्सिंग मतलब गेम है, अगर आपको करना है ना तो फिर चुनौतियों क्या देखना है, बस ये है, फिर चुनौतियां देखना है तो फिर गेम ये क्या करने से फायदा।
1: आज की बेटियों और युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं बस आज की बेटियों को युवाओं

0: अगर आप उसको वो करवाओगे ना तो शायद वो उस चीज में वो कर जाएंगे जो पढ़ाई से वो घर में रह कुछ नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब आपका अगला लक्ष्य क्या है?
0: अभी कंपटीशन है हमारे, अभी यहाँ मैं कैंप में हूँ, अभी ट्रायल्स होंगे, अभी ये देखिए, अभी मैं दिल में तो बहुत कुछ है, जो लक्ष्य है वो बताना नहीं चाहिए इसलिए मैं बोल नहीं सकते लेकिन क्या होता आगे। हाँ बाकी मैं लगी
1: हूँ। और इमरोज खान जी आपने साबित कर दिया कि अनुशासन, साहस और समर्पण से सब कुछ संभव हो जाता है और आपकी जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेगी। धन्यवाद आप। खेल जीवन संवारने का सशक्त माध्यम है। झांसी में खेलों की स्थिति और प्रगति सकारात्मक है एवं विकसित होती तस्वीर है, जिसमें पारंपरिक खेलों से लेकर आधुनिक गतिविधियों तक का समन्वय देखने को मिलता है। श्रोताओं, खेल केवल जीत हार नहीं, ये जीवन जीने की कला है। इसके साथ ही खेल दर्पण कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अल्पना श्रीवास्तव को। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी।
2: खेल दर्पण।
3: राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया गया। न्यूज ऑन AIR ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। आप सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम विविध भारती केंद्र मुंबई से।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सुमरजी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम विविध भारती केंद्र मुंबई से। न्यूज ऑन एआईआर ऐप और 101.9 एफएम पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके पश्चात अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट

0: की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं। इसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।